FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तद अनुसार 14 जून वर्ष 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश

0: में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। आपके लिए लेकर आए हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जपो राम नाम मनवा मिट जाए हर अंधियार, राम कृपा से जीवन महके हो जाए भाव से प्यार।

तेरा नाम जी हरिओम मन को देता सुकून, जपते जपते कट जाए जीवन मिले प्रभु का नूर।

जीने का सहारा बनकर जो हर दिल को सुकून दे जाए और इश्क़ रसूल की महक बिखेर जाए।

मोहन हमारे मधुबन आए, छेड़े प्रेम की तान, उनके चरणों में बसता है भक्तों का सम्मान।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे मन्ना डे, हरिओम शरण, जमील अहमद और साथी गोपाल सिंह रागी और उदित नारायण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य वनस्पति एवं अन्य प्राणी जगत की 3 आवश्यकताएं हैं, सुखमय निर्विघ्न निद्रा, पर्याप्त भोजन और परिवार की रक्षा। इन्हीं 3 के लिए प्रत्येक जलचर थलचर आजीवन श्रम करता है। इसके बने रहने की स्थिति का नाम ही शांति है। मनुष्य या अन्य प्राणियों को अपने परिवार के लिए काम करना होता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवार ही सबसे छोटी इकाई है, मनुष्य इसका एक घटक है। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसी स्थिति का विकसित और शक्तिशाली स्वरूप होती हैं। सामाजिक कार्य व्यवहार के लिए वातावरण की शांति और मानसिक शांति दोनों आवश्यक है। मानसिक शांति ही चिंताएं दूर करने के लिए चिंतन करने का वातावरण बनाती हैं। इसी से शरीर के सामान्य व्यवहार और कार्य को संपन्न किया जाना संभव है। मनुष्य शरीर के ऊपर उठकर आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उसे ईश्वर और मनुष्य के संबंध का आभास होता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे सामने 2 मुख्य भाव उपस्थित रहते हैं, एक निराकार दूसरा साकार।

0: निराकार की उपासना के लिए एक साकार आलंबन की आवश्यकता होती है। साकार रूप में सामने जो भी स्वरूप है वह ईश्वर का आवास है। प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की शांति का नाम ही शिव है। शरीर में से शिव प्राण के रूप में अनुभव में आते हैं। शरीर से प्राण की शक्ति के बाहर जाते ही शरीर केवल शव शेष ही रह जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क इसी प्राण शक्ति से अपने को ईश्वर की साधना के लिए तैयार करता है। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उदात्त भाव से संपृक्त मार्ग है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे स्वयं को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। स्वयं को जानकर ही संसार और अगोचर सत्ता को जान लेना संभव है। शास्त्र कहता है, यत पिंडे तते ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर रूपी पिंड है उसमें वही व्याप्त है जो ब्रह्मांड भर में व्याप्त है। ईश्वर परम शांति की अवस्था में ज्ञानमय है। यह ज्ञान भी मस्तिष्क को शांत भाव से परिपूर्ण जिज्ञासु को ही प्राप्त होता है। चाहे जिस प्रकार भी हमारे भीतर शांति का वातावरण निर्मित हो, ईश्वर प्राप्ति की अवस्था का प्रथम चरण वहीं से आगे ले जाता है। संपूर्ण विश्व इसी शांति के लिए भारतीय मनीषा का मार्ग दर्शन पाने की इच्छा लिए हुए भारत की ओर देख रहा है। स्मरणीय है स्वामी विवेकानंद के मात्र दो शब्द जो उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर की सर्वधर्म सभा में कहे थे। सभा में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं दो शब्दों में श्रोताओं के मस्तिष्क में अपार हर्ष, अपनत्व एवं आनंद से जगमगाती हुई आंतरिक शांति का उल्लास भर दिया था। आज भी भारत वैश्विक शांति का आलोक अपनी संस्कृति की अंजुरी में लिए हुए संसार के सभी प्राणियों को आनंदित करने के लिए प्रस्तुत है।
1: आज का चिंतन, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं स्वास्थ्य संदेश में असीम सक्सेना की जानकारी, जिसका विषय है रक्तदान का महत्व।
2: कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत अमूल्य है मानव जीवन, और इस अमूल्य जीवन की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। जीवन की रक्षा के लिए रक्त की आवश्यकता कितनी ही बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, शल्य चिकित्सा, प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव तथा थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए रक्त जीवन और मृत्यु का अंतर बन सकता है। और ऐसे में रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। तभी तो कहा जाता है कि महादान है रक्तदान। रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प आज तक विकसित नहीं हो सका है। रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, और यही कारण है कि रक्तदान का महत्व सदैव बना रहेगा। सभी जानते हैं कि रक्त मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। एक यूनिट रक्त से कई लोगों की सहायता की जा सकती है, क्योंकि रक्त के विभिन्न घटकों, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग अलग रोगियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक रक्तदाता कई मानव जीवन में आशा का संचार कर सकता है। अक्सर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये धारणा सही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्धारित मात्रा में किया गया रक्तदान पूर्णतः सुरक्षित माना जाता है। रक्तदान के बाद शरीर नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सक्रिय कर देता है और इससे शरीर में रक्त निर्माण की क्षमता बेहतर बनी रहती है। रक्तदान से पहले रक्तदाता का रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की सटीक जानकारी मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित और सुरक्षित अंतराल पर ब्लड डोनेट करता रहता है तो उसके शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित बनी रह सकती है। अत्यधिक आयरन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है। सामान्यतः 18 से 65 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता का वजन निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए। उसका हीमोग्लोबिन स्तर भी पर्याप्त होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि रक्तदान से संक्रमण हो सकता है, जबकि यह केवल एक भ्रांति है। मान्यता प्राप्त रक्तदान केंद्रों में सभी उपकरण एक बार उपयोग वाले होते हैं और पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में कुछ ही दिनों में रक्त की पूर्ति होने लगती है और इससे जीवन की सामान्य गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। स्वस्थ और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाली महिलाएं भी सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं। देश में प्रतिवर्ष लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। यदि अधिक से अधिक लोग नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। युवाओं की भागीदारी इस दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि रक्तदान मानवता की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये एक ऐसा दान है जिसमें दाता का कुछ नहीं घटता, बल्कि किसी व्यक्ति का जीवन बच जाता है। रक्तदान न केवल जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन देता है, बल्कि रक्तदाता को भी आत्मिक संतोष, सामाजिक सम्मान और मानव सेवा का अनुपम अवसर प्रदान करता है। संकल्प लेना होगा कि हम स्वस्थ रहने पर नियमित अंतराल पर स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि ब्लड डोनेशन केवल रक्त का दान नहीं बल्कि जीवन, आशा और मुस्कान का दान है।
1: रक्तदान का महत्व, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे असीम सक्सेना। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:45 पर आप तक पहुंचाएंगे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। भाग संख्या रहेगी 328 और कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे लोक रंग कार्यक्रम में संध्या रानी शाक्य के स्वर में कुछ लोक गीत। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आप सुन सकेंगे 7:31 पर। मॉर्निंग हिट्स का समय रहेगा 8:45 पर और 9:25 पर आप तक पहुंचाएंगे गौरव भारत देश के।

सुबह 9:30 पर इसमें मुबाहिसे का मौजू होगा आलमी सतह पर बदलता हिंदुस्तान। इसमें शिरकत करेंगे डॉक्टर नजावत अदीब, जनाब मदन लाल और जनाब अब्दुल शारिक।

पत्रोत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप तक पहुंचाएंगे सुबह 10 बजे। 10 बजकर बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां आप तक पहुंचेगा दोपहर 1 बजकर 15 मिनट पर। दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे विश्व रक्तदान दिवस पर विशेष परिचर्चा, विषय होगा रक्तदान महादान, प्रस्तुति होगी राजीव सक्सेना की। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे 11 बजकर 30 मिनट पर। हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा शाम 5 बजे। इसमें युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। इसका समय रहेगा शाम 5 बजे। कृषि जगत का समय रहेगा 5 बजकर 30 मिनट पर और शाम 7 बजे आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री। केवल मीडियम वेव पर और FM पर ऐप पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
2: हमारा अभिमान है
3: हमारी एकता,
2: हमारा मान है
3: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
2: हमारी शान है
3: इस एकता की सुदृढ़ता।
2: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
1: ज्योतिमय शुभ देश जय।
4: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग।
5: एपिसोड नंबर 328 328।

कुंभकर्ण ने युद्धभूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है। ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभालकर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के वाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने भयानक सिंहनाद किया

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। भाग संख्या 328 थी और कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: कूटनैतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चंद्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चंद्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चंद्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तं एतत् यानं चंद्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं संध्या रानी शाक्य।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, कलाकार थी संध्या रानी शाक्य। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
2: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: हमारा अभिमान है
4: हमारी एकता,
3: हमारा मान है
4: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
3: हमारी शान है
4: इस एकता की सुदृढ़ता।
3: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
2: ज्योतिमय शुभ देश।
5: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
6: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
5: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
6: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
7: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
6: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
8: से नो टू प्लास्टिक।
3: हमारा अभिमान है
4: हमारी एकता,
3: हमारा मान है
4: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
3: हमारी शान है
4: इस एकता की सुदृढ़ता।
3: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बनें।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
3: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
4: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
4: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
3: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
4: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
5: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
6: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था आप में से हर व्यक्ति जानता है, वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
5: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
6: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
5: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन्य पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
7: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
5: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
8: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
5: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
9: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:31 हुए हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, बस कुछ ही देर के बाद।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
6: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
5: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
7: सुबह के फूल खिल गए, पंछी अपने सफर पर उड़ गए, सूरज निकलते ही सारे तारे भी छुप गए। श्रोताओं, क्या आप भी अपनी मीठी नींद से उड़ गए? तो जनाब उठ जाइए अब अपनी मीठी नींद से और शिरकत कीजिए सुबह सवेरे की आज की इस महफिल में। कबूल कीजिए अपनी मेज़बान शहज़िया ख़ा का पुरखलूस आदाब, सलाम नमस्कार। श्रोताओं, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि रक्तदान महादान। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची सेवा का प्रतीक है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और जीवन रक्षक दाताओं को सम्मान करना और उनका धन्यवाद देने के लिए शुरू किया गया है। ये संगठन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप AB O की खोज की थी। रक्तदान जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने और उनमें आशा जगाने की सामूहिक शक्ति को उजागर करती है। रक्त मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन या किसी भी वजह के दौरान किसी को भी रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे वक्त में रक्तदान किसी इंसान को नई जिंदगी दे सकता है, क्योंकि खून की कोई जात नहीं होती। रक्तदान इंसानियत का सबसे बड़ा पैकर होता है। रक्तदान एक सुरक्षित और सरल प्रक्रिया है। स्वस्थ इंसान को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से न केवल जरूरतमंद लोगों की सहायता होती है बल्कि दाता के स्वास्थ्य की भी नियमित जांच होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रक्तदान मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारा छोटा सा योगदान किसी के जीवन की आशा की नई किरण बन सकता है।
8: जून जो कि विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ताकि स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान किया जा सके और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जा सके। आज रक्तदान दिवस पर श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वसीम रजा जी की वार्ता। वसीम रजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए। नमस्कार आपको।
9: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
8: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मकसद क्या है?
9: देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस बेसिकली लोगों को सुरक्षित और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करता है तथा रक्तदाताओं को योगदान सम्मान देता है। रक्तदान से अनेक मरीजों की जान भी बचाई जा सकती है।
8: तो डॉक्टर साहब, क्या रक्तदान वास्तव में किसी व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है?
9: जी बिल्कुल, बहुत सारी दुर्घटनाओं में, ऑपरेशन में और बहुत सारे तरह के जो कैंसर हैं और कुछ थैलेसीमिया हैं, कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जिनमें ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होता है और बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई जा सकती है।
8: डॉक्टर साहब, कौन कौन से लोग रक्तदान कर सकते हैं?
9: देखिए, रक्तदान आमतौर पे 18 से 65 साल तक के लोग कर सकते हैं जिनका वजन 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए उन्हें, और नॉर्मली हम लोग टेस्टिंग करते भी हैं रक्तदान से पहले।
8: लेकिन डॉक्टर साहब, कई लोगों के मन में ये डर रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
9: नहीं नहीं, ये सिर्फ एक भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी कुछ ही दिनों में पूरी भी हो जाती है और रक्तदान करना चाहिए, हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए जिससे जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान के बाद नॉर्मली आप आराम कर सकते हैं और थोड़ा पानी और जूसेस वगैरह ले सकते हैं तो वो पूर्ति हो जाती है।
8: तो कहीं ना कहीं रक्तदान जो है जिंदगी से जुड़ा हुआ है, रक्तदान
9: जी बिल्कुल
8: कर सकते हैं हम।
9: बिल्कुल करना ही चाहिए।
8: तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा रक्तदान करने के बाद कोई ऐसे टिश्यूज तो नहीं आते हैं, हेल्थ टिश्यू या फिर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है कि जैसे लोग अक्सर भ्रम में रहते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम?
9: नहीं, बिल्कुल नहीं आती, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को प्रेरित भी करना चाहूंगा कि रक्तदान करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग करें। विश्व रक्तदान दिवस आ रहे हैं कल 14 तारीख।
8: शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे श्रोताओं से जुड़ने के लिए, हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि रक्तदान क्यों करना चाहिए और रक्तदान एक महादान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद
9: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके श्रोताओं का भी।
8: थैंक यू।
7: श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर वसीम रजा के विचार रक्तदान महादान पर, जो कि एम्स दिल्ली ब्लड बैंक के डॉक्टर हैं। और आइए आप सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। नजर डालते हैं कि आज 14 जून को इतिहास के पन्नों में क्या क्या दर्ज हुआ। 1775 में आज ही के दिन अमेरिकी क्रांति के दौरान कॉन्टिनेंटल आर्मी के रूप में अमेरिकी सेना की पहली बार स्थापना की गई। 1777 में अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्टार्च एंड स्ट्राइप्स को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। और 1967 अंतरिक्ष के क्षेत्र में मैरिनर 5 यान को शुक्र ग्रह की यात्रा के लिए रवाना किया गया। साल 2008 में आज ही के दिन राजस्थान बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन की सोने की खदान को खोज किया गया। और साल 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और श्रोताओं, अब जानते हैं आज जन्मी उन महान हस्तियों के बारे में। 1595 में जन्म हुआ गुरु हरगोविंद सिंह का, जो कि सिखों के छठवें गुरु हैं। और आज ही के दिन जन्म हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हीराभाई बरोदकर का, वर्ष था 1905। 1960 में जन्म हुआ हिंदी फिल्म अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का। और आज ही के दिन वर्ष 1955 में जन्मी हिंदी और बांग्ला चलचित्र अभिनेत्री किरण खेर। और 1922 में जन्म हुआ आसिफ का, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रहे। और श्रोताओं, आप जानते हैं उन हस्तियों के बारे में जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। राज कपूर, जो कि एक भारतीय सिनेमा के शोमैन और दिग्गज अभिनेता और निर्देशक रहे, आपका निधन आज ही के दिन 1988 में हुआ था। असद अली

सुशांत ने अपने अभिनय से ये सिद्ध किया कि सपने बड़े हों और हौसले मजबूत तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को प्रेरित करती हैं, उनकी खूबसूरत मुस्कान को आज भी लोग याद करते हैं और उनकी यादें सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

श्रोताओं, अब नज़र डालते हैं आज के अखबारात की सुर्खियों पर। वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो अफसरों समेत 5 बलिदान। AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला, भीषण आग लगने की वजह से कई लोगों की जान गई। वायुसेना का एंटोन

32 परिवहन विमान शनिवार सुबह असम के जोरहाट में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के दो टुकड़े होने के बाद उसमें भीषण आग लगने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार समेत 5 वायु सैनिक बलिदान हो गए। दिग्गज निशानेबाज पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा को शनिवार को काशी के मणिकर्णिक घाट पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले इस महान खिलाड़ी का मणिकर्णिका घाट पर पूरे विधि विधान और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और बारिश से प्रभावित पहले वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और श्रोताओं, रामपुर वासियों के लिए खुशी की लहर। सामाजिक जागरूकता के बाद से यहाँ के तमाम रक्त कोष रक्त के समृद्ध होने लगे हैं। वहीं शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्था और स्कूल कॉलेजों में भी वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता जा रहा है। रक्तदान महादान होता है, इसी प्रेरणा को लेकर रामपुर के रक्तवीर आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने खून से लोगों को जिंदगी की टूटती डोर को थामने की कोशिश में लगे हैं। बिना किसी स्वार्थ के की जा रही ये सेवा अब आसपास के जिलों में भी मिसाल बनती जा रही है। रक्तदाताओं ने कहा है कि जहां पहले रक्तदान को सिर्फ युवाओं तक सीमित माना जाता था, वहीं अब वृद्धजनों के साथ महिलाएं भी रक्तदान सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। इसके चलते अब जरूरतमंद मरीजों को होने वाले रक्त की कोई कमी नहीं रहती। श्रोताओं, स्वच्छ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। नियमित स्नान से जीवन खास होता है। कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारी जिंदगी के दो ऐसे पहलू हैं जिनके बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्नान दिवस यानी बाथ डे भी मनाया जाता है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि ये ताजगी, ऊर्जा और मानसिक शांति का भी स्रोत है। नियमित स्नान हमें अनेक बीमारियों से बचाता है तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाता है। भारतीय संस्कृति में भी स्नान को शुद्धता और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। स्नान दिवस को मनाने के पीछे प्राचीन गणितज्ञ और आविष्कारक आर्किमिडीज की कहानी है। स्नान करते समय आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के सिद्धांत की खोज की। समय के साथ ये घटना स्नान से जुड़े आनंद और ताजगी के प्रतीक में बदल गई। स्नान करते समय आर्किमिडीज के उस अद्भुत विचार से ये स्पष्ट हुआ कि स्नान जैसे विश्राम गतिविधियों के दौरान कुछ सबसे रचनात्मक और अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये दर्शाता है कि विज्ञान को अवकाश और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्नान दिवस उत्सव और चिंतन का दिन है।

श्रोताओं, इस वादे के साथ की होगी आपसे फिर मुलाकात। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आकाशवाणी रामपुर से जुड़े रहिए। आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की शैजी आगा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायु सेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल

0: का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: And strong live audience, but match attendees from India to be only about 30,000, far less than previous edition in 2022. High average costs, travel hurdles, results in tepid interest from Indian travelers, writes the Financial Express. And finally, in a piece titled Fashion to Furnace, some Luke's gold watches fail the test of time. The Economic Times writes, as yellow metal price hit record high, vintage pieces are being melted down as the gold content value outstrip their resale worth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be open to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And an ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुरमुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैक्रों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक क्यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में पैलेस डे से एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निजाम को उजागर किया जाएगा, जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
2: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दो तरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निजाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा, जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
5: इस्लाहात के 12 साल, एतमाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निजाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक है। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं, ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फायदा पहुंच सके। नए टैक्स निजाम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के GST निजाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में जीएसटी की वसूली 2.42 लाख

0: रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुआसिर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमात सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से निश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादला ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रजाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी जरूरतमंद को सेहतयाब करने और एक खानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं, जिम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचा में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई कुव्वत। تجارت، ٹیکنالوجی، اختراع اور عالمی امور سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو اگلا آرمی چیف مقرر کیے جانے کی خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، مستقبل کے دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل ضروری۔ G7 اجلاس کے موقع پر امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کا امکان، معاہدہ ہونے کی صورت میں دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں میں جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ اور دھرمشالہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 102.9 مارننگ ہٹس۔

मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शाजियाखा का नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है केदारनाथ।

0: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत राघव तनिष बख्शी की आवाज़ में। श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग हिट्स।
1: घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है डंकी।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैन्य क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद
2: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
3: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपी आए, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अमुनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
2: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
4: शैलेंद्र जी, सर की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16 गुने का जंप देख रहे हैं तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पे थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
2: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
3: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए, और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो, और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के है। इसी में अम्युनिशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उससे, जिससे अम्युनिशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है, और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
2: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
3: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी, इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के हैं जो कि ऑलरेडी एयर में हैं, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
2: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
3: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है, और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही हैं।
2: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सर।
4: थैंक यू वेरी मच।
1: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हुए हैं, आपको सुनवा रहे हैं गौरव भारत देश के। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं सुचेता कृपलानी के जीवन

चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। सुचेता कृपलानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक सफल राजनीतिज्ञ। एक प्रवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली सुचेता बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आपका जन्म एक बंगाली परिवार में 1 जून 1908 को अंबाला शहर में हुआ और शिक्षा लाहौर तथा दिल्ली में हुई। इनके पिता एस एन मजूमदार राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सुचेता कई बार जेल गई। सन 1946 में वो संविधान सभा की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को सुचेता ने संविधान सभा में वंदे मातरम गाया। सन 1958 से लेकर 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव तथा 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। आजादी के समर में आप अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के साथ उतरी। सुचेता ऐसी महिला थी जिनमें जुझारूपन कूट कूट के भरा था। इसका उदाहरण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखने को मिला, जब अंग्रेज सरकार ने सारे पुरुष नेताओं को जेल भेज दिया और तब अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सुचेता ने कहा, बाकियों की तरह मैं भी जेल चली गई तो आंदोलन को आगे कौन पढ़ाएगा। इस दौरान भूमिगत होकर उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग और पुलिस से छुपते छुपाते 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स भी बनाई और लड़कियों को ड्रिल, लाठी चलाना, प्राथमिक चिकित्सा और आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। वो उन चंद महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने बापू के साथ मिलकर देश की आजादी की नींव रखी, साथ ही भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में शामिल 15 महिलाओं में से एक सुचेता कृपलानी थी। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 दिसंबर 1974 को इस महान लोक नायिका का निधन हो गया। सुचेता कृपलानी का व्यक्तित्व

सुचेता कृपलानी के जीवन प्रसंग सुन रहे थे हम। इसी के साथ गौरव गाथा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सामाइन अब समाप्त फरमाइए उर्दू प्रोग्राम। आज इसमें मुबाहिसा का मौजू है आलमी सतह पर बदलता हिंदुस्तान। शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर नजाबत अदीब, जनाब मदन लाल और जनाब अब्दुल शारे।
1: तो सबसे पहले मेरा सवाल है जनाब नजाबत अदीब साहब से कि आज का जो ये हमारा मौजू है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: आपका ये मौजू आलमी सतह पर बदलता हिंदुस्तान
1: जी
2: बहुत अहम और पुरकैफ मौजू है, क्योंकि हिंदुस्तान को हम अपने गांव में बैठकर जिस नज़रिए से देखते हैं हमको वो हिंदुस्तान नज़र आता है
1: जी, बिल्कुल।
2: लेकिन कभी हम यहाँ से निकल करके हिंदुस्तान से बाहर दीगर ममालिक में हिंदुस्तान के बारे में देखें तो वो रूह अफजा कैफियत मालूम होती है, वो रूह अफजा बयानात मालूम होते हैं कि जिसे सुनकर यकीन नहीं होता है कि हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए इतनी अच्छी राय दूसरे ममालिक के लोग रखते हैं। सारी दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं, इन 195 ममालिक में सभी ने यूएनओ, सभी ने नहीं बल्कि 193 ममालिक ने यूएनओ की मेंबरशिप हासिल की है, कर ली है। इसमें हिंदुस्तान सबसे सीनियर मुल्क है कि जो न सिर्फ यूएनओ को, यूएनओ के मशवरे पर अमल करता है बल्कि यूएनओ को अपने अमाल से ऐसे मशवरे देता है कि जो पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: अभी कोविड के दौर में ऐसा हुआ, इसके बाद जब ये सारी दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जंगें चारों तरफ छिड़ी हुई हैं, उस वक्त उन जंगों में मसालेहत का रास्ता पैदा करने का इकदाम हिंदुस्तान ने किया। ऐसी कैफियत में ये जानना अब ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हमारी इस दुनिया में किस क्या हैसियत है
1: जी।
2: हमारी क्या आबादी है, हमारा क्या रकबा है, इसके लिए भी मालूमात का होना ज़रूरी है।
1: सबसे पहले तो जनाब अब्दुल शारिक साहब, मेरा सवाल आपसे है कि मैदान तालीम में हमने कहाँ तक तरक्की की है?
3: अगर बात की जाए
1: जी
3: आलमी सतह पर बढ़ते हिंदुस्तान में आपके सवाल का
1: जी
3: इस सवाल का, तो इस सवाल सबसे पहले हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में
1: जी।
3: सैटेलाइट में जैसे कि हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, नाना नानी दादा दादी अक्सर हमें कहानी सुनाया करते थे, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के, तो बहुत इंटरेस्टिंग था लगता था सुनने में, बहुत अच्छा लगता था सुनने में। लेकिन कभी पर्सनली मैंने भी इस बात को नहीं सोचा था कि हम चांद पे पहुंच भी सकते हैं,
1: चांद तक हमारी रसाई हो पाएगी।
3: और जब कोशिश की यहाँ के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने कोशिश की तो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते उन्होंने वो सपना पूरा कर दिया जिसके बारे में हम सोचते थे कि चंदा मामा दूर के पूरे
1: 2023 में हमने अपना पहला कदम रख दिया।
3: तो यहाँ से हमें
1: जी बिल्कुल
3: यहाँ से हमें सीख ये मिल जाती है कि इंडिया के जो हमारे हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट हैं वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि एक बार हारने के बाद भी दोबारा से उठ जाते हैं, उठ के मेहनत में लगे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले जो बाशिंदे हैं तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी और इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। हमारे दरमियान जनाब मदन लाल साहब मौजूद हैं, तो आप बताएं कि आज से पहले जो ख्वातीन का रोल था वो शायद इतना नहीं था जितना आज हमें हर जगह देखने को मिलता है, और लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है कि औरत कहीं ना कहीं तालीम से आज भी पीछे है। तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि उन औरतों को हमें आगे लाकर हर मैदान में उतारना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: आज के दौर में आलमी सतह पर जो बढ़ता हुआ हिंदुस्तान इसलिए है
1: जी बिल्कुल
4: कि ख्वातीन की तरक्की और उनकी नुमाइंदगी के लिए भारत सरकार ने सबसे पहले पंचायती राज में 50% उन्हें रिजर्वेशन दिया
1: जी,
4: और उसके बाद पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर काउंसिल में भी हुआ। अब नौकरी और खेल के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और जितने मेडल हमने जीते हैं उसमें
2: बड़ा हिस्सा
4: हमारी ख्वातीन का ही है, जिनमें हम सानिया मिर्जा का नाम ले सकते हैं, और भी हैं नेह वाले। तो इस तरह से हमने देखा कि आज के दौर में ख्वातीन हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का मामला हो, चाहे वो तालीम का मामला हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का मामला हो।
2: बहुत बेहतर, बहुत बेहतर मदन लाल जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। खेल के मैदान में ये बात भी बहुत अहम है कि आज जिन मेडल्स की तादाद कभी हिंदुस्तान में 2-3-1 और कभी कभी 0 भी हो जाया करती थी, आज हिंदुस्तान 29 मेडल्स लेकर के अपनी पहचान स्पोर्ट्स के मैदान में अलग बना चुका है। हॉकी की फील्ड में अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि पिछले 5 सालों से लगातार चैंपियनशिप हिंदुस्तान उठा करके ला रहा है और उन टीमों को हराया है जो टीमें पूरी दुनिया में अपनी धाक बनाए हुए थी। तो हिंदुस्तान का स्पोर्ट्स का कैनवस सारी दुनिया में बुलंद तरीन मुकाम की हैसियत इस वक्त रखने की पोजीशन पर आ रहा है। इसमें ख्वातीन का बड़ा हिस्सा है जिन्होंने तकरीबन हर फील्ड में मेडल्स लिए हैं, अपनी कारफरमाई की है और उसके साथ ही साथ ये कि क्रिकेट की फील्ड में भी हमारी ख्वातीन की टीम अलग है, बॉयज़ की टीम अलग है, ख्वातीन की टीम भी अपना एक अहम मुकाम बनाकर वहाँ से जो इनामात इससे मुतालिक हैं वो हासिल करके लाई है, उसने पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को पूरी दुनिया पे पहचानवाया है।
1: शाहिद साहब, मैदान तालीम के हवाले से हमने बात की, ख्वातीन के हवाले से हमने बात की, तो और क्या ऐसी तजावीज़ हैं कि जिन्हें हम कर सकते हैं और हम अपने वतन हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर अव्वल ला सकते हैं?
3: सबसे पहली बात मैं अपनी जो स्टार्ट करूँगा कुछ बिल्कुल अल्फाज कहना चाहूँगा, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं।
1: बहुत।
3: अब मेरे इस अशार को कहने का मतलब ये था
1: जी,
3: एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के अपना बहुत नाम रोशन किया
1: जी।
3: हम बात कर लेते हैं ईमेल की, कि ईमेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये ईमेल की खोज किसने की थी, आविष्कारक कौन थे? तो ज़रा चौंकिएगा मत, आपको लगेगा कि भाई ये चौंकने वाली बात है, अमेरिकी वीए शिवा अय्यादुराई जो अमेरिकन गवर्नमेंट में थे, उन्होंने सबसे पहले ईमेल के बारे में हमें बताया था, यानी ईमेल को ईजाद किया था। और आजकल ईमेल का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हम ऑनलाइन किसी चीज़ का भी फॉर्म करते हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता
1: है, हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है,
3: मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसका,
1: शायद हम सोच नहीं सकते इसके बिना आगे बढ़ने की।
3: ईमेल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग,
1: और हर मुश्किल काम को इतना आसान कर दिया है कि एक आप क्लिक करें और आपका काम हो गया,
2: कभी सोच नहीं सकते जी बिल्कुल, हम यहाँ टाइप करें और लंदन में वो बात लिखी जाए
1: जी
3: चंद सेकंडों में।
1: कभी हम सोचा करते थे कि मोबाइल फोन के हम किसी को देख पाएंगे, कभी बचपन में ये सुनते थे, आज हर एक के हाथ में है, कितनी भी दूर इंसान हो हम उसको अपने करीब पाते हैं, उससे बात करते हैं, तो एक बड़ा हिस्सा है जी। अपनी बात आप जाइए जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: और जो हम इंसान हैं, हम इंसान में खासियत होती है
1: जी,
3: खासियत कहा जाए या इसको परेशानी कहा जाए
1: जी,
3: कि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सी बीमारियां भी हो जाती हैं, लाइक जैसे टीबी बीमारी थी
1: जी,
3: और टीबी बीमारी की वजह से कई साइंटिस्ट भी मर चुके थे, लेकिन आजकल इंडिया के अंदर टीबी का इलाज पुरखोश तरीके से
1: हमने फतह पा ली है, कहा जाए कि इस बीमारी पर।
3: और जैसे कोई इंसान नाम लेता है एम्स का, इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो हमें लगता है कि उम्मीद जागी हमारे अंदर
1: जी।
3: ये एक ऐसी संस्था है जिसमें पढ़ने के लिए विदेशों से फॉरेन से स्टूडेंट भी आते हैं, इवन बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया अवेलेबल देयर, वहाँ पर अवेलेबल है, और इसकी इंडिया के अंदर 19 ब्रांचें हैं, और 19 ब्रांचें कहाँ कहाँ है, इसमें जोधपुर है, भुवनेश्वर है, ऋषिकेश, पटना, भोपाल, रायपुर, रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बीबी नगर, भटिंडा, कल्याणी, देवधर, राजकोट, गुवाहाटी, विजयनगर, बिलासपुर, मदुराई, बहुत से ऐसे हैं कि आप अगर कहीं भी पहुंच जाए तो पूरी तरीके से आपका इलाज किया जाएगा वहां पर।
1: बस सब कुछ यही है, हमें तलाश करने की जरूरत है,
3: बिल्कुल बेशक,
1: कुछ हमसे दूर नहीं है
3: जी, बिल्कुल
1: जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: मेरा कहना यह है कि पहले हम रोटी कपड़ा और मकान तक महदूद थे
1: जी, बिल्कुल,
4: लेकिन आज जो है تعلیم، تہذیب اور تمدن،
1: جی بالکل،
4: یعنی شکشا، سبھیتا اور سنسکرتی کے لحاظ سے ہمارے ہندوستان بہت آگے بڑھا ہے. پہلے یہاں پر تکشلا، بکرمشلا اور نالندہ میں باہر سے لوگ تعلیم کو آتے تھے، لیکن پھر بعد میں ہمارے لوگ باہر گئے، جس میں ستیندر ناتھ ٹیگور پہلے آئی سی ایس تھے، اور آج کے دور میں جو برطانیہ کی ساؤتھ ہیمپٹن یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہ گروگرام میں کھلا ہے. تو یہ بڑے گورو اور بڑے گرو کی بات ہے کہ آج اب ودیشی یونیورسٹی کا کیمپس ہونے سے باہر کے لوگ یہاں تعلیم کو آتے ہیں، اس سے بڑا اور اچیومنٹ ہو نہیں سکتا.
1: جی، تو نجابت ادیب صاحب، یہ تو رہی تعلیم کے میدان کے حوالے سے بات، اور اب آپ ادھر آ جائیے. جو آج کل ماحول چل رہا ہے ہمارے ملک کا، کہیں الیکشنس ہیں تو کہیں کسی اور چیز کے لیے معاملے چل رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
2: بہتر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی درست، یہ ہماری زندگی سے جڑے ہوئے سوالات ہیں جو ابھی تک آپ نے کیے ہیں. میں آپ کے سبھی کیے ہوئے سوالات کی داد دینا چاہوں گا. اس سلسلے میں بطور خاص میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ملک کی اندرونی سیاست
1: جی
2: اور بیرونی سیاست دونوں، ہر ملک کی اندرونی سیاست اور بیرونی سیاست دونوں الگ الگ، دونوں الگ الگ مزاج رکھتے ہیں.
1: جی بالکل،
2: الگ الگ مزاج یوں رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج ہے، ہم ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیاسی لیول پر ہندوستان سے باہر جن باتوں کی ضرورت ہے، ہم باہر وہ چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کی کیفیت، ہمارے ملک کی پہچان الگ سے بن سکے، اور ہمارا ملک تقریباً ساری دنیا میں اور پہچانا جا سکے. 195 ممالک میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے 80 ممالک میں خود جا کر ہندوستان کی تہذیب، تمدن اور یہاں کے معاشرے کا انٹروڈکشن کرایا.
1: جی، یہ بہت
2: وہاں سے وہاں کی تہذیب کو ہندوستان لا کر جی یہاں کے لوگوں سے متعارف کرایا، یہاں کل تہذیب کا مظاہرہ باہر کے ممالک میں اس طرح سے کیا کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ کیا ایسا بھی کوئی ملک ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی بات سوچ سکتا ہے اور انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. اگر ہم ان ممالک کے اقتصادی حالات کو دیکھیں، ان کے معاشی حالات کو دیکھیں، ان کے تعلیمی حالات کو دیکھیں، ان کے خلا میں ریسرچ کے معاملات کو دیکھیں، سیارگان کی ریسرچ کے معاملات کو دیکھیں، میڈیکل سائنس کے معاملات کو دیکھیں، تو کہیں آگے ہمارا ہندوستان نظر آتا ہے. یہ سب اب ہمارے یہاں سے بارو کر کے اپنے ملک میں لے جا کر ان سارے تعلیمات کے مراکز کو قائم کر رہے ہیں. ایسا قائم کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہندوستان کی طرف ہر نگاہ لوگوں کی اس طرح سے اٹھنے لگی کہ اب یہ کچھ دینے والے لوگوں میں سے ہیں.
1: جی بالکل.
2: اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے G20 کی صدارت کی، G20 کی صدارت میں گروپ آف 20 کنٹریز آئے.
1: جی.
2: جن میں صدارت کے ساتھ ہم نے یہ پیغام پہنچایا کہ ہماری سب سے بڑی بری بیماری دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے. اگر ہم سب مل کر اس کو ختم کر دیں، ٹیررزم کا مطلب کسی کو مار دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی نگاہ سے ہم کسی کو سختی سے اگر گھور دیتے ہیں تو وہ بھی ٹیررزم ہے. بے وجہ اگر ہم کسی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ظلم ہے. ٹیررزم کے معنی جس طرح سے پہنائے گئے تھے اس کو بدل کر ظلم کی داستان کو پیش کرنے کے معنی میں ہندوستان نے پیش کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ پوری دنیا ہمارے لیے ایک انسان کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم اس انسان کو پوری طرح سے صحیح کرنے کے ذمہ دار ہیں، جس کے لیے انہوں نے بہت اہم فارمولہ واسودیو کٹمبکم کا دیا، اور یہ واسودیو کٹمبکم کا دیا، اور اس فارمولے کے مطابق سارے لوگوں کی، سارے ممالک کی نگاہ اپنی طرف مرکوز کر لی. پھر ایک سب سے اہم بات جو بہت ہی حسیاتی طور پر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے جب 2014 میں آئے تو یہ کہا کہ ہم भारत के लोग किसी की भी तरफ आंख झुका करके नहीं देखेंगे, ना हम भारत के लोग किसी की भी तरफ आंख सख्ती की तरह से सख्ती से उठा करके देखेंगे, बल्कि हम आंख से आंख मिलाकर गुफ्तगू करेंगे। इससे ये पैगाम गया कि हम हर एक की इज्जत करते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ इज्जत का बर्ताव करे। किसी के साथ हम ज्यादती और सख्ती का बर्ताव नहीं करना चाहते हैं। इस पैगाम के साथ जब हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ा तो दुनिया के हर मुल्क ने खैर मकदम किया। यहाँ तक कि इस्लामी ममालिक जिनसे की दूरी रखी जाती थी वो दूरी भी ख़त्म हुई और इंसानी उन इस्लामी ममालिक ने अपने कंट्री का बेस्ट सिटीजन का सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर को दिया और सर्टिफिकेट दिया। और ये जहाँ किसी भी दूसरे शख्स को अहमियत नहीं दी जाती, वो किंगडम है ज़्यादातर, उन जगहों पर जब इस तरह से सराहा जाने लगा तो ये महसूस किया गया कि ये तरीक़ेकार जो हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है वो ऐसा है कि जो सारी दुनिया पर छा जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं ये देख रहा हूँ बराबर लोगों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए से जिस तरह से अमन के पैगाम दीगर ममालिक में दिए गए हैं उनको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अमन का नोबल प्राइज भी हिंदुस्तान को ही मिला जाना चाहिए।
1: कितनी खुशनसीबी है हमारी। तो जनाब शाकिर साहब ये बताइए कि इस मकासद को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया कहाँ तक अपना काम अंजाम दे रही है? मुझे लगता है आप सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो
3: बिल्कुल सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास कई तरीके के प्लेटफॉर्म हैं। उसमें यूट्यूब भी है, उसमें अगर हम ट्विटर जिसका नाम आजकल चेंज करके एक्स कर दिया गया है, फेसबुक की हम बात कर लें, तो उन सभी के अंदर लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद एक दूसरे से वहाँ फ्रेंडशिप की जाती है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि फ्रेंडशिप की जाती है। इम्पॉर्टेंट वहाँ पर यह है कि मुल्क का एक एक आदमी एक एक इंसान एक दूसरे से जुड़े, और जुड़ने के बाद जब उन सभी लोगों की कंबाइंड तरक्की होगी तो तरक्की को सही मायने में हमारे मुल्क की तरक्की कहा जाएगा। आजकल है क्या, ज़रूरत हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है
1: जी।
3: अगर हम सहूलियत टेक्नोलॉजी साइंस और इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हमारा आगे भी बढ़ सकता है। इवन मुझे एक वाकया याद आ गया छोटा सा, मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि हमारा जो देश है वो चांद पे पहुंच चुका है, जा चुका है। इवन इसके बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, कि जितने अमाउंट में हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं, हॉलीवुड की पिक्चर्स बनाई जाती हैं, इतने अमाउंट में हमारे हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क ने सैटेलाइट चंद्रयान पर भेज दिया है। तो इस सेंटेंस को सुनने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाता है, और ये मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारा हिंदुस्तान इस लेवल पे पहुंच चुका है कि कम चीजें मिलने के बाद भी वो हमें चांद तक ले जाने में सक्षम है, आगे बढ़ने में सक्षम है। तो टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, खासकर इंडिया में। पहले हम अमाउंट पैसा ट्रांसफर नहीं करते थे, हम फिजिकली पैसा दिया करते थे, बट आजकल हम एक वन टच से ओनली इवन यकीन मानिएगा वन टच से अमाउंट को हम कहीं का कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा हालांकि कुछ इसके साइड इफेक्ट भी हैं कि कभी कभी साइबर अटैक होने की वजह से दिक्कत आ जाती है, बट हमारी कंट्री के अंदर जो हमारी सरकार चल रही है वो इस चीज़ का ध्यान रखी हुई है और इसके भी एंटीवायरस काफ़ी तैयार किए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी, आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन अबाउट दैट।
1: मदन लाल साहब, आप बताइए कि आप इनकी बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपने एक अरसा ऐसा देखा होगा जहाँ ये सब कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हाँ, अब ज़राए हैं आसानी।

0: एक बात, दूसरी बात यह है कि इसमें जो विदेशी मुद्रा के साथ साथ हमारा जो इकोनॉमी वो
1: जी
0: भी बहुत आगे, यानी कि पहले
2: जीडी हमारी बढ़
0: जीडी
2: रही
0: हम
2: है।
0: बहुत
1: जी
0: आगे
1: बढ़
0: थी।
1: चुकी है।
0: हाँ, 500 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कि
2: पिछले
0: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट दिया था कि
1: जी
0: 2030 तक हम जो है 700 करोड़ हमारी
1: जी
0: अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम खाद्यान्न में आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हमने सुपर कंप्यूटर,
1: जी बिल्कुल
0: दुपहिया वाहन और नैनो कार ये बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि आज हमारे यहाँ का प्रोडक्ट जो विदेश जा रहा है। इस तरह से हम हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान में हर खित्ते में बेमिसाल तरक्की की है।
1: नजाबत साहब, ये
2: कल
1: सब कुछ हमने तालीम के सबब ही हासिल किया है ना,
2: बेशक
1: कि
2: बेशक
1: अगर तालीम ना होती तो शायद हम इन चीज़ों को नहीं जानते।
0: बिल्कुल
1: तो यकीनन हमने तालीम के मैदान में भी तरक्कियां की हैं, और हमारे पास क्या ऐसे ज़राए हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: तालीम के ज़राए और तालीम का इस्तेमाल, ये
1: जी
2: दोनों ही हमारे यहाँ बहुत अहम हैं,
1: जी
2: ज़रूरी
1: बिल्कुल
2: हैं, और इसकी कमी और कोताही भी महसूस की जा रही है
1: जी
2: कि जहाँ अभी हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड 77 तक पहुँचा है, ये कभी 20 30 40 35 50 60 होते होते ये पोजीशन आई है अब कि हम ये कह सकते हैं कि हम उन लोगों उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ इस परसेंटेज तक लोग
1: जी
2: एजुकेटेड हैं। लेकिन ये एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड आंका जाता है वो स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि जिससे हम तरक्यात की मंजिल तय कर सकें, क्योंकि
1: जी
2: ये स्टैंडर्ड बहुत ही लो क्लास की एजुकेशन, यानी क्लास 1 से लेके 5 और 6 से लेके 8 और 9 से लेके 12 और फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च और दीगर शोबों में इसी तरह से जो वर्क किया जा रहा है उनको गिनते हुए ये परसेंटेज निकाली गई है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर तालीम का मेयार माँ का बेहतर हो
1: जी बिल्कुल
2: तो बच्चों की तालीम बेहतर होगी। माँ का तालीम का मेयार बेहतर होने की ज़रूरत ये है कि अभी बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है और माँ तालीम याफ्ता है, तो वो सारे मेयार मुरतब करेगी जिससे ऐसा जहीन बच्चा इस दुनिया को दे जो बच्चा शुरू की ज़िंदगी में ही ऐसे इकदामात
1: जी
2: करना शुरू कर
1: बिल्कुल
2: दे जो सिर्फ उस सोसाइटी के लिए, उस माँ के लिए नहीं, उस सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि उस मुल्क के लिए अहम है। हम आज कभी कभी अक्सर देखते हैं कि 6 7 साल के बच्चे वो कारनामे अंजाम दे रहे हैं कि जो बड़ी उम्र में लोग दिया
1: जी
2: करते हैं, तो वो हमारे देश में भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन
1: बिल्कुल
2: जरूरी इस बात जरूरत इस बात की है कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ ना करे।
1: जी
2: हमारा एक सबसे मुश्किल मसला ये हो जाता है कि हम बिल्कुल सर अपना सरकार के कंधों पर रख करके बैठ
1: जी
2: जाते हैं कि ये सब सरकार
1: ये
2: करेगी।
1: होना चाहिए ऐसा।
2: भाई, बच्चा आपके घर में पैदा होने वाला है, बीवी आपके घर में आने वाली है, तो और आप हमारी बेटी दूसरे के घर ब्याह के जाने वाली है, तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि
1: जी
2: हम अपनी
1: बिल्कुल
2: बेटी की अच्छी तालीम करें, और जब हमारी बेटी की अच्छी तालीम होगी तो वो आगे की जिंदगी में रोशन चिराग दे सकेगी जो पूरी
1: जी
2: समाज को
1: बिल्कुल
2: रोशन कर सके। इसके लिए जरूरी यह है, जरूरी जरूरी यह है कि घर घर घर घर ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आप जहां जिंदगी को मसरूफ रखने के लिए 18 घंटे और 20 घंटे काम करते हैं, जिसके नतीजे में सिर्फ रोटी और कपड़ा हासिल करते
1: जी
2: हैं,
1: बिल्कुल
2: उसके साथ साथ ज़रूरी यह है कि उस 18 घंटे में 2 घंटे आप 2 घंटे 2 घंटे आप बच्चों की तालीम के लिए दीजिए।
1: जी बिल्कुल
2: अगर वो 2 घंटे बच्चों की तालीम के लिए देना शुरू कर देंगे तो हमारा पूरे का पूरा मुआशरा, इल्मी
1: जी
2: मुआशरा तैयार होगा और हमारा ये परसेंटेज फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा।
1: जी बच्चे की पहली दर्सगाह जो है वो माँ की गोद ही है, कि जहाँ से वो बच्चा इल्म सीखता है और आगे बढ़ता है। यकीनन आपने बहुत अच्छी
0: हम
1: बात
0: सब
1: कही।
0: आपकी बात से 100% इत्तेफाक
1: जी
0: रखते हैं,
1: बिल्कुल
0: और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे हिंदुस्तान की तस्वीर निराली है। ईद
1: सुपर
0: होली का मिलन है, खुशियों की दिवाली है।
2: क्या बात है।
0: कहीं
2: जी बिल्कुल
0: हुकूमत को होती है खूनी जंगें, या चुपके से वोटर ने सरकार बदल डाली है।
1: बहुत
2: क्या बात है।
1: बढ़िया।
0: जबकि हम ये देखें कि इस तरह से हमारा हिंदुस्तान दुनिया के मैार में सबसे अव्वल नंबर पर गिना जाने लगा है, और जनाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए हर जगह से मधु किया जाता
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: और उनकी तारीफ की जाती है, और जो कोई हौसला

0: रूस यूक्रेन की लड़ाई में ना कर सका, वो दोनों जगह शिरकत करके ये तय कर दिया कि वाकई आज हिंदुस्तान टॉप लीडिंग पोजीशन
1: ये मुफाहमत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सपुर्द न सिर्फ हिंदुस्तान ने ली है बल्कि हिंदुस्तान को दी गई है कि आप इन ममालिक में ऐसे मामलात पैदा कर दें कि ये जंग बंदी हो जाए। बहुत खूब।

अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे मुबाहिसा, मौजू था आलमी सतह पर बदलता हिंदुस्तान।

इसमें शिरकत कर रहे थे डॉक्टर नजाबत अदीब, जनाब मदन लाल और अब्दुल शारिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से नशर किया गया। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है पत्रोत्तर कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: आपका पत्र मिला। सभी श्रोताओं को असीम का नमस्कार। और श्रोताओं, आज मनोज का साथ है आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, और हाजिर हैं हम आपके भेजे गए ईमेल के साथ, आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ।
1: श्रोताओं को भी नमस्कार और सर आपको भी नमस्कार, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: मनोज, खतों का सिलसिला बिना किसी देर के शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे खत हैं और बहुत दिल से श्रोताओं ने खुलकर विस्तार से अपनी बातें लिखी हैं।
1: बिल्कुल, और सर ये जो सबसे पहली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारी श्रोता हैं बेबी तबस्सुम बरेली से। लिखती हैं कि तुम्हारी जीत का उत्सव तुम्हें मुबारक हो, यह 90 साल का उत्सव बहुत मुबारक हो। चले हैं साथ कदम दर कदम सभी श्रोता, यह जश्न सबके लिए सबको मुबारक हो। तबस्सुम की है दुआ, आकाशवाणी यूं ही सलामत रहे, चले ये उत्सव पूरे साल बहुत मुबारक हो। जी हाँ जनाब, 8 मार्च को आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूर्ण कर लिए हैं। हम तहे दिल से आकाशवाणी के समस्त स्टाफ को, यानी आकाशवाणी के पहले दिन से आज तक जो भी शामिल।
0: मनोज, मुझे लगता है कहीं कुछ चूक हुई हमसे और शायद श्रोताओं तक आपकी आवाज पहुंची नहीं है, इसलिए इस चिट्ठी को दोबारा से पढ़ दीजिए।
1: बिल्कुल, और सर ये जो चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये बेबी तबस्सुम की चिट्ठी है जो देवरनिया बरेली से हैं, और ये लिखती हैं कि तुम्हारी जीत का उत्सव तुम्हें मुबारक हो, यह 90 साल का उत्सव बहुत मुबारक हो। चले हैं साथ कदम दर कदम सभी श्रोता, यह जश्न सबके लिए सबको मुबारक हो। तबस्सुम की है ये दुआ, आकाशवाणी यूं ही सलामत रहे, चले ये उत्सव पूरे साल बहुत मुबारक हो। जी हाँ जनाब, 8 मार्च को आकाशवाणी ने अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। हम तहे दिल से आकाशवाणी के समस्त स्टाफ को, जो आकाशवाणी के पहले दिन से आज तक शामिल रहे हैं, मेरा मतलब है कि आकाशवाणी के
2: ने जब से जन्म लिया है अब तक समस्त स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आकाशवाणी यूं ही फलता फूलता रहे। इसके समस्त श्रोताओं को भी दिल से मुबारकबाद, इसके सभी श्रोता भी इससे यूं ही जुड़े रहें। दीगर अहवाल यह है कि इन दिनों रेडियो ख़राब है, सभी प्रोग्राम फ़ोन पर सुन रही हूं। मैंने यूट्यूब पर कुछ प्रोग्राम सुने और देखे हैं, जैसे आकाशवाणी की जो रैली थी, यानी कि वॉकेथन की बात कर रही हैं, मोहम्मद अली मौस साहब का जो इंटरव्यू था वो इन्होंने देखा है। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव, आकाशवाणी आवाज़ों में वसी यादें, सुरमई सफ़र के 90 साल, संगीत संध्या के प्रोग्राम, ये सभी बड़े दिलकश लगे। और रैली को देखकर लगा कि इसमें मुझे भी होना चाहिए था। यकीन मानिए, हर कदम पर मैंने खुद को आपके साथ महसूस किया। मैं आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण करने पर बहुत खुश हूं और तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आकाशवाणी यूं ही तरक्की करता रहे, इसमें नई नियुक्तियां भी हों, उसका परिवार आगे यूं ही बढ़ता रहे, ऐसी मेरी कामना है। इस पत्र को लिखने में यदि कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ अपना समझकर माफ़ कीजिएगा। फ़कत आपकी दोस्त तबस्सुम, अपने कार्यक्रमों के बारे में हमें बता दिया करें प्लीज़।
0: तबस्सुम, गलती आपसे नहीं, गलती कुछ कार्यक्रम की शुरुआत में हमसे हुई है कि जो खत की शुरुआती आवाज़ आप तक नहीं पहुंची, पहुंची भी तो बहुत हल्के से पहुंची। खत भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं, यह कार्यक्रम का पहला खत था और बेबी तबस्सुम ने देवरनिया से हमें लिखकर भेजा। आकाशवाणी रामपुर की एक ऐसी श्रोता जो दिल से इस केंद्र से जुड़ी हैं और समय समय पर आपकी प्रतिक्रियाएँ, आपके सुझाव, आपके विचार, आपकी भावनाएँ हम तक आती रही हैं। YouTube पर आकाशवाणी रामपुर ने एक सिलसिला शुरू किया है, बहुत सारे कार्यक्रम यूँ तो YouTube पर अपलोडेड हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से हमने लगातार ये प्रयास किया कि प्रतिदिन कुछ न कुछ आप तक सोशल मीडिया के इस माध्यम से ज़रूर पहुँचे। और उसी कोशिश में वो सभी कार्यक्रम जो 90 वर्ष के सिलसिले में आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित किए गए वो YouTube पर भी अपलोड किए गए और धरोहर के अंतर्गत उनको प्रसारित भी किया गया। आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वाकथन थी आकाशवाणी रामपुर ने 8 जून को आयोजित की थी, इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुआ था और सोशल मीडिया पर भी ये कार्यक्रम लाइव देखा और सुना जा रहा था। कार्यक्रम में श्रोताओं की, आकाशवाणी रामपुर के वार्ताकारों की, आकाशवाणी रामपुर के परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी रही और अपना संदेश हम जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे, ऐसा गर्व के साथ कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सभी कार्यक्रमों को सुना और सराहा।
2: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान और इनके परिवार वाले। लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी 90 साल 8 जून सुबह 6 बजे आकाशवाणी रामपुर ने अपने सभी श्रोताओं का खैर मकदम किया। विक्रांत चौधरी जी, असीम सक्सेना जी, अवधेश कुमार गौतम जी और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। 7 जून आपका पत्र मिला कि महफिल सजाई असीम सक्सेना जी और सुनील सक्सेना जी ने। बेहतरीन अंदाज में पत्र पढ़े असीम सक्सेना जी ने, शानदार अंदाज में पत्रों के जवाब दिए। अच्छा लगा, झलकी हंसी मजाक से भरपूर थी। धरोहर के अंतर्गत आदित्य प्रकाश तिवारी जी से असीम सक्सेना की बातचीत बेहद पसंद आई। तरन्नुम ने शब्दावलियों का मनभावन बेहतरीन किया। बच्चों का कार्यक्रम कलियां, सुनहरा दौर, आसपास, रोहित कुमार जी का गीत गाता चल, ये पसंद आए हैं इनको। और 8 जून को धरोहर के अंतर्गत आवाज़ों में वसी यादें बेहद पसंद आया। अवधेश कुमार गौतम जी और सुनील सक्सेना जी को पूरी टीम के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद दी है इन्होंने। और रोहित कुमार जी का हेलो रामपुर शानदार रहा। 9 जून को रेडियो धारावाहिक कहानी खंड रूप पसंद आया। एमन तंजेल ने शब्दावलियों का प्रोग्राम शानदार किया। कानून और हम में कृष्ण कुमार जी से अवधेश कुमार गौतम जी की बातचीत पसंद आई। अंकुर राजपूत जी का गीत गाता चल अच्छा लगा। आज के मेहमान में असीम सक्सेना जी की जुबैर शमसी साहब से बातचीत बहुत पसंद आई है। जुबैर साहब अच्छी शख्सियत के इंसान हैं। और 10 जून को सुनील सक्सेना जी का आपके अनुरोध पर बेहद पसंद आया कहानी खंडरों की भाग संख्या 2 पसंद आया। कुमकुम शैजी आगा का गीत गाता चल बेहतरीन लगा। दिल ढूंढता है असीम सक्सेना जी का लाजवाब अंदाज में पेश किया, हमें और हमारे परिवार वालों को और दोस्तों को बेहद पसंद आया। शब्दावलियों का चयन, उस पर गानों का चयन शानदार था। 11 जून को अपर्णा जी का सुबह सवेरे बेहद पसंद आया। तीसरी कड़ी कहानी खंडरों की ये भी पसंद आई है। सुरेंद्र कौर जी का मनभावन अच्छा लगा है। रोहित कुमार जी का गीतांजलि इनको पसंद आया है। 12 जून को स्वास्थ्य संदेश, अमृत कलश, रेणु यादव जी का सुबह सवेरे, फिर कहानी खंडरों की कड़ी संख्या 4 इनको बहुत पसंद आई है। नाते कव्वाली इनको पसंद आया है। जवेरिया जी का गीत पसंद आया है। और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा है। 13 जून को अपर्णा जी का हेलो फरमाइश शानदार पेश किया। छांव बरगद की में असीम सक्सेना जी की ब्रज राम मौर्य जी से बातचीत इनको बहुत पसंद आई है।
0: एक लंबा सिलसिला है मनोज उन कार्यक्रमों का जो गफ्फार खान साहब को और इनके परिवार के लोगों को पसंद आए हैं। आकाशवाणी रामपुर ने जो वाकथन का आयोजन किया था उसमें सहभागिता थी आपकी भी। आप भी हमारे साथ चले आकाशवाणी के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के मकसद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो इस वाकथन में आकाशवाणी के साथ जुड़े, साथ चले, साथ आए। और जो धरोहर के अंतर्गत हमने कार्यक्रम प्रसारित किए, चाहे वो कमल शर्मा जी से बातचीत हो, चाहे वो चंद्रिका जोशी जी से बातचीत हो, कुलविंदर सिंह कंग जी से बातचीत हो या आदित्य प्रकाश तिवारी जी से बातचीत हो, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई बरस रेडियो को दिए हैं और रेडियो के कार्यक्रमों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसकी लोकप्रियता में इन सब का विशेष योगदान है अपने अपने क्षेत्र में। तो हमने उनसे बातचीत की, उनका वक्त हमें मिल पाया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और शुक्रगुजार आपके भी हैं कि आपने बड़े मन से हमारे इस कार्यक्रम को पसंद किया, सराहा। मनोज ने भी मेहनत की थी इस कार्यक्रम के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और कहानी खंडरों की धरोहर के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे थे और आज से एक नया धारा

0: एक और फन बेमिसाल है। ये हम धरोहर के अंतर्गत शुरू कर रहे हैं, आप ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ रहिएगा। जो कार्यक्रम आपको पसंद आए, उनके प्रस्तुतकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी और इनके घर के सभी लोग लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें रामपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर जो आकाशवाणी रामपुर ने विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए बहुत ही अच्छे लगे, खासकर धरोहर के अंतर्गत 7 तारीख को आपका पत्र मिला, असीम साहब और सुनील साहब की प्रस्तुति में सुना अच्छा लगा। 9 और 11 को एमन तंजील ने मनभावन कार्यक्रम पेश किया, बहुत ही अच्छा लगा। 10 तारीख को हमेशा की तरह असीम जी ने दिल ढूंढता है कार्यक्रम पेश किया, बहुत अच्छा लगा। खूबसूरत अंदाजे पेशकश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध है कि युववाणी कार्यक्रम में एक दिन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम और शाम में गजल कार्यक्रम शुरू कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी।
0: लाल मोहम्मद भाई बहुत पुराने दिनों की तरफ ले गए मनोज, जब युववाणी में शाम गजल भी हुआ करती थी और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंद्रधनुष भी हुआ करता था। कार्यक्रमों में परिवर्तन होते हैं, कुछ नया कलेवर देने की कोशिश की जाती है। युववाणी अनुभाग बहुत नए नए सेगमेंट आपके लिए लेकर आया है और उस कोशिश में पूरी युववाणी की टीम लगी हुई है कि किस तरह से कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपकी बात हम अनुभाग तक ज़रूर पहुंचाएंगे जब भी संभव होगा। तो ये जो आपने लिखे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम शाम गज़ल, ये आपको सुनने को मिले, ये कोशिश की जाएगी। और कार्यक्रम जो आपने पसंद किए हैं, दिल ढूंढता है कार्यक्रम तो एक तरह से श्रोताओं का कार्यक्रम है, उसमें अपना तो कुछ है नहीं। जो श्रोता अपनी बात लिखकर भेजते हैं वो इतनी खूबसूरत होती है, इतने ढंग से लिखी हुई होती है कि बस हम तो उसको हूबहू पढ़ देते हैं। श्रोताओं को जाती है इस कार्यक्रम की सफलता का जो श्रेय है। कार्यक्रम सुनने के लिए, लाल मोहम्मद भाई पसंद करने के लिए आभारी हैं हम आपके, इसी तरह से सुनते रहिए।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आकाशवाणी रामपुर केंद्र से सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं। 8 जून का सुबह सवेरे सुना, बहुत ही अच्छा लगा। 9 जून का गीत आपके नाम सुना, ये कार्यक्रम भी इनको पसंद आया है। 10 जून का दिल ढूंढता है प्रोग्राम सुना, जिसे पेश किया था जनाब असीम सक्सेना जी ने। श्रोताओं के ईमेल व चिट्ठियाँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ी, श्रोताओं की तहरीर बहुत ही खूबसूरत थी और असीम सक्सेना जी ने अपनी मधुर आवाज़ में पढ़कर प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। शानदार प्रस्तुति के लिए असीम सक्सेना जी को बधाई। 11 जून का गीत गाता चल सुना, बहुत ही अच्छा लगा। 12 जून को आपके अनुरोध पर सुना, ये भी अच्छा लगा। 13 जून का गीत आपके नाम और हेलो फरमाइश, ये दोनों ही प्रोग्राम अपर्णा जी ने बहुत ही शानदार अंदाज में पेश किए, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई। अन्य प्रोग्राम भी सुने जैसे हेलो रामपुर, कृषि जगत, उर्दू प्रोग्राम, श्रोता मंच, परिवार जगत, मेरी माटी मेरा देश, भक्ति आराधना आदि, ये सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपने जो दिल ढूंढता है प्रोग्राम की पोस्ट फेसबुक पर शेयर की थी, हमें बहुत अच्छी लगी। अन्य प्रोग्राम की पोस्ट भी इसी तरह फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि सभी श्रोता मालूम हो जाए कि कुछ उद्घोषक प्रोग्राम में बहुत कम आ रहे हैं। अब आगे इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं जिनमें सुनील सक्सेना जी का है और आपका नाम भी है सर, और ये गुजारिश भी करते हैं कि सभी उद्घोषक गीत आपके नाम, हेलो फरमाइश, हेलो रामपुर और पत्रों पर आधारित मनभावन प्रोग्राम में अवश्य आएं, बाकी अगले खत में
0: आते हैं। ये सभी लोग किसी न किसी कार्यक्रम में आपसे मिलते रहे हैं, भले ही मुलाकात थोड़े वक्त की हो लेकिन मुलाकात होती ज़रूर है। कोशिश करेंगे कि आगे भी मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहे। दिल ढूंढता है कार्यक्रम को आपने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पहले भी कहा था कि इस बधाई के मुस्तहक हमारे श्रोता हैं जो भागीदारी कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में मनोज एक अच्छी बात इस बार ये थी कि श्रोताओं के जो खत हमें मिले वो समय से पहले मिले ताकि उनको एक बार अच्छे से पढ़ने में भी सुविधा हुई। एंड टाइम पर कुछ ईमेल जो मिलते हैं वो पहले तो पढ़ने में थोड़ी, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो श्रोता एक बार फिर से हम अनुरोध कर रहे हैं।

0: से स्वीकार करें कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अगर आपकी पत्रावली या आपके खत, आपकी शब्दावली, आपके जज्बात हमें पहले से ही मिल जाएंगे तो बेहतर रहेगा, अच्छे से कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में हमें सुविधा होगी। कार्यक्रमों को सुनने के लिए, पसंद करने के लिए तौफीक, अतीक और दानिश सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक फेसबुक पर कार्यक्रमों की पोस्ट शेयर करने की बात है तो हम लगातार ऐसा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है इंदिरा कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत जी की। लिखते हैं कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा नमस्कार। 6 जून को श्रोता मंच में मध्य प्रदेश के श्रोता राजेश सोनी जी से मनोज कुमार की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। राजेश सोनी जी की यह बात दिल को छू गई कि उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन रेडियो को सुनकर उसके कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्होंने अक्षर ज्ञान हासिल कर पत्र लिखने की शुरुआत की। यह आकाशवाणी का बड़ा योगदान है कि उसने एक श्रोता के जीवन में शिक्षा का प्रकाश फैलाया। श्रोता मंच कार्यक्रम की बदौलत ही हम श्रोता साथियों की प्रेरित करने वाली ऐसी अनसुनी दास्तान सुन पाते हैं। यह देखकर

0: अंकित कर हमें उन्हें जानने समझने का अवसर प्रदान करते हैं। 7 जून को आकाशवाणी के 90 साल के सफर पर सुबह सवेरे में सुनील सक्सेना जी की आकाशवाणी देहरादून की सहायक केंद्र निदेशक मंजुला नेगी और धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व वरिष्ठ प्रसारक आदित्य प्रकाश तिवारी जी से असीम सक्सेना जी की बातचीत सुनी। दोनों ही बेहतरीन कार्यक्रम थे। बातचीत सुनकर कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग के दौरान आकाशवाणी रामपुर में तत्कालीन कार्यक्रम अधिशासी मंजुला नेगी जी से मुलाकात की यादें तरोताजा हो गईं। यह जानकर अच्छा लगा कि वह आज भी आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं से मोबाइल के माध्यम से जुड़ी हैं। श्रोताओं का उद्घोषकों से तो जुड़ाव होता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं जो श्रोताओं का जिनसे सीधा जुड़ाव होता है। आकाशवाणी की लोकप्रियता में मंजुला नेगी और आदित्य प्रकाश तिवारी जैसे समर्पित प्रसारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। 7 जून को ही तरन्नुम जी द्वारा प्रस्तुत मनभावन कार्यक्रम पसंद नहीं आया। तहरीर आधारित कार्यक्रम और फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम की प्रस्तुति में अंतर होता है। प्रेजेंटर जब तक शब्दावली के माध्यम से श्रोताओं द्वारा भेजे गए एहसास से नहीं जुड़ पाते, तब तक वह श्रोताओं के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। तरन्नुम जी की पेशकश में यही कनेक्शन मिसिंग था। उनके द्वारा शब्दावली के लिए फरमाइशी शब्द का इस्तेमाल भी अखरा। 8 जून को फेसबुक लाइव के माध्यम से आकाशवाणी वाकेथन 2026 से जुड़कर अच्छा लगा। इस वाकेथन के साथ आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने पर चले जश्न का सिलसिला भी थम गया। इस दौरान आकाशवाणी रामपुर ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनकी याद हमेशा जहन में रहेगी। 10 जून को असीम सक्सेना जी की प्रस्तुति में प्रसारित दिल ढूंढता है कार्यक्रम का जिक्र न करूं तो यह पत्र अधूरा रहेगा। रात की चुप्पी में श्रोताओं के एहसासों और कर्णप्रिय गीतों के माध्यम से असीम जी अपनी सुमधुर आवाज में जो ताना वाना बुनते हैं वह अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह उनकी लाजवाब पेशकश का ही जादू है कि कार्यक्रम के बाद भी बहुत देर तक उनकी प्रस्तुति दिलो दिमाग में छाई रहती है। दिल ढूंढता है कि प्रत्येक अंक संगणीय दस्तावेज होता है। यदि आप इसके प्रत्येक अंक को अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी प्रसारित कर दें तो जो श्रोता देर रात की वजह से यह कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं वह बाद में अपनी सुविधा अनुसार कभी भी यह कार्यक्रम सुन सकते हैं। देखकर अच्छा लगता है कि आपने मेरे सुझाव पर गौर कर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर शेयर की। पोस्ट को यदि आप कार्यक्रम के प्रसारण से 1-2 दिन पूर्व शेयर करें और पोस्ट में कार्यक्रम से संबंधित ईमेल आईडी को भी साझा कर दें तो देश विदेश के श्रोताओं को आकाशवाणी रामपुर के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़ने की सुविधा होगी। इस बार के लिए इतना ही। शेष फिर
1: मोहन सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चिट्ठी के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटे हुए है। शुरुआत आपके खत के आखिर से ही करते हैं, जो आपने बात लिखी है कि 1-2 दिन पहले ही पोस्ट हो जाए कोई समस्या नहीं है, हम 1-2 दिन पहले ही इस पोस्ट को शेयर कर देंगे। और जहाँ तक ईमेल की बात है तो एक ही ईमेल है, patramila@aarrampur.com। इस ईमेल पर हम दिल ढूंढता है के भी खत मंगाते हैं और आप लोग पत्रमिला कार्यक्रम के लिए भी खत भेजते हैं। और जहाँ तक कनेक्शन की बात थी कि आपको वो कनेक्शन मिसिंग लगा 7 जून के मनभावन कार्यक्रम में, बात वहीं आ जाती है जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि अगर शब्दावली हो या खत हो पहले से मिल जाएंगे तो सुविधा रहेगी कि उनको पढ़ लिया जाएगा, आत्मसात कर लिया जाएगा और फिर प्रेजेंटेशन में भी भावनात्मक रूप से जुड़ने के बाद प्रस्तुति श्रोताओं तक पहुँचाई जा सकेगी। और जब अचानक से कोई चिट्ठी हमारे सामने आती है तो एक तो कभी कभार ईमेल भी इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश कह सकते हैं, उसमें लिखे हुए होते हैं और पढ़ने में कुछ का कुछ भी हो जाता है। अब लाइव है, उसी समय ईमेल आया है तो पढ़ना भी है, इसलिए श्रोताओं से एक विनम्र अनुरोध यही है कि कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के कार्यक्रमों के लिए, तहरीरी प्रोग्राम्स के लिए अपने जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि विचार तो आपके मन में हफ्ते भर पहले से ही चल रहे होते हैं कि कौन से बिंदु को, कौन सी बात को आज कार्यक्रम में लिख भेजना है, तो थोड़ा सा अगर पहले लिख देंगे तो हमें सुविधा रहेगी, कनेक्शन भी बन जाएगा और फिर उस तरह की दिक्कत नहीं आएगी जो 7 जून के कार्यक्रम में आई। शब्दावली के लिए फरमाइश शब्द का इस्तेमाल निश्चित रूप से अखंडने वाली बात है, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और आगे से उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आकाशवाणी ने जो कार्यक्रम प्रसारित किए अपने 90 साल के जश्न के सिलसिले में, आपको पसंद आए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता मंच में यही कोशिश थी हमारी कि जो श्रोता स्टूडियो नहीं आ सकते लेकिन हैं हमारे श्रोता, भले ही भारत के किसी भी प्रांत से हों, किसी भी जिले

0: से हों, हम उनसे जुड़ें, उनके जो जज्बात हैं वो हम तक भी पहुँचें, हमारे श्रोताओं तक भी पहुँचें, इसी कोशिश में राजेश सोनी जी से बातचीत थी। जब कभी वो आगे भी मौका मिलेगा तो दूर दराज के श्रोताओं से बातचीत का ये सिलसिला फ़ोन इन के माध्यम से हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चिट्ठी के लिए।
1: अगली चिट्ठी ये हम तक पहुंची है, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख और इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान। लिखते हैं कि हर लफ्ज़ में अपनापन, हर सुर में मिठास है, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में दिल को छू लेने वाली बात है। उद्घोषकों की आवाज़ जब रेडियो पर गूंजती है तो हर महफिल में खुशियों और यादों की बरसात है। 7 जून का आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सुनील सक्सेना जी द्वारा पत्रों का वाचन और आदरणीय असीम सक्सेना जी द्वारा दिए गए जवाब अत्यंत प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक लगे। 8 जून को पहली सभा के कार्यक्रम दीक्षा जी तथा सायं सभा में रोहित कुकरेती जी की शानदार प्रस्तुति ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। 9 जून को गीत आपके नाम में एमन तंजील और गीत गाता चल में आदरणीय अंकुर राजपूत जी ने अपने बेहतरीन अंदाज में श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। 10 जून को सुनील सक्सेना जी की प्रस्तुति में कार्यक्रम को विशेष निखार दिया गया। वहीं शाम की सभा में शैजी आगा जी की प्रस्तुति भी अत्यंत सराहनीय रही। 11 जून को पहली सभा में अपर्णा जी प्रभावशाली प्रस्तुति रही और गीत आपके नाम में सुरेंद्र कौर जी की मधुर आवाज़ ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। 12 जून को रेणु यादव जी ने अपने शानदार संचालन और बेहतरीन गीतों के चयन से श्रोताओं का दिल जीत लिया। इसी दिन दूसरी सभा में गीत गाता चल में इशरत जवेरिया जी द्वारा प्रस्तुत गीत गाता चल में गीतों का चयन शानदार रहा, आपकी सुंदर प्रस्तुति ने मन मोह लिया। 13 जून को रेणु यादव जी की प्रस्तुति काबिले तारीफ रही तथा गीत आपके नाम में अपर्णा जी ने अपने शानदार अंदाज में समा बांध दिया। साथ ही रेणु तिवारी जी, मनोज कुमार, अनुराग, आकांक्षा, सरस्वती, दीपिका, अर्शी मसूद जी की आकर्षक प्रस्तुतियां भी कार्यक्रमों को निरंतर नई ऊंचाइयां प्रदान करती हैं। आकाशवाणी रामपुर के सभी उद्घोषक और प्रस्तुतकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी की मधुर आवाज़ समर्पण और उत्कृष्ट प्रदान करती रहे।
0: वो सारे नाम जो आपने इस ईमेल में लिख भेजे हैं, उन सब की तरफ से, क्योंकि उनके द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम आपको पसंद आए हैं, तमाम कार्यक्रमों का जिक्र आपने लिखा है, जीशान वारसी साहब, अयूब खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो कार्यक्रमों को सुनने के लिए, और फिर उन प्रस्तुतकर्ताओं की तरफ से, एक एक प्रस्तुतकर्ता की तरफ से आपका आभार, आपका धन्यवाद, क्योंकि हौसला अफजाई से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ करने की बात भी जहन में आती है। कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर कार्यक्रम आप तक आने वाले दिनों में पहुँचें। बस कार्यक्रमों को इसी तरह से आप अगर सुनते रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहेंगे, अच्छा लगे तो भी लिखिए और अगर अच्छा ना भी लगे तो भी ज़रूर लिखिए। चिट्ठी में आप अगर बिल्कुल आईने की तरह हमारे कार्यक्रमों का खाका खींचेंगे तो वो हमारे लिए बेहतरी का सबब बनेगा। श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और वो जिस कमी की तरफ इशारा करते हैं उस कमी की तरफ प्रेजेंटर्स का ध्यान कभी कभी नहीं भी जाता है, तो अगर आप बताएंगे तो हम उस गलती को दूर करने की कोशिश करेंगे। खत भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस वादा यही कि आगे भी कार्यक्रम जरूर सुनिएगा, चिट्ठी भेजिएगा।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। लिखते हैं कि 9 जून को गीत गाता चल में अंकुर राजपूत जी को सुना बहुत ही अच्छा लगा। 10 को आपके अनुरोध पर सुनील सक्सेना जी को सुना ये भी पसंद आया। 10 को ही गीत गाता चल में शैजी आगा जी को सुना अच्छा लगा। 11 को आपके अनुरोध पर अपर्णा जी को सुना ये भी अच्छा लगा। 11 को ही धरती गाती है में रामानंद मौर्य जी को सुना बहुत ही अच्छा लगा। 12 तारीख को ही गीत आपके नाम में तरन्नुम जी को सुना अच्छा लगा। 12 को गीत गाता चल में जवेरिया जी को सुना अच्छा लगा। हेलो रामपुर, मन भावन, कुमकुम, गीत गाता चल, गीत आपके नाम, गीतांजलि, आपके अनुरोध पर धरती गाती है, ये सभी कार्यक्रम मन लगाकर सुनते हैं। इस सप्ताह में लगभग सभी कार्यक्रम सुने हैं और सभी पसंद भी आए हैं।
0: इनका खत पढ़ते हुए मनोज आपको भी अच्छा लगा होगा,
1: बिल्कुल,
0: और इनका खत सुनते हुए हमें भी अच्छा लगा और हमारे तमाम श्रोताओं को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे कार्यक्रम इन्होंने जो सुने वो इनको लाजवाब लगे, अच्छे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस सप्ताह के सभी कार्यक्रम आपने सुनने का वक्त निकाला, आपने उन कार्यक्रमों को पसंद किया। सभी की तरफ से आपके आभारी हैं हम, और कोशिश हमारी जारी रहेगी कि आकाशवाणी रामपुर इसी तरह से ऐसे कार्यक्रम अपने श्रोताओं तक पहुंचाए जो उनके दिलों को प्रभावित कर सकें, दिल को छू कर गुजरें। खत आपका मिला है, आगे भी मिलता रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जसपुर उत्तराखंड से ये चिट्ठी हम तक पहुंची है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत। लिखते हैं कि हम आकाशवाणी रामपुर के पुराने और नियमित श्रोता हैं। आपके यहाँ से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और अच्छे मनोरंजक होते हैं। आपका पत्र मिला, गीत आपके नाम, आपके अनुरोध पर गीत गाता चल, गीतांजलि, दिल ढूंढता है, मन भावन, नाटक, कृषि जगत, ग्रामीण जगत आदि आदि, ये सभी प्रोग्राम इनको पसंद आते हैं। और पिछले सप्ताह का आपका पत्र मिला सुना प्रोग्राम में सुनील सक्सेना जी ने पत्रों को बहुत ही प्यार के साथ पढ़ा और भाई असीम सक्सेना जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पत्रों के उत्तर दिए, अच्छा लगा। 10 जून को आपके अनुरोध पर प्रोग्राम सुना जो कि पेश किया था सुनील सक्सेना जी ने। प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाए गए, काफ़ी लेटर्स को भी शामिल किया गया प्रोग्राम में, हमने भी शामिल किया गया, दिल से शुक्रिया। आगे आप लिखते हैं कि प्रोग्राम गीत गाता चल सुना रेणु तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत था, गीतों का चयन अच्छा और काफ़ी श्रोताओं को शामिल किया गया। गीत गाता चल प्रोग्राम में इन्होंने अनुराग राजपूत जी को भी सुना, ये भी इनको पसंद आया है। इसके अलावा आगे लिखते हैं कि जिन आरजे साथियों ने प्रोग्राम को पेश किया हम उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सभी बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं, हमको प्रोग्रामों में शामिल किया 10 जून को। और इसी दिन का इन्होंने लिखा है कि दिल ढूंढता है प्रोग्राम जो प्रस्तुत किया गया था जनाब वसीम सक्सेना जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को पेश किया, जिन साथियों की रचनाएं प्रोग्राम में शामिल की गई वो बहुत ही खूबसूरत थीं, प्रोग्राम सुनकर बहुत ही अच्छा लगा।
0: रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, नाजमा बेगम रियाज और रिफाकत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे केंद्र से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों को सुना है, उसको पसंद किया है और फिर सिलसिलेवार उनके बारे में लिखकर भेजा है। अच्छा लगा। तो किसकी पेशकश थी और क्या खास बात थी उस कार्यक्रम में? आपने विस्तार से इन सब बातों की समीक्षा की है खत भेजने के लिए, और सभी प्रेजेंटर्स की तरफ से आपके आभारी हैं हम और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चिट्ठियाँ भेजने का ये सिलसिला यूँ ही बरकरार रखिएगा।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट जी की। लिखती हैं कि आकाशवाणी रामपुर परिवार को हमारी ओर से प्रणाम नमस्ते। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम श्रोताओं के विचारों को पिछले अंक में हमने सुने। आप ऐसे ऐसे हस्तियों की भेंटवार्ता सुनाए कि सुनकर मन गदगद हो गया। इसी क्रम में समाचार वाचिका श्रीमती चंद्रिका जोशी, प्रसारक और कमेंटेटर श्री कुलविंदर सिंह कंग जी और विविध भारती के वरिष्ठ उद्घोषक श्री कमल शर्मा जी, इन सभी महान व्यक्तित्व के धनी से बातचीत मनोज कुमार जी ने की। आपके सवाल और जवाब सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। 2014 में भाटापारा सम्मेलन में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विविध भारती पर हम मैसेज भेजते थे जिसके बारे में कमल शर्मा जी और राजेंद्र त्रिपाठी सर को बोली कि आप मेरा नाम सही नहीं पढ़ते क्यों। इन्होंने मुझे एक पल देखकर हंस पड़े और बोले आप लड़की हैं, हमें लगा कि आप लड़के हो। फिर उस दिन से बराबर पढ़ने लगे। जब कमल शर्मा जी की बातें सुन रही थी तो उनकी प्रत्यक्ष दर्शन की छवि मेरे मन में बन रही थी। आकाशवाणी रामपुर श्रोताओं के साथ साथ ऐसे ऐसे विभूतियों से परिचय कराए और अभी भी कोई ना कोई महान व्यक्ति को सुन ही रहे हैं जिन्हें सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य संदेश में 14 जून यानी आज सुबह रक्तदान का महत्व विषय पर आदरणीय असीम सक्सेना जी बहुत ही सार गर्वित बातें बताएं जिससे महिलाओं को भी रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए, सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। आप सभी प्रस्तुति लाजवाब सराहनीय है, आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं।
0: अनूप शहर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट। अनूपपुर की हमारी ये श्रोता नियमित श्रोता हैं और लगातार हमारे कार्यक्रमों को सुनती हैं। धरोहर के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम 1 जून से 8 जून के बीच प्रसारित हुए उनमें से विविध कार्यक्रमों को इन्होंने सुना। और हाँ, आपके नाम को लेकर अक्सर लोगों को ये लगता है कि किसी पुरुष श्रोता का नाम है, लेकिन तभी आपने लिखा है, इस बात का जिक्र आपने कमल शर्मा जी से भी किया, वो पुरानी बातें हैं, वो पुरानी यादें एक अनमोल हिस्सा बन जाती हैं हमारी जिंदगी का और हमेशा याद रहती है, जैसे कि ये बात कमल शर्मा जी की आपको याद रह गई। इसी तरह से बहुत सारी बातें आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते हुए आप महसूस करते होंगे और कहीं ना कहीं आपकी यादों की जो डायरी है उसमें वो दर्ज भी हो जाते होंगे। हमारी कोशिश है कि हम उन सभी यादों को सहेजें और समय समय पर उन यादों में से कुछ मोती आपके लिए बटोर लाएं। इसी सिलसिले में ये प्रयास था, आगे भी जारी रहेगा। रक्तदान पर आज विभिन्न कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित हुए हैं और इसी सिलसिले में सुबह सवेरे में भी चर्चा हुई और यही बात स्वास्थ्य संदेश में भी रही और 2:30 पर भी एक विशेष परिचर्चा हम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं। रक्तदान महादान ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आज विश्व दिवस है इस महान कार्य का और इसमें हम सभी की सहभागिता ज़रूरी है। खत भेजने के लिए जयमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लिखती रहिए, सुनती रहिए आकाशवाणी रामपुर को।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है ईदगाह मुरादाबाद से सफ़ी अहमद अंसारी और रईस दूल्हा अंसारी साहब की। लिखते हैं कि 7 जून का आपका पत्र मिला प्रोग्राम सुना जो सुनील सक्सेना जी और असीम सक्सेना जी ने पेश किया। पत्रों के लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उत्तर दिए गए, अच्छा लगा। 10 जून को मन भवन प्रोग्राम सुना जो अहमद तंजील ने पेश किया, अच्छा लगा। इनकी ब्रॉडकास्टिंग लाजवाब है। 11 जून का सुरेंद्र कौर का मन भवन प्रोग्राम दिल को छू गया। इसी दिन का गीत आपके नाम सुना, ओल्ड इज गोल्ड गीत सुनवाए गए, अच्छा लगा। आपसे एक शिकायत है कि जीमेल हो या व्हाट्सएप, लिसनर 2 एड्रेस लिखकर भेज रहे हैं। आप के एक ही एड्रेस पढ़ें, आपकी मेहरबानी होगी। और आगे इन्होंने लिखा है, प्रेजेंटर सब अच्छे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है।
0: आपने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया है, ज़रूर अपने सभी प्रेजेंटर से हमारा आग्रह रहेगा कि इस बात का ध्यान रखा जाए और कोशिश तो सभी यही करते हैं कि एक श्रोता का नाम एक ईमेल में अगर आ चुका है तो दोबारा उसको शामिल न किया जाए ताकि नए श्रोता को मौका मिल सके। ऐसा करते भी हैं लेकिन कभी कभार हमारे श्रोता भी ईमेल की झड़ी लगा देते हैं और एक के बाद एक हर गाने पर उनका ईमेल आ जाता है, फिर याद रखना थोड़ा सा कहीं जाकर मनोज मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और कुछ श्रोता तो सर ऐसा करते हैं कि अपने ही नाम को कई अलग अलग सरनेम से लिख करके भेजते हैं,
0: तो इसकी जिम्मेदारी थोड़ी श्रोताओं की भी बनती है। आप हमारे श्रोताओं से भी हमारी ओर से ये आग्रह अगर करेंगे और वो इस बात को मान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कार्यक्रम सुनने के लिए, खत भेजने के लिए धन्यवाद।
1: अगली चिट्ठी हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं रफत साहब और इन मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, लिखते हैं कि आकाशवाणी रामपुर के हम पुराने और नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, चिट्ठी भी भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं, व्हाट्सएप पर SMS भी भेजते हैं। आज सबसे पहले आकाशवाणी की स्थापना दिवस पर हमारी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी मैं आपके यहाँ से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम पेश किए गए हमने YouTube चैनल पर, Facebook पर और आकाशवाणी के Facebook पर देखे, बहुत अच्छा लगा। हमारा आना तो नहीं हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपके प्रयास, आपकी मेहनत रंग ले आती है। जब भी आकाशवाणी रामपुर के उद्घोषक काफ़ी मेहनत करते हैं, आगे लिखते हैं कि आपकी मेहनत रंग ले आती है। बात करें सुनील सक्सेना, अखिलेश सक्सेना, मनोज कुमार, अंकुर राजपूत, सुरेंद्र कौर और रेणु, बहुत खूबसूरती से कार्यक्रमों को हम तक पहुंचाते हैं। इस सप्ताह इन सभी लोगों के प्रोग्राम हमने सुने हैं, बहुत ही अच्छे भी लगे हैं।
0: इन सब की तरफ से और बाकी प्रेजेंटर्स जिनके नाम आपसे लिखने रह गए हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रमों के लिए इतना वक्त निकालते हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं, कार्यक्रम आपको अच्छे भी लगते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करेंगे कि अगली बार जब आप चिट्ठी लिखें तो कुछ इसी तरह की बात आप लिखें, क्योंकि हम कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम सुनने के लिए, पसंद करने के लिए शुक्रिया आपका, और आगे भी खत ज़रूर लिखिएगा।
1: मोहल्ला हलवायान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और इनके परिवार वाले लिखते हैं कि आपको हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप। अब देखिए सर, ये चिट्ठी इन्होंने हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजी है और ये चिट्ठी जो है वो बरेली आकाशवाणी केंद्र के लिए लिखी गई है। इसमें अब क्या ही पढ़ें आगे।
0: मिथिलेश, एक और ईमेल भेजा है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि अच्छा, वो शायद रामपुर के लिए हो।
1: ये भी सर बरेली के लिए है।
0: ये भी बरेली के लिए, तो वकार साहब ऐसा मत कीजिए, सही पते पर दस्तक दीजिए, क्योंकि आज आपने देखिए कोशिश भी की, दो बार आपका ईमेल हमें मिला है और दोनों ही बार जो मजमून है वो आकाशवाणी बरेली के लिए है। पता ज़रूर हमारा है, तो मजबूरी है हमारी कि हम जाकर भी आपके इस ख़त को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। ख़त भेजने के लिए आपका हम शुक्रिया तो ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि अगर आपने पता सही लिखा है तो ख़त भी ज़रूर लिखा होगा,
1: यानी कि कहीं ना कहीं दिल में
0: कुछ गड़बड़ हो गई है।
1: बिल्कुल, और सर कहीं ना कहीं आकाशवाणी रामपुर इनके दिल में ज़रूर है।
0: हाँ, इसी तरह से दिल में रखिएगा, अगर चिट्ठी ना भी भेज पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सिलसिला ना टूटे इस बात का प्रयास हमारे श्रोताओं की तरफ से रहना चाहिए, क्योंकि श्रोता हैं तो आकाशवाणी है और आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम श्रोताओं के लिए हैं, उनको जहन में रख के ही तैयार किए जाते हैं। एक चिट्ठी सत्येंद्र चंसौलिया साहब की मनोज दिखाई दे रही है।
1: बिल्कुल, ग्राम पंजूनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी हमें लिखते हैं कि असीम जी व मनोज कुमार जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय जनगणना में सहभागिता निभाने के कारण अपनी प्रतिक्रिया देने में असफल हो रहे हैं। संभावना है अगले रविवार से उपस्थिति दर्ज करा सकूंगा। आशा है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे।
0: बिल्कुल मजबूरी नहीं, बहुत जिम्मेदारी वाला काम आप कर रहे हैं, क्योंकि जनगणना एक महाअभियान है जो सभी के सहयोग से पूरा होगा। चरणबद्ध तरीके से ये जनगणना का कार्य संचालित किया जा रहा है और इस बार जनगणना थोड़ी सी अधिक विस्तृत भी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां इसमें मांगी जा रही हैं। हम लगातार इस संबंध में विज्ञापन अपने श्रोताओं को जागरूकता के लिए प्रसारित कर रहे हैं और भी समय समय पर जो आवश्यक जानकारी होती है वो दी जाती है। जनगणना सभी के सहयोग से पूरी की जा सकेगी 1927 के लिए ये जो जनगणना कार्य है, तो आप तो एक महत्वपूर्ण अभियान से जुड़े हैं, आपको हम सलाम करते हैं, क्योंकि ये एक सेवा का कार्य है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इसके निर्वहन में आप इतनी सजगता के साथ जुटे हुए हैं। शुभकामनाएं हमारी स्वीकार कीजिए और हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस महान कार्य से आप जुड़े रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से सफल हों, सफलता पाएँ और देश को वास्तविक जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध हो सके। सत्येंद्र चंसौलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए। भले ही सहभागिता आपकी न मिल पा रही हो, लेकिन जब भी समय मिले तो सुन लीजिएगा।
1: और सर, चिट्ठियां जितनी हम तक अभी तक पहुंची थी उन सबको हमने शामिल करने है, लेकिन श्रोताओं से एक हम गुजारिश ये करेंगे सर कि बहुत सारे ईमेल इसमें गीत आपके नाम के हैं।
0: हाँ, और हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार, जिसमें नारायण खर्चे जी का भी नाम काफ़ी है, क्योंकि उनके बहुत सारे ईमेल हमें इस कार्यक्रम में दिखाई देते हैं।
1: और एक और श्रोता हैं वलीउल्ला अंसारी जी, इनके जी भी ईमेल बहुत सारे हैं इसमें। एक रविंद्र मोहन दास जी हैं, ये भी इसी में अक्सर ईमेल भेजते हैं। धर्मेंद्र सेन जी हैं, और बहुत सारे ईमेल हम यहाँ से खींच करके डस्टबिन में भी डाल चुके हैं सर, क्योंकि यहाँ उनके फरमाइश तो पूरी हम नहीं कर सकते।
0: यही बात है मनोज, क्योंकि अगर सही पते पर दस्तक दी जाएगी तो वो दरवाज़ा भी खुलेगा और जो उसका भाव है वो भी समझा जा सकेगा। हमने आपसे बार बार अनुरोध किया है कि गीत आपके नाम कार्यक्रम के लिए एक अलग से ईमेल है, उस ईमेल एड्रेस पे आप अपनी फरमाइशें भेजें, क्योंकि आप यहाँ पर भी फरमाइश कर रहे हैं, मेहनत आपकी बराबर उतनी ही जा रही है, वक्त आपका उतना ही लग रहा है, लेकिन खत शामिल नहीं हो पाता क्योंकि उस वक्त ये मेल खुला ही नहीं जाता, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए आप सही एड्रेस पर अपने अपने अगर ईमेल भेजेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी और आपकी ये शिकायत भी दूर हो पाएगी कि हमारे ईमेल कार्यक्रम का हिस्सा

0: नहीं बनते, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब या तो ईमेल गलत पते पर भेजा जाए या फिर कहीं कोई दिक्कत हो। तो अगर पते वाली जहाँ तक बात है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर मन भावन के लिए आपको ईमेल भेजना है, अगर पत्रोत्तर कार्यक्रम के लिए आपको ईमेल भेजना है, चिट्ठी आई है कार्यक्रम के लिए, युवाणी का जो सेगमेंट है, या विभिन्न जो अन्य कार्यक्रम हैं उनमें पत्रोत्तर के लिए अगर आप अपने मेल भेज रहे हैं, तो वो पता लिखें, शेष गीत आपके नाम के लिए जो हमारा फरमाइशी ईमेल पर आधारित कार्यक्रम है उसका एक अलग ईमेल एड्रेस है, उस पर हमारे श्रोता लगातार भेज ही रहे हैं अपनी फरमाइश, आप भी उसी मेल एड्रेस पर भेजिए। और व्हाट्सएप के लिए एक अलग नंबर गीत गाथा चल कार्यक्रम में चल ही रहा है, तो इस तरह से आपका सहयोग भी हमें चाहिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ के कुछ भी असंभव है, हम चाहकर भी वो बात पूरी नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात रही, और दूसरी बात ये कि कार्यक्रम में ईमेल भेजने का सिलसिला लगातार मत जारी रखिए। अगर आपका ईमेल एक बार कार्यक्रम में शामिल हो चुका है, तो दूसरे श्रोताओं को मौका दीजिए ताकि वो भी अपनी फरमाइश
1: और सर एक
0: आकाशवाणी
1: और
0: रामपुर के
1: कंडीशन
0: माध्यम
1: में
0: से सुन
1: श्रोताओं का
0: सके।
1: नाम छूट जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने 12:10 पर अपना ईमेल भेजा तो जो अनाउंसर है वो 12:10 से स्टार्ट करेगा, और अगर मान लीजिए उस लिसनर ने दोबारा से वो मैसेज भेज दिया तो वो फिर लास्ट में चला जाएगा, फिर उसका नाम
0: बिल्कुल
1: छूट।
0: बिल्कुल। और कई बार मनोज ये भी होता है कि जो जैसे दिल ढूंढता है प्रोग्राम की जहाँ तक बात करें, तो एक जो खत था वो हमें 10:52 पर मिला। अब आप सोचिए कि 11 बजे तक का तो कार्यक्रम है और कार्यक्रम को उसी हिसाब से संयोजित किया जाता है, तो अगर 10:52 पर या कार्यक्रम समाप्त होने से 1-2 मिनट पहले आप खत भेजेंगे, तो वो शामिल न कर पाना हमारी विवशता रहेगी।
1: और एक और रिक्वेस्ट सर श्रोताओं से रहेगी कि अपना सरनेम बदल करके हमें अलग अलग ईमेल एड्रेस से भेज रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है।
0: बिल्कुल। और कुछ नाम तो जहन में, जैसे वलीउल्लाह साहब का नाम है,
1: और कई
0: तो
1: बार वो
0: कई जगह आता है और बदल बदल कर आता है, कई बार सरनेम बदल दिया जाता है, कई बार शॉर्ट फॉर्म कर दी जाती
1: सर
0: है,
1: वो
0: इस तरह
1: सरनेम
0: से
1: भी ऐसे होते
0: ये इस तो
1: हैं।
0: एक उदाहरण है। इस तरह से मनोज ये बहुत सारी चिट्ठियां हैं
1: बिल्कुल
0: जिसमें श्रोता नाम बदल कर, जगह बदल कर कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। हम तो उनसे यही अनुरोध करेंगे, और थक चुके हैं ये अनुरोध कर करके, कि कृपया इस कार्यक्रम के लिए अपना नाम तो मत बदलिए, अपनी जगह तो मत बदलिए, क्योंकि बड़े किस्मत वाले हैं आप कि आपको वो जगह मिली, आपको वो नाम मिला जो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया है, तो क्या फायदा उसे बदलने से।
1: बिल्कुल और सर वो सरनेम भी ऐसा होता है कि पढ़ने में अटपटा होता है, अच्छा भी नहीं लगता
0: और
1: है।
0: कई बार कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि ये है भी सरनेम या नहीं,
1: बिल्कुल
0: इसके पढ़ा भी जाए या नहीं, और उस सिलसिले में कई बार छोड़ना उस
1: मजबूरी हो जाती
0: विवादित नाम को हमारे लिए मजबूरी भी हो जाती है और आवश्यकता भी बन जाती है। तो आप लगातार इस बात का ध्यान रखेंगे, एक हमारा अनुरोध है आपसे, बाकी माने ना माने मर्जी आपकी, लेकिन हमें आप पर विश्वास है कि आप हमारी बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। आज कार्यक्रम में हिस्सेदारी निभाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनोज आपका भी शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ रहे। बने रहिए श्रोताओं के साथ, असीम को आप इस कार्यक्रम से आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम आसपास।
1: नमस्कार, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह क्या हुआ खास, आप तक वो जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास, साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। आसपास के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आसपास के आज के इस अंक में शामिल है, इमामबाड़ा किला रामपुर में हुई जश्न गदीर की महफिल, स्थानीय एवं दूर दराज से आए शायरों ने पेश किए कलाम, जनपद रामपुर के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में की विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से की बातचीत। 8 जून को रेडियो प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी रामपुर ने किया वॉकथन का आयोजन, वॉकथन में हर खासवाम हुआ शामिल। नशा मुक्ति के लिए स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक लोगों को कर रहे जागरूक, इस संबंध में जिला अस्पताल रामपुर के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉक्टर शहजाद हसन खान ने दी जानकारी। इमामबाड़ा किला में हुई जश्न गदीर की महफिल में डॉक्टर नायाब हल्लावरी ने ये कलाम पेश किया।

लखनऊ से आए शरण नकवी ने अपने इस कलाम पर खूब वाहवाही पाई।

0: چاہنے والے کو ہوش بخشے گی۔ مہلائے علی ہے ادب سے پیتے رہو، ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی۔ مہلائے علی ہے ادب سے پیتے رہو، کچھ اس طرح سے مناؤ قدیر کی خوشیاں، حسین کربلا سے کہیں کہ جیتے رہو۔
1: जनपद रामपुर के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने विकास भवन रामपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,
2: अधिकारियों से कहा गया कि नवंबर तक 70% बजट विकास का खर्च कर लेंगे और जिलाधिकारी ने 5 जून से 21 जून तक कार्यक्रम थे उसके विषय में बताने का काम किया। 12 साल विश्वास के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 जून को 12 वर्ष हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में माननीय मोदी जी ने का जो सर्वाधिक कालखंड है प्रधानमंत्री पद का 12 वर्ष का लगातार, ये बेमिसाल है। जो कांग्रेस 64 साल में काम नहीं कर पाई, उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 12 वर्ष में कर दिया। उनका पहले ही नारा था, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को सार्थक करने का काम किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू, आखिरी प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, ये कालखंड 64 साल का रहा। ये राजनीति का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब राजनीति का द्वितीय अध्याय प्रारंभ हुआ 22 जून 2014 को, और अब इस अध्याय के मात्र 12 साल हुए हैं। तो 64 साल बनाम 12 साल, जो काम 64 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई वो 12 साल में हुआ। तो इसके लिए संपूर्ण देश में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है और हम लोगों को देश में और उत्तर प्रदेश में राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्म योगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी, एक कर्म योगी और एक जन्म योगी। ये योगियों की सरकार है, भोगियों की और ढोंगियों की नहीं। इसलिए जो कहा जाता है वो किया जाता है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में पूजनीय है, वंदनीय है और वो गौ भक्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो गौ माता की कृपा से मित्रों, हमारी उनके कहे हुए कथन को मैं जरा और बल प्रदान करने का काम कर रहा हूँ। जो लोग गौ को, गाय को पशु घोषित करने की बात करते, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी पशु बुद्धि है। शास्त्र सम्मत उनका कथन यह है, जैसे जन्म देने वाली माँ एक हमारी है, जन्म देती है। इसके बाद हमारी 4 माताएं और हैं। नंबर 1 धरती माता, नंबर 2 भारत माता, नंबर 3 गंगा माता और नंबर 4 गौ माता। ये सबको संकट में डाल दिया है विपक्ष ने। टीएमसी बर्बरता का एक प्रतीक थी और उस बर्बरता के नाते प्रजातंत्र वहां खत्म था। आज प्रजातंत्र वहां बलवती हुआ है, प्रजातंत्र सक्षम हुआ है, इसलिए अपराधियों को दूर दूषित किया जा रहा है, प्रजातंत्र को मजबूत। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है।
1: 8 जून को आकाशवाणी रामपुर के तत्वावधान में आकाशवाणी के प्रसारण को 90 वर्ष पूर्ण होने पर वाकाथन का आयोजन हुआ। वाकाथन में शामिल CRPF ग्रुप के DIG पूर्ण सिंह धर्म शक्तु ने कहा,
3: यह इस फिट इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चल रहा है एंड इस ड्राइव फॉर क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हाँ, रेडियो ये तो हिंदुस्तान की आवाज रही है और अभी भी जब भी हम लोग सड़क पे चल रहे होते हैं या गाड़ियों में होते हैं, ये अभी भी ह्यूज एंटरटेनमेंट और लोगों के मनोरंजन का एक हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है।
1: वाकाथन में शामिल पूर्व सहायक केंद्र निदेशक रामपुर मनदीप कौर बोली,

0: हमारी वकालतन है जो आकाशवाणी रामपुर से हमने शुरू की थी और आगे देखिए कहाँ तक हम जा पाते हैं। टारगेट तो अमेरिका पास का है, लेकिन क्योंकि आज कुछ एग्जाम भी है, बच्चों का पुलिस भर्ती की परीक्षाएं भी है, इसकी स्थिति को देखते हुए ही हम अपने हमारे साथ में है फिजिकल कॉलेज के प्राचार्य भी हमारे साथ में डी आई जी सी आर पी एफ जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी पूरी सी आर पी एफ की सारी टीम हमारे साथ है, पुलिस की पूरी टीम हमारे साथ में है और पूरे आकाशवाणी के जो एंकर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं, स्टाफ हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे वो डॉक्टर्स हैं, वो आर्टिस्ट हैं जो लगातार आकाशवाणी से वर्षों से जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी को जो उनकी सेवाएँ उन्होंने दी हैं उसके लिए हम उनको बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
1: वॉकथन के दौरान आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम अधिशासी विक्रांत चौधरी ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने का आह्वान किया। नशा मुक्ति की बाबत चलाए जा रहे अभियान के संबंध में जिला अस्पताल रामपुर के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉक्टर शहजाद हसन खान ने कहा,
2: जैसे कि आप सभी लोग अवगत हैं, तंबाकू हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है और लगभग 13 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं प्रतिवर्ष भारत में इस तंबाकू जनित रोगों के कारण। इसी के लिए अधिकतम जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनपद रामपुर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे सर्वप्रथम शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जो भी व्यक्ति तंबाकू का व्यापार करते हैं उनको कोटपा अधिनियम का अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। विशेष तौर पर स्कूलों के आसपास ऐसे विक्रेता जो किसी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं उनकी जांच की गई एवं स्थल पर ही जुर्माना अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकतम लोगों का जुर्माना किया गया एवं प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्तियों को भी चेतावनी दी गई एवं प्रचार प्रसार तत्काल हटवाया गया। भविष्य में कभी भी तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार न करने के लिए चेतावनी दी गई। इसके अलावा विशेष तौर पर एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय रामपुर में किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा विशेष तौर पर जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं, किसी प्रकार का गुटखा, खैनी, गुलमंजन या किसी प्रकार के बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, उनके मुंह की जांच की गई, क्योंकि मुंह का कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण तंबाकू ही है। जैसे आप लोग जानते हैं 95% मुंह का कैंसर तंबाकू के कारण होता है। इन सभी गतिविधियों के साथ जनपद रामपुर में ये हफ्ता मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील है, आप सभी लोग कभी भी अपने जीवन में तंबाकू का सेवन ना करें एवं जनपद रामपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के इस महाअभियान में अपना विशेष सहयोग दें और जो भी व्यक्ति किसी प्रकार के तंबाकू से पीड़ित है, तंबाकू लेता है या तंबाकू जनित रोग से पीड़ित है उसको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, जिसका समुचित इलाज की व्यवस्था है, समुचित ये सारी व्यवस्थाएं निशुल्क हैं और आप इसके लिए जिला चिकित्सालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
1: आसपास के आज के इस अंक में बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमारा पता है आसपास कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। इसी के साथ संपन्न होता है क्षेत्रीय गतिविधियों की रिकॉर्डिंग पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आसपास। वाचन एवं संकलन सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी।
3: आसपास अभी आप सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, वाचन स्वर सुहेल जैदी का और प्रस्तुति विक्रांत चौधरी की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं। धरोहर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं धारावाहिक और फन बेमिसाल है। आज सुनिए इसकी कड़ी संख्या 1।

श्रोताओं नमस्कार। आमतौर पर देखा जा रहा है कि हमारी विरासत खत्म होती जा रही है। वीणा, पखावज, रबाब, सुरसिंगार, सुरबहार, दिलरुबा जैसे साज, ध्रुपद, धम्मार और टप्पा जैसी गायकी और हमारा लोक साहित्य और लोक संगीत या तो खत्म हो गया है या फिर नाम मात्र को रह गया है। चार बैत एक ऐसा लोक संगीत है जिसका संबंध एक जाति विशेष अर्थात रोहिलों से है, जो लगभग 1712 में अफगानिस्तान से उत्तरी भारत के इलाकाए कठेर में फौजी नौकरी करने आए और फिर धीरे धीरे सारे कठेर पर अधिकार कर लिया। रोहिलों ने चार बैत गाने की परंपरा शुरू की, जो रोहिलों की परंपरागत गायकी बन गई। लेकिन धीरे धीरे ये विरासत लुप्त होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी चार बैत गायकी को भूलती जा रही है। आज से हम एक नया धारावाहिक शुरू कर रहे हैं, और फन बेमिसाल है, जो कि चार बैत के पूरे सफर को समेटे हुए है। इस धारावाहिक को आप तक पहुंचाने का मकसद है युवा पीढ़ी को उस विरासत के बारे में बताना जो रोहिला तहजीब की अनमोल धरोहर है, जिसमें मिलन, विरह, रंगारंग मौसमों का बयान, साझा सभ्यता, पश्तो, फारसी, उर्दू, हिंदी और इलाकाई भाषाओं का संगम भी है, और जो कभी आम लोगों और खास लोगों की महफिलों में गाई जाती थी और चार बैत के अखाड़ों के कई कई दिन तक जलसे होते थे, लेकिन अब जलसे बहुत कम होते हैं। तो श्रोताओ, आज से शुरू हो रहा ये धारावाहिक और फन बेमिसाल है। तो श्रोताओ, चार बैत की पूरी सफर पर नजर डालेंगे हम आने वाली 13 एपिसोड्स में। आज से शुरू हो रहा ये धारावाहिक हर बुधवार को आप सुनेंगे। आकाशवाणी रामपुर ने इस धारावाहिक को तैयार करने में बहुत शोध कार्य किया है, उसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी और प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक और फन बेमिसाल है।

0: sarmă, o sarmă, bă meună, una și mare daună, bă curbă.
1: अफगानिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों की वादियों में हजारों साल से आज तक गूंजने वाला ये लोकगीत चार बेता के नाम से जाना जाता है। और जब ये गीत पहाड़ों वादियों सब्जारों के सफर तय करता हुआ पठान फौजियों के साथ उत्तरी भारत के इलाके रोहिलखंड में आ गया तो इसे चार बेत के नाम से पुकारा गया।
0: Come on,

जोश बयान और जज्बात अंगेजी तो पश्तो भाषा के चार बेता जैसी रही, लेकिन भाषा पर पश्तो, पंजाबी, फारसी, उर्दू और हिंदी से मिली जुली जुबानों का रंग खूब चढ़ गया और शायरी में एक नई साझा सभ्यता का आगाज हो गया।

0: बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है। कड़ियों नाल बोलता मांडा साई रांझा हीर, टांडिये हुस्न लद गया अब खिजा बहार है। बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है। सिगरी रैन बैठ के काटी मैंने यूं तमाम, आया ना प्यारा मेरा कर गया इकरार है। बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है। राशा राशा कहता हूँ रशा सनम कहता है, फिर तजई जो बोलूँ हूँ खींचता तलवार है। बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है। जिस्म में बाकी न नम दम रहा न जा के बीच, इस पे भी महबूब अली के कत्ल को तैयार है। बिन देखे दिलबर को दिल रहता बेकरार है।
1: ये सवाल भी बड़ा अहम है कि इसे अफगानिस्तान की पश्तो, सरहदी इलाकों की हिंदुओं और रोहेलखंड की उर्दू भाषा में चारबैता और चारबैत क्यों कहा जाता है, इस बारे में पाकिस्तान के मशहूर स्कॉलर रजा हमदानी लिखते हैं।
2: चार बैता के लफ्जी माने चार अभियात या चार शेर हैं, मगर चार बैता सिर्फ चार शेरों तक महदूद नहीं बल्कि कई छोटे बड़े शेरों और मिसरों पर मुश्तमिल है, और इस तरह ये सिर्फ एक तवील नज्म की सूरत में हमारे सामने आती है। चार बैता को चार बैता क्यों कहा जाता है? मेरी राय में यह कहना बेजा न होगा कि बैत अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने हैं घर। चार बैता गो शायर जब कभी कोई तख्लीक करता है तो अक्सर ये कहते सुना गया है कि ये चार बैता मैंने एक नए घर में कहा है। इससे शायर का मकसद ये होता है कि इसकी तकनीक या फॉर्म बिल्कुल नई है। इस्तेलाही मानों में चार बैता बैत, शेर या चंद अशार के उस मजमुए को कहा जाता है जो नज्म, गज़ल, हरफी, रुबाई, काफी और कता वगैरह की सूरत में हो।
1: आम तौर पर दो मुल्कों के सरहदी इलाके, दो मुल्कों की समाजी जिंदगी और भाषा की मुश्तरका तहजीब के आईनादार होते हैं। दो जुबानें मिलकर एक नई जुबान पैदा करती है। एक मुल्क की कला दूसरे मुल्क की कला से मिलकर एक नई कला को जन्म देती है जिसे इतिहास में इंडो ईरानियन और इंडो मुस्लिम कल्चर कहा जाता है। बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसे यहाँ का मौसम बरसात बहुत हसीन लगा, और अफगानों को बरसात का मौसम और हिंदुस्तानी त्यौहार बहुत पसंद आए, जिनका तस्करा उन्होंने चार बैतों में बड़े दिलकश अंदाज में किया है।

0: उर्दू चार बैत की जुबान और मौजूआत में नए नए रंग किस तरह आए, आइए सुनते हैं रजा हमदानी के ख्यालात। वो लिखते हैं,
1: यूं तो पाकिस्तान का सरहदी सूबा हफ्त जबान यानी सात जुबानों की धरती है, जहां उर्दू, फारसी, पश्तो, हिंद को, छतराली, कोहिस्तानी और गुजरी जबानें बोली समझी और पढ़ी लिखी जाती हैं। लेकिन पश्तो और हिंद को सूबा सरहद की दो बड़ी जबानें हैं, जो ज़िला पेशावर के अलावा दूसरे ज़िलों जैसे हज़ारा, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ां, मर्दान और एजेंसियों में बोली जाती हैं, और इन दोनों का अदब एक दूसरे से मुतासिर भी है। सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ नस्ल के कबीले आबाद हैं, जिनका आपसी रहन सहन और मेल जोल तकरीबन एक जैसा है। इनके रस्मों रिवाज, ज़बान, अदब और रहन सहन एक दूसरे से मुतासिर भी हैं। हिंद को में चार बैता का इजाफा पश्तो चार बैता की देखा देखी हुआ।
0: अफगानिस्तानी या पश्तून तिजारत करने या फौजियों की शक्ल में हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे। सरहदी इलाकों के पहाड़ों और हरी भरी वादियों में पश्तो चार बैता की आवाज तेज हवाओं के जरिए सरहदी इलाकों में गूंजने लगी।
2: हो नारा दे,

इस नए संगीत को सरहदी बाशिंदों ने गौर से सुना और पसंद भी किया। कुछ पश्तून कबीले सरहदी इलाकों में आबाद हो गए और एक नई जुबान वजूद में आई जिसे हिंदको कहा जाता है। हिंदको भाषा में चार बैता का इजाफा पश्तो जुबान से ही हुआ। ये बात भी बड़ी अहमियत की है कि सूबाए सरहद में सिन्फे चार बैता सिर्फ पश्तो और हिंद को जबानो अदब में पाया जाता है और चार बैता गो और चार बैता ख्वां यानी लिखने वाले और गाने वाले वादिये पेशावर कोहाट नौशेरा कलां अकुल्डा खटक मल्लाही टोला अटक छछ और जिला हजारा के वसीओ अरीज सब्जाजारों से ताल्लुक रखते हैं।

0: चार बैता का सर या मतला चार मिसरों का होता है, जैसे
1: शटन शगर्दा मेरे आ,

0: कमर हाशमी की राय है।
1: चार बेता रजस की धुन में तालियों की लय और दफ या दायरे की थाप पर पड़ी जाती थी। हर टोली में लगभग 20 चार बैतिये होते थे।
0: हो सकता है इब्तिदा में पश्तो चार बैता गाने का ये तरीका रहा हो, लेकिन बाद में बकौल रजा हमदानी संगत में साज भी शामिल हो गए हों।
2: सरहद में पश्तो और हिंद को चार बैता पेश करने का ढंग एक जैसा है। हुजरे की निजी महफिलों के अलावा शादी ब्याह की तकरीबात, मेलों ठेलों और उसमें भी चार बैता की महफिलें जमती थीं। मकबूलियत का ये आलम था कि चार बैता की महफिलें मुसलसल कई दिनों तक चलती थीं। आम तौर पर ये महफिलें रात को होती थीं।

गाने वाले फनकार के साथ जो शायर भी होता था, दो या तीन हमनवा भी होते थे। उस्ताद मिसरा उठाता और हमनवा उसकी हमनवाई ही करते।

0: चार बैता की पेशकश में साज का होना लाजमी है। आम तौर पर ढोल, सुरना, छड़ें या मजीरा की संगत होती है। कभी कभी दफ, रबाब या घड़ा भी शरीक कर लिया जाता है। चूंकि ये रज़मिया मौसीकी की धुन में गाया जाता है, इसलिए वही साज इस्तेमाल किए जाते हैं जो जोश और वलवला पैदा करें और जमे हुए खून को ज़िंदगी की हरारत बख्शें। ये साज पंजाबी और अफगानी कौम के मिजाज के मुताबिक भी हैं।
1: जिलानी उस्ताद के चार बैता में महबूबा के हुस्न की तारीफ बस सुनने लायक है।
2: सोनी रातें चलती जावे, मथे खाल दस पाए माल, कतिया तीसन में तू वे पर्री खावे कर री, दोनों लब सानू चपावे, मुंह गुलाब जो आफताब, सोनी रात चलती जावे। सुन ले प्यारी करना सारी, होण न दारी तेरे नी, मैं जी लानी आ सैलानी, मनु खुट सीने न लावे, मुंह गुलाब जो आफताब, सोनी राते चलती जावे।
3: चेहरा गुलाब के फूल और सूरज की मिसाल है, मनमोहनी किस अंदाज से चल रही है। ऊंचे महल में रहने वाली मतवाली सैर की शौकीन, ए महबूबा तू तो बुलबुल है। कान में बाला, सर पर दोशाला, माथे पर बिंदिया, गुरूर से इठलाती मगर देखने में जन्नत की हूर या फिर परी। तेरे चेहरे पर तिल देखने वालों को पामाल करने वाले, तू गरी खा रही है, हमें अपने दोनों लब ज़रा चूमने दे। ऐ महबूबा, जीलानी आहुजारी कर रहा है, वो तो सैलानी है, आ और इसको सीने से लगा ले।
1: अगर आप पश्तो चार बैता से लेकर उर्दू चार बैत की तारीख पर नजर डालें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि सरहदी इलाकों में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों ने मजहबी और कबाइली तासुत से ऊपर उठकर हिंद को चार बैता के फरोग में खुले दिल और खुले जहन से हिस्सा लिया और एक साझा सभ्यता को जन्म देकर ये भी साबित कर दिया कि लोकगीत किसी जाति विशेष या किसी खास जुबान की मीरास नहीं, बल्कि ये हमारी कौमी विरासत और पहचान भी है। सिर्फ हिंद को चार बैता लिखने और गाने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये गंगा जमनी परंपरा पश्तो चार बैता और उर्दू चार बैत में नजर नहीं आती। पंजाबी जबानों अदब चार बैत की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। ये वो कौम है जिसने सदियों से यूनानी, तुर्की, ईरानी, मुगल और अफगानी हमलावरों से बहादुरी से मुकाबला किया और दूसरी कौमों के संपर्क में आकर अपनी पैदाइशी वसीउल नजरी और वसीउल कलवी से एक नई तहजीब को जन्म दिया। पंजाब उर्दू जबानों अदब का खादिम भी है और मखदूम भी। उसने हर मजहब को आदर और सम्मान से देखा है। यही जज्बा हमें हिंद को चार बैता में दिखाई देता है। साईं दीन हजार वी के कदीम नातिया चार बैता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाबी और उर्दू के रिश्ते जुबान और बयान के लिहाज से कितने करीब और हम मिजाज हैं। इसका असर रोहेलखंड की रियासत रामपुर की उर्दू चार बैतों में साफ दिखाई देता है।
2: अल्लाह नूर दा शोला रब दे पैदावार कीता, आखरी दा पैगंबर नबी सुल्तान होया। अल्लाह नूर दा शोला रब ने ई फरमाया, तू दोस्त हकीका पढ़ के शुक्र बजाया जमा, असा दिया रफीका। अल्लाह नूर दा शोला रब ने पैदावार कीता।
3: अल्लाह ने अपने नूर के शोले से ज़ाते मोहम्मद को पैदा किया। वो आखिरी पैगंबर हैं और सारी दुनिया के सुल्तान। अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को पैदा करके फरमाया, तू मेरा दोस्त और रफीक है।
1: सदियों पहले से पठान, हिंदुस्तान में फौजी नौकरियां करने और तिजारत करने आते जाते रहे। वो सुल्तानों और बादशाहों के दरबारों में मनसबदार और सूबेदारों के आला ओहदों पर फाइज भी रहे। बहलोल लोदी और शेरशाह जैसे हुक्मरान भी रहे। लेकिन कोई तारीखी सनद नहीं मिलती कि जिससे ये मालूम हो कि वो पश्तो चारबैता की रिवायात अपने साथ लाए थे। उर्दू चारबैत की इब्तिदा कैसे हुई? रजा हमदानी ने इस बारे में लिखा है,
0: पश्तो और हिंद को जबान के अलावा उर्दू में भी चारबैता की मुकम्मल या इससे मिलती जुलती शक्ल में नज़में दस्तियाब हैं। ये उर्दू चारबैत उन पश्तून अहले ज़ौक की बदौलत हैं जो सदियों पहले सरहद को खैरबाद कहकर हिंदुस्तान चले गए थे और वहीं पर आबाद हो गए थे। पठानों के ये कबीले रुहेलखंड, रामपुर, टोंक और हिंदुस्तान के कई मुस्लिम रियासतों में फौजी बनकर आबाद हो गए, लेकिन तर्के वतन के बाद भी अपने कबीले की रिवायात और खसूसियात को बरकरार रखा। इन रिवायात में एक रिवायात अदब की भी थी। सिन्फ़ सुखन में चारबैती ऐसी सिन्फ़ सुखन थी जिसके ज़रिए इन हिंदुस्तानी पठान शोरा ने अपने जज्बात व ख़यालात का इजहार किया और हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान में पहली बार फोकलोर ने चारबैत की शक्ल में रिवाज पाया।

ऑर्फन बेमिसाल है। इस धारावाहिक की आप सुन रहे थे कड़ी संख्या एक। इसी के साथ धरोहर कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 11:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

0: मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, आज का मन भवन है आपकी शब्दावली पर आधारित। यदि आप भी चाहते हैं अपनी शब्दावली हम तक पहुंचाना, अपने दिल की बात हम तक भेजना, तो इस ईमेल एड्रेस पर आप भेज सकते हैं अपना संदेश। ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। हम इंतज़ार कर रहे हैं इस ईमेल एड्रेस पर आपकी शब्दावली का। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, आपकी शब्दावली लेने से पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
5: पर बैंकिंग में नहीं।
6: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले, अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम में पहली शब्दावली हम तक पहुंची है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी साहब की। लिखते हैं कि हमारे देश में 15 जून से बरसात का आगाज हो जाता है, मगर इस साल तो मौसम ने तो हद ही कर दी। बार बार बारिश का होना, बार बार आंधियों का आना, इस मौसम ने हर तरह से इंसान को घेर लिया है। बदलता मौसम बहुत नुकसानदायक होता है। जब भी मौसम बदलाव की तरफ होता है तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं। दिन में गर्म मौसम प्यास की शिद्दत से बेहाल करता है तो रात में ठंडे मौसम का एहसास कराते हुए कंबल या चादर के बिना रात गुजारना मुश्किल कर देता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर लापरवाही दिखाते हुए दिन में ठंडे पदार्थ

पदार्थों का सेवन कर लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस बदलते मौसम में हमें चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी गंदा पानी जमा ना होने दें और ठंडे पेय पदार्थ कम इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बचे रहेंगे। बिल्कुल सही हिदायत आपने दी है लाल मोहम्मद अंसारी साहब। मौसम ऐसा ही है, कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास हो जाता है, और ऐसे मौसम में हम ठंडे पेय पदार्थों का कम इस्तेमाल करें। शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये जो अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली से अर्चना जौहरी। लिखते हैं कि प्यार एक हसीन सफ़र है और शादी प्यार की मंजिल। शादी का नाम आते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हर कोई, हर इंसान चाहता है कि उसकी भी शादी हो। शादी का लड्डू बहुत ही मीठा होता है। इस लड्डू को व्यक्ति खाकर भी पछताता है और न खाए तो भी पछताता है। वैसे शादी को हमारे समाज में जन्म जन्म का बंधन माना जाता है। दो दिलों और दो परिवारों का आपस में गठजोड़ होता है। शादी दो दिलों के मिलन का भी नाम है। वो एक क्षण सारी जिंदगी तक का एहसास है। इसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। मन में बसी एक मूरत जिसे शादी के बाद साकार होते देखा जाता है। उसी एहसास के सहारे दोनों जिंदगी की गाड़ी प्रेम से खींचे चले जाते हैं। सिर्फ एक लड़की का दुल्हन बन जाना, किसी के नाम का श्रृंगार करके अरमानों की चुनरिया ओढ़कर किसी दूसरे के घर जाने का नाम शादी नहीं है, बल्कि जन्म के सारे रिश्ते भूलकर नए रिश्तों को अपनाने का नाम है। हजारों ख्वाहिशें, अरमान और आशीष लेकर चलती है अपने नए संसार में, जहाँ होती है ससुराल के दायित्वों की चिंता और मायके की यादें। एक देहरी छूटती है और दूसरी को अपनाना पड़ता है। एक आंगन छूटता है तो दूसरे आंगन की धूप को गले लगाना पड़ता है। छूट जाता है सपनों का साथ, अपनों का साथ। वैवाहिक जीवन की पहली सीढ़ी है दुल्हन, और दुल्हन बनना ये सीढ़ी वैसे तो बहुत खास है। जैसे जैसे इस सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत से मोड़ नित नए सामने प्रस्तुत होते हैं। ऐसे में रिश्ता कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी होता है। जब मन ना मिले, विचार ना मिले, तो वरमाला पहनाने से उलझे हुए संबंध नहीं सुलझते। हमें चाहिए होती है साथ की उष्मा, प्यार का राग और नेह की आँच। और जब ये सब मिल जाता है तो होठों से निकलती है कुछ यही बात।

कार्यक्रम में अगली शब्दावली हम तक पहुंची है ईदगाह गेट मुरादाबाद से। शफी अहमद अंसारी और रईस दूला अंसारी लिखते हैं कि जिंदगी सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दुआ है, अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है और कोई गिरा देता है नज़रों से तो कोई इतनी मोहब्बत से सहारा बन जाता है। और यही ज़िंदगी है, हम सबके दूसरों के काम आए, बिल्कुल हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए, यही ज़िंदगी का उसूल भी होना चाहिए। अगली शब्दावली हम तक पहुंची है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही जी की। लिखते हैं कि चाहत तेरी छुपा के लिए जा रहा हूं मैं, खुद को हंसी फरेब दिए जा रहा हूं मैं, तू बेवफा है फिर भी तेरा हौसला तो देख, तुझ पे वफा निसार किए जा रहा हूं मैं। कहते हैं कि चाहत रिश्तों के पावन नहीं होती, बल्कि रिश्ते ही चाहतों के मोहताज होते हैं। तुम किसी से एक रिश्ता कायम करो, चाहत खुद ब खुद पैदा हो जाती है और वो मोहब्बत का खुशनुमा फूल बनकर खुशबू बिखेरने लगती है। मोहब्बत उसे नहीं कहते जो फिल्मों और कहानियों में देखने को मिलती है, मोहब्बत एक मखफली एहसास का नाम है। मोहब्बत इंसान को अजमत बख्शती है, जीने का सलीका सिखाती है, रिश्ते निभाने का अंदाज सिखाती है, कुर्बानी सिखाती है, जो हमें सिखाती है कुछ हासिल करना, और अगर कुछ हासिल नहीं होता, बहुत कुछ हासिल नहीं होता, तो देना उसकी असल पहचान है। क्योंकि मोहब्बत खुदगर्दी का सबक नहीं देती, हमें बेबरज बनाती है। ज़िंदगी में इंसान सब कुछ भूल जाता है पर अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, जब तन्हा होता है तो बहुत कुछ याद आता है उसे। तन्हाई में तो साहब बहुत कुछ याद आता है और ये तन्हाई बहुत पुरानी यादों में हमें लेकर चली जाती है। शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए शमसुल कमर राही साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं राजद्वारा कोठी अफसराला रामपुर से, रूमा खान, बोबी खान, सुभान, मदिहा, गुलफशा, जीनत, अमान, शबनम अब्बासी और शमा परवीन। लिखते हैं कि किसी दामन में पड़े कांटे चुन लो और बदले में फूल डाल दो, सच्ची मोहब्बत वो है जो तुम्हारी रूह में समा जाए और उसकी खुशबू आए। दुनिया में वो इंसान सब कुछ रखता है जिसे सच्ची मोहब्बत हासिल हो। मोहब्बत चीज़ों से नहीं बल्कि दिलों और रूहों से होती है। मोहब्बत में जुनून न हो तो वो रयाकारी बन जाती है। मोहब्बत में सच्चाई लाजमी शर्त है और एतमाद भी ज़रूरी है। मोहब्बत बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सिखाती है और मोहब्बत में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब मोहब्बत होती है तो सजना सवरना भी पड़ता है। कुछ ऐसी ही शब्दावली हम तक पहुंची है कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से, वी के जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी, शीला ठाकुर और शाइना बी। लिखते हैं कि स्त्री कांच के टुकड़ों के मानिंद होती है जो रोशनी पड़ने पर ही चमकती है, वहीं पुरुष एक हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है। पुरुष का श्रृंगार तो स्वयं प्रकृति ने किया है, उसे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं होती। खूबसूरत मोर होता है, मोरनी नहीं, मोर हरे, नीला और रंग बिरंगा सुसज्जित होता है, जबकि मोरनी काली सफ़ेद मोर के पंख होते हैं, इसलिए उन्हें मोर पंख कहते हैं। मोरनी के पंख नहीं होते, दांत हाथी के होते हैं, हथनी के नहीं। हाथी के दांत बेशकीमती होते हैं। नर हाथी मादा हाथी के मुकाबले बहुत सुंदर होता है। कस्तूरी नर हिरण में पाई जाती है, मादा में नहीं। मणि नाग के पास होती है, नागिन के पास नहीं। रत्न महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं। और अंत में नदियों को उसी महासागर में गिरना पड़ता है। संसार के बेशकीमती तत्व इस प्रकृति ने पुरुषों को सौंपे हैं। प्रकृति ने पुरुषों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। 9 महीने स्त्री के गर्भ में रहने के बावजूद भी औलाद का स्वभाव और चेहरा पिता की ही तरह होना, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने करके भेजा है, उसे श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। सजना संवरना तो केवल स्त्रियों के लिए ही है।
जो अपने सजना के लिए श्रृंगार करती है, सजती है और संवरती है।

ये शब्दावली हम तक पहुंची है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान और सिमरन खान की। लिखते हैं कि तंदुरुस्ती के लिए सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना नहाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। कपड़ों को साफ रखने से बहुत सी बीमारियां पैदा नहीं होती। रहने की जगह को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, वरना उनसे बीमारियों के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तंदुरुस्ती इंसान के लिए जिस्म में तवायनी और ताकत को कायम रखती है, दिल और दिमाग को मजबूत बनाती है और इंसान को दिली मुसर्रत अदा करती है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, बिल्कुल सही बात है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है। अगर हम स्वस्थ हैं तो खाने पीने का, बोलने का, काम करने का बहुत मन करता है। शब्दावली हम तक पहुँचाने के लिए हाजी गफ्फार खान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ये अगली शब्दावली हम तक पहुँची है, ये हमारे श्रोता हैं सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से आयूब खान। लिखते हैं कि मन की सच्ची खुशी वही है जो अच्छे विचारों, मधुर शब्दों और नेक कर्मों से मिलती है। सकारात्मक सोच जीवन को नई ऊर्जा देती है और हर दिन को खूबसूरत बना देती है। आकाशवाणी रामपुर का मन भवन कार्यक्रम अपने नाम की तरह ही श्रोताओं के मन को आनंद और सकारात्मकता से भर देता है। मधुर प्रस्तुति, प्रेरणादायक बातें और मनमोहक गीत इस कार्यक्रम को विशेष बनाते हैं। कार्यक्रम से जुड़ी पूरी टीम को इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और आगे आपने लिखा है कि उत्कृष्ट प्रसारण से श्रोताओं के दिलों में खुशियों की महक बिखेरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान वारसी और अयूब खान साहब। अगली शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा साहब

ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है। ये हमारे श्रोता हैं मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल और अनुराज बेनारा। लिखते हैं कि एक औरत की भूमिका माँ, बहन, पत्नी के रूप में समाज और घर दोनों की धुरी होती है। वो अलग अलग रिश्तों में अलग अलग रूप लेती है, पर हर रूप में जोड़ने वाली ताकत बनती है। घर की पहली पाठशाला माँ होती है। वो सिर्फ जन्म नहीं देती, संस्कार, हिम्मत और संवेदना भी देती है। बच्चा गिरे तो उठाने वाली, डरे तो गले लगाने वाली और बड़े होने पर भी पीठ पीछे खड़े रहने वाली वही होती है। जैसे धरती फसल उगाती है बिना हिसाब रखे, वैसे ही माँ बिना शर्त प्यार देती है। बहन की बात करें तो बहन घर में दोस्त और आईना दोनों होती हैं। वो बचपन की शरारतों के साथ ही जवानी के राज की रखवाली और बड़े होने पर भी सबसे ईमानदार सलाहकार बनती है। भाई बहन का रिश्ता खून से ज़्यादा भरोसे से चलता है। एक बहन का होना घर में ऐसा है जैसे घर में हमेशा एक कोना हो जहाँ बिना झिझक हंस भी सको और रो भी सको। अगर पत्नी के रूप की बात करें तो पत्नी घर की साथी, सहयात्री और सहारा होती है। वो सिर्फ घर नहीं संभालती, दो अलग अलग परिवारों, दो सोचों और दो सपनों को एक धागे में बांधती है। मुश्किल वक्त में पति की ढाल भी बन जाती है और खुशी में उसका साथ दोगुना कर देती है। जैसे चाबी बिना ताला अधूरा है, वैसे ही गृहस्थी पत्नी के बिना अधूरी लगती है। अगर समाज की बात करें तो घर से बाहर निकलकर वही औरत शिक्षिका, डॉक्टर, किसान, नेता, कलाकार बनती है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ संतुलन और संवेदना लेकर जाती है। समाज तभी स्वस्थ होता है जब औरत को सिर्फ रिश्तों की परिभाषा में न बांधकर एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु बड़जात्या साहब हम तक अपनी शब्दावली पहुँचाने के लिए। ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है तहसील स्वार, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। लिखते हैं कि आप हर पल साथ देने का वादा था, हमें नहीं पता उनका क्या इरादा था। मैं सांसों से रूह तक समाया था, तब भी उन्होंने कई बार आजमाया था। अकेले नहीं रहने देंगे कहा करती थी, फिर क्यों अकेले छोड़कर जाना था। हर पल साथ देने का वादा था, पता नहीं उनको किस हाल में पाया था। किस्मत में थी या कोई और फसाना था, हर पल साथ देने का वादा था। मैं तो ख्वाबों में खोया था, तू मेरे सपनों में खोई थी क्या। ये जो मोहब्बत मोहब्बत कहती फिरती हो, तुम्हें सच में मोहब्बत हुई थी क्या। वो रुला कर हंस नहीं पाया देर तक, जब मैं रो कर मुस्कराया देर तक। भूलना चाहा जब भी उसको और वो याद आया देर तक। बहुत बहुत धन्यवाद विजय राठौर साहब अपनी शब्दावली हम तक पहुँचाने के लिए। ये अगली शब्दावली हम तक पहुंची है। ये हमारे श्रोता हैं सतेंद्र चंसोलिया, ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन से। लिखते हैं कि दान कोई भी किसी भी प्रकार का हो, सभी अच्छे हैं। इन्हीं में से एक दान है रक्तदान। हाँ, वाकई रक्तदान करके हम किसी न किसी की जिंदगी को जरूर बचा सकते हैं। अगर कहीं हमसे ऐसा हो जाता है तो समझो जीवन सफल हो गया। अपने अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, पर जो दूसरों के काम भी आए वही जीवन है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए, तभी मानव जीवन निभाने का सही अर्थ होता है। और आज विश्व रक्तदान दिवस भी है, इसलिए हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा मौका आए तो रक्तदान जरूर करें। अगली शब्दावली हम तक पहुंची है। ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आपके साथ में हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। लिखते हैं कि कभी टूट कर बिखरना भी पड़ता है, खुद को फिर से संवरना भी पड़ता है। सिर्फ मंजिल ही नहीं मिलती, यूं ही रास्तों से गुजरना भी पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो गिरते नहीं। लोग समझते हैं सब ठीक है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं। तेरी यादों का दिया जलता रहा, दिन रात भर तुझसे मिलता रहा। तू दूर होकर भी दूर ना हुआ, ख्यालों में हर पल चलता रहा। मोहब्बत नाम है दिल से निभाने का, किसी के लिए हर हद से गुजर जाने का। ये दौलत से नहीं खरीदी जाती, हुनर है बस किसी को अपना बनाने का। जिंदगी की राहों में ठहराव भी जरूरी है, हर मोड़ पर नया

बदलाव भी जरूरी है। सिर्फ जीत ही मंजिल नहीं, हार का एहसास भी हो, कुछ घाव मिले तो उनसे सीखने का विश्वास भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी शब्दावली हम तक पहुंचाने के लिए तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब। और ये अंतिम शब्दावली हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत, इंदिरा कोटी, तल्लीताल, नैनीताल से। लिखते हैं कि धवल चांदनी जिस तरह रात्रि में फैल जाती है, जग के कण कण में, और हर सुबह की प्रथम किरण जिस तरह आह्लादित कर देती है, संसार के कोने कोने को एक दिन उसी तरह बिखरा होगा संसार में प्रेम, विश्वास और सौहार्द का अद्भुत राग जिसमें बंधा होगा। संसार का हर प्राणी जिससे महकेंगे हर वन उपवन, जो गूंजेगा जल में, थल में और नभ में, तब सूर्य की रोशनी से कहीं अधिक हम सबके हृदयों में प्रज्वलित सहस्त्र प्रकाश पुंज मन में कहीं भीतर तक छाए कुहासे को मिटा देंगे और चारों ओर होगा प्रकाश ही प्रकाश। एक धनी अंधियारी काली रात के बाद और हम सबको कैद करना होगा उसे बंद मुट्ठियों और गहराई तक कहीं अपने भीतर, जो हमेशा से नाश करता रहा है काले घने अंधियारे का। बहुत बहुत शब्दावली भेजने के लिए हम सब आपकी शब्दावली का आगे भी इंतज़ार करेंगे। आज इतना ही, मनोज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपनी शब्दावलियों पर आधारित आज का मन भावन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कुछ सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में। ये पहली सूचना हमें मिली है श्रीमती परवीन जहां पत्नी हासम निवासी सीमरी गेट चंदोसी थाना चंदोसी जिला संभल। ये सूचना देते हैं कि सना पुत्री हासम निवासी सीकरी गेट चंदोसी ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 17 वर्ष 4 माह, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य है, बाल घने काले। घर से लापता होने के समय इन्होंने सूट सलवार पहने थे। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा मिले तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। श्रीमती परवीन जहां पत्नी हासम निवासी सीकरी गेट चंदोसी थाना चंदोसी जिला संभल। मोबाइल नंबर है 7451014651। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7451014651।

ये अगली सूचना है, सूचना देने वाले हैं इंद्रपाल, पुत्र रामचंद्र, निवासी ग्राम चितोरा, थाना बैजोई, जिला संभल। ये सूचना देते हैं कि कुमारी माया, पुत्री इंद्रपाल, निवासी ग्राम चितोरा, थाना बैजोई, जिला संभल, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका कद लगभग 5 फीट, शरीर की बनावट औसत, चेहरा गोल, बाल घने काले। घर से लापता होने के समय इन्होंने भी सूट सलवार पहने थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। इंद्रपाल, पुत्र रामचंद्र, निवासी ग्राम चितोरा, थाना बैजोई, जिला संभल। मोबाइल नंबर है 7738026160। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7738026160। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स के साथ साथ आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। और श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले सभी श्रोताओं के साथ आज कार्यक्रम में मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं यदि आप भी चाहते हैं अपने फरमाइश हम तक पहुंचाना तो हमें लिख भेजिए अपने नाम इस ईमेल एड्रेस पर गीत आपके नाम aarrampur@gmail.com। रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सिर्फ अपना नाम लिख करके भेजें, अपने पते के साथ लिख करके भेजें, किसी और का नाम ना भेजें और एक ही बार ईमेल भेजें। ये सबसे पहले कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और इन्हीं के साथ हैं रजिया

संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहाना शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। अगला संदेश हम तक पहुंचा है नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। ये हमारे श्रोता हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और इनके परिवार वाले। कार्यक्रम के लिए पहली फरमाइश हम तक पहुंची है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। आपके साथ में है कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं, आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीब और शाहीन। ये ईमेल हमें मिला है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और इनके परिवार वाले। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आवान अब्बासी और इनके परिवार वाले। जिला समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू और इन्हीं के साथ हैं लल्लन मिश्रा। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और इन्हीं के साथ हैं सुरेश चौरसिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हम तक पहुंचा है गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या जी। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका, शिवाय राठौर। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, इन्हीं के साथ हैं दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और इनके परिवार के सभी लोग। आप सब ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर में ये गीत। संगीत उत्तम सिंह का है और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: श्रोता, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गीत आपके नाम में। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफा साफ, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फौजिया रोशनी, शाइना काजल, असद भाई, फरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, कोल सिटी बरकाकाना से, अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और अफजल मलिक। ये संदेश हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी लोग, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ईदगाह गेट मुरादाबाद से, सफ़ी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी और इनके परिवार वाले। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोहिनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगला संदेश हम तक पहुंचा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष रामदेवरा से, दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल। ये फरमाइश हम तक पहुंची है, ये हमारे श्रोता हैं, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता और दीपक गुप्ता।

श्रोता हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता और दीपक गुप्ता। ये ईमेल हमें मिला है बाड़ी खाम गांव से अनंता वाडे, रामेश्वर वाडे, शुभम, साक्षी, खुशी और इनके परिवार के सभी लोग।

ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है दतरंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा इन्हीं के साथ हैं। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इनके परिवार वाले।

पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इनके परिवार वाले, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, पीहू स्वर्णकार और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है गुन्नौर से, आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर।

गवाणकर, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, और इन्हीं के साथ हैं टुक टुक गवाणकर। ये हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी और अच्छेलाल। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से, शाहरु नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद दृषि, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ये ईमेल हमें मिला है गोवर्धन विहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना और इनके परिवार वाले। ये फरमाइश हम तक पहुंची है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभाकर, निर्मला नभाकर, विशाल नभाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरेकर। ये ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं, आपका ईमेल संदेश हम तक पहुंच चुका है, पहले हम शामिल कर चुके हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना संदेश ना भेजें। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। ये हमारे श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं नेहरू चौक पैटर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। आप सबने सुनना चाहा है विनोद राठौर व साथियों के स्वर में ये गीत, संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत को लिखा है समीर ने, फिल्म का नाम है आंटी नंबर 1।

अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, वीमा वैवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाविया सिद्दीकी, अलीशा, शकील, फ़हीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। ये संदेश हम तक पहुंचा है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता और इनके परिवार वाले। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार, वेदिका सुतार और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर से तस्नीम कौशर, इशिता साहनी, झुमरी तिलैया से डॉक्टर सोनम, बरकाकाना से नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तिकार इब्राहिम। ये संदेश हम तक पहुंचा है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हमें मिला है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग। अमरावती से सैयद भाई, सुफियान, अनस, आयजा और अल्फिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, वजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरुमंत कौर, मनु और इनके परिवार के सभी लोग। वर्णिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार वाले हमें अपनी फरमाइश लिख करके भेज रहे हैं। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिशा, शविश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यस मंसूरी। बटिंडा रोड डव्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर और इनके परिवार के सभी लोग। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। ये हमारे श्रोता हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या और इनके परिवार के सभी लोग। इंदिरा कोटी, तल्लीताल, नैनीताल से हमें संदेश भेज रहे हैं। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। ये ईमेल हम तक पहुंचा है गंडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदिहा खान, सुभान खान और फिरोज खान। आप सबने सुनना चाहा है सुरेश वाडकर और अलका याग्निक के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम है घर का सुख।

ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, सप्तरंग श्रोता परिवार श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका दले। इन्हीं के साथ हैं पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है पटियाली रोड गंडुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल अरहान और इनके परिवार वाले। मुंगेसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश, निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, शहबाजपुर कला कस्बा पागवड़ा से जिला मुरादाबाद, मजहर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, इनका बेटा मुजक्किर बाबू, रईसा मजहर आसिम और इनकी बेटी सुमैया महक। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और इनके परिवार वाले। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल संदेश हम तक पहुँचा है, शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। ये ईमेल हम तक पहुंचा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, रमेश साहू और इन्हीं के साथ हैं डब्लू अंसारी। ये ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है वेणी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक और प्राची तनु करमकर। ये ईमेल हमें मिला है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, वीर शहर महाराष्ट्र से हमें संदेश भेज रहे हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। अगला ईमेल हमें मिला है बुल्डाणा वंडिंगशी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली, श्लोक कुमार, इन्हीं के साथ हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, जी एस रामगढ़िया। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहिब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई। ये ईमेल हम तक पहुंचा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन मयंक शर्मा। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, मेरठ कैंट से कविता गौड़। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नांदेड़ महाराष्ट्र से। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं, सुधाकर राज जाधव, प्रशांत जाधव, संचित जाधव, प्रथमेश और इन्हीं के साथ हैं सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख कोलगांव जाफराबाद से।
ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थनगर जिला नांदेड़ से, आरती छोटी बबली रूपा।

अली, बंदना धुले, सरूबाई धुले, मराठावाड़ा से। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है सनावर से, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना और इनके परिवार वाले। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म आंधी में लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने और गीत को लिखा है गुलजार ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता हैं, ताजपुर मोरवा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया गुप्ता, नवीन सिंह, ज्योति सिंह और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंबल। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता, आपने अपना पता नहीं लिखा है अपने ईमेल में, ये संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। अगला संदेश हम तक पहुंचा है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के सभी लोग। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना, निवान शर्मा, ये संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू और इनके परिवार के सभी लोग। राजवाड़ा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं, आपने अपना पता नहीं लिखा है। ये अगला संदेश हम तक पहुंचा है ग्राम लोहड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक जी। ये संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं भूचो कहचिया पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। आप सबने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और जसपिंदर नरोला के स्वर में। फिल्म का नाम है होगी प्यार की जीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे अपने ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी।

0: प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
2: मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
9: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
8: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। संध्या 6:30 से आज हम आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसार।

प्रसारण। ये प्रसारण आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के माध्यम से, और इस दौरान मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर ये कमेंट्री आप सुन पाएंगे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आज आप सुन पाएंगे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में संध्या 5 बजे। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत का प्रसारण सुनेंगे संध्या 5:45 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल, और एक भेंटवार्ता होगी दलहनी फसलों में वैज्ञानिक सुझाव विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर अविनाश चौहान KVK ठाकुर द्वारा मुरादाबाद। मनोरंजन के लिए लोकगीत होगा। कृषि संकेत में जानकारी दी जाएगी, मौसम के पूर्वानुमान के बारे में बताया जाएगा, और कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे अखिलेश और प्रवीण कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी विक्रांत चौधरी की। आज दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे विश्व रक्तदान दिवस पर विशेष परिचर्चा रक्तदान महादान। प्रस्तुति है राजीव कुमार सक्सेना की। बच्चों के लिए कार्यक्रम कलियां हम लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर, जिसमें चर्चा की जाएगी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस पर, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर, विश्व शरणार्थी दिवस पर, फादर्स डे और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। नन्हे बोल में वान्या जिंदल से बातचीत होगी, जानकारी साझा करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 पर। कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगी प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से रिले होंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में

0: रिपोर्ट तलब की है। एसआईटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद एनटीए इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की जिंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूम फराहम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
0: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाजिर है कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर जरूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक अफसरान को जरूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। कार्यक्रम आज आप तक पहुंचा रही हैं प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अवधेश कुमार गौतम।
3: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले प्यारे दोस्तों, एक बार फिर रविवार की दोपहर हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं आपकी मस्ती व मनोरंजन को और भी ज्यादा रंगीन बनाने के लिए, लेकर ढेर सारी नॉलेज बाइट्स के साथ, जिसमें संगीत की सरगम होगी बाल गीतों के साथ। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी प्रीति दीदी लेकर आई हूँ आपके दिलों में बसा ये कार्यक्रम कलियां। कल्याण कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारी साथी प्रियंका
1: जी। नमस्कार प्रीति जी, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और दोस्तों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और खूब ढेर सारा प्यार। बच्चों, जून का महीना और आज है जून के महीने का दूसरा रविवार, यानी कि 14 जून। क्या है खास जरा बच्चों, आप गैस तो कीजिए।
0: जी हाँ बच्चों, बच्चों को थोड़ा हिंट देना चाहूंगी। बच्चों, 12 जून हम सभी ने मनाया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर।
1: जी हाँ प्रीति, और बच्चों हम आपको बता दें कि आपकी जो उम्र है ना, खेलने पढ़ने और सपने देखने की है, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल जाने की जगह कारखानों में, होटल में, ईंट भट्टों पर पटाखे बनाने का काम करते हैं।
0: विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि सुनने में काफी लंबा और थोड़ा सा कठिन लगता है, चलिए प्रियंका हम बच्चों को समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है।
1: हाँ, और बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई बच्चा 14 साल से छोटी उम्र का होता है और उससे काम कराया जाता है तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। ये कानून के खिलाफ और बिल्कुल गलत है। बच्चों, इस दिन मनाने का उद्देश्य है कि बच्चों के हाथों में काम नहीं, उन्हें किताबें दी जाएं। लोगों को बताना है कि बाल श्रम बच्चों का बचपन छीन लेता है। सरकार और हम सब मिलकर वादा करें कि कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा और सब स्कूल जाएंगे, जो कि पढ़ लिख कर हमारे देश का भविष्य बनेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि अगर बच्चों से ज्यादा काम या उन बाल श्रम कराया जाता है तो उनको क्या क्या नुकसान हो जाते हैं?
0: क्योंकि ये बात जितनी आसान लगती है, मगर उसके जो परिणाम हैं उतने ही गंभीर भी हो सकते हैं। जब बच्चे बाल श्रम करते हैं तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। काम करने वाला बच्चा ABC नहीं सीख पाता, बड़ा होकर अच्छी नौकरी भी नहीं कर पाता। इसी के साथ ही साथ बच्चों, आपका शरीर भी कमजोर होने लगता है। भारी सामान उठाने के साथ हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। पटाखे, कांच की फैक्ट्री में आँख, फेफड़े भी खराब हो सकते हैं यदि छोटे बच्चे वहाँ काम करते हैं।
1: हाँ प्रीति, और इसी के साथ बच्चों आपको पता है, ऐसे बच्चों का हंसना खेलना तक बंद हो जाता है, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार मिलता है और काम करने से बच्चे हंसना तक भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए एक खतरा भी मंडराता है, क्योंकि कई बार उनके जो मालिक होते हैं उन्हें मारते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, गंदी जगह पर सुलाते हैं और उनको भरपेट खाना नहीं खिलाते, जो कि उनकी परवरिश पे असर डालता है और उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का खतरा भी रहता है।
0: और प्रियंका, मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूंगी कि जब बच्चे बाल श्रम की वजह से जब पढ़ नहीं पाते हैं तो शायद बच्चों को अपने जो उनके अधिकार हैं, उनके मौलिक अधिकार हैं, उनकी भी जानकारी नहीं हो पाती। उनको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं और हमारे कौन कौन से हक मारे जा रहे हैं।
1: जी हाँ, उसी के साथ ही प्रीति, हम बच्चों को ये भी बता देते हैं कि बच्चे जो हैं इस दिवस पर अपना क्या योगदान दे सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान बच्चे ये दे सकते हैं कि अगर उनका कोई दोस्त स्कूल अगर नहीं आता है तो वो अपने टीचर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं कहीं बाल श्रम का सा तो नहीं बन गया है।
0: और इसी के साथ मैं बड़ी हमेशा ना बोलने की कोशिश करें। अगर कोई दुकानदार 14 साल से छोटे बच्चे से काम करवा रहा है तो मम्मी पापा को बताइए और कोशिश करिए उस घटना का संज्ञान पुलिस को दें।
1: जी हाँ, और इसके लिए कई सारे नंबर भी हैं जिसपे बच्चे फोन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हो वहाँ से टॉफी या खिलौने बच्चों आप मत खरीदो।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वही हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य है।
1: जी हाँ, तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि बच्चों सिर्फ एक ही नारा याद रखो, बचपन बचाओ, देश बचाओ, बाल श्रम को दूर भगाओ।
0: जी हाँ बच्चों, इसी के साथ बढ़ चलते हैं हम अपनी अगली चर्चा में, जो कि हम बात करेंगे 15 जून की, यानी कि कल हम सभी मनाएंगे अनमोल बुजुर्गों के लिए खास दिन। जी हाँ बच्चों, हमने बचपन से सुना है कि हम सभी को अपनी ग्रांड पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते।
1: बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 जून को हम सभी मनाएंगे विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ये कितना बड़ा नाम है ना प्रीति।
0: बिल्कुल प्रियंका जी, नाम जितना बड़ा है उसका संदेश भी उतना ही गंभीर है। हम अक्सर बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको प्यार नहीं देते हैं जितने के वो हकदार हैं, क्योंकि शायद हमको लगता है कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और बुजुर्ग व्यक्ति से क्या बात करना।
1: बच्चों, वो बुजुर्ग जो हमें कमजोर व लाचार लगने लगते हैं, वो भी कभी आपके और हमारे जैसे ही थे। ये बात शायद हम भूल जाते हैं और उनको उतना समय नहीं दे पाते।
0: आसान

0: अच्छा, मैं समझे तो ये दिन दादा दादी, नाना नानी और उनके जैसे जाने कितने बुजुर्गों के ख्याल रखने का दिन है। वैसे भी वो हमें कहानी सुनाते हैं, हमें प्यार करते हैं। और हाँ, एक बात और, हर बच्चे को उनकी नाना नानी या दादा दादी के बक्से से कोई ना कोई तो खजाना जरूर मिलता है। आपको मिला है प्रियंका?
1: जी हाँ, और वो खजाना जो कि बीते समय की कहानी और उनकी यादों के साथ बक्से में खास बनकर छिपा होता है। और वो खास खजाना जब हमारी नानी या दादी हमको देती है, तो शायद वो हमसे चाहती है कि हम भी उनके इस सजाए हुए प्यार को उसी शिद्दत के साथ संभाल कर रखें, ताकि आगे की पीढ़ी भी ये देख सके।
0: तो कल जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें तो पूछना, दादी आज आपका दिन कैसा रहा या आपकी सेहत कैसी है?
1: बस बच्चों, एक प्यारी सी झप्पी देना और फिर देखना उनकी आंखों में एक ममता दिखेगी। और हाँ, अगर वो आपसे कुछ कहती हैं तो

0: कल जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलें तो पूछना, दादी आज आपका दिन कैसा रहा या आपकी सेहत कैसी है।
1: बस बच्चों, एक प्यारी सी झप्पी देना और फिर देखना उनकी आंखों में एक ममता दिखेगी। और हाँ, अगर वो आपसे कुछ कहती हैं तो उन

0: इस कहानी से मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ संकल्प लिया भी होगा और सीखा भी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ना, घर में जब आप ब्रश करें तो टैप को बंद कर दें और कोशिश करें एक ही बाल्टी पानी से नहाएं।
1: जी हाँ, इसी तरह से वो जो है अपनी धरती को बचाएंगे और हमारे जो कल है उसको सेव कर पाएंगे। प्रीति, इसके बाद बढ़ चलते हैं हमारी दूसरी चर्चा की ओर। तो पिटारे में से निकालती हूँ मैं हमारी नेक्स्ट चर्चा। तो देखिए, ये चर्चा निकली है विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि हम प्रतिवर्ष 20 जून को दुनिया भर में मनाते हैं, और जो कि हमारे देश में दूसरे देशों से आए व्यक्ति होते हैं, उनकी दुर्दशा, उनके साहस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन पूरी दुनिया कहती है, शरणार्थियों के साथ हमेशा खड़े रहो।
0: बच्चों, इस दिन हमें भी यह वादा करना होगा कि शरणार्थियों की हिम्मत को सलाम करना है, जिन लोगों ने घर छोड़कर भी हार ना मानी।
1: जी हाँ बच्चों, और दोस्ती का संदेश हमें अपने शरणार्थियों को जरूर देना चाहिए, उनको ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
0: बच्चों, अब हम आज कल्याण कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अपने सुपर हीरो।
1: सुपर हीरो, ये सुपर हीरो कौन है प्रीति?
0: अरे, ये सुपर हीरो है हमारे पापा, जिनके लिए हम स्पेशल डे यानी कि 21 जून को फादर्स डे मनाने वाले हैं।
1: जी हाँ बच्चों, फादर्स डे यानी कि पापा का दिन। इस दिन हम अपने पापा को थैंक यू बोलते हैं कि वो हमें इतना प्यार करते हैं और हमारी इतनी देखभाल करते हैं।
0: जी हाँ बच्चों, दुनिया में ज्यादातर देशों में 21 जून को फादर्स डे मनाते हैं। क्या बच्चों, आपको पता है कि फादर्स डे मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी?
1: बच्चों आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, अमेरिका में 1910 में सोनोरा स्मार्ट डॉट की लड़की ने अपने पापा के लिए ये दिन शुरू किया। उनके पापा ने अकेले 6 बच्चों को पाला था, तभी से ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
0: पापा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, जरा सोचे तो जरा। पापा ऑफिस जाते हैं ताकि फीस, खिलौने, आइसक्रीम सब आ सके। थके होने पर भी कंधों पर बिठाकर घुमाते हैं।
1: मैस ना आए तो प्यार से समझाते हैं, और रात को बुरा सपना आए तो कहते हैं बेटा मैं हूं ना, और जब शरारत करते हैं तो भले ही हमें डांटते हैं पर 5 मिनट बाद ही खुद ही मना भी लेते हैं।
0: और जब मम्मी से पिटाई होती है तो पापा ही तो बचाते हैं।
1: बीवी बिल्कुल सही कहा प्रीति, इसलिए कहते हैं कि बच्चों, अगर मम्मी घर का दिल है तो पापा घर की छत है, दोनों के बिना हमारा घर अधूरा है।
0: कितनी प्यारी बात कही जो दिल को छू ले गई, कि पापा भी घर की छत है और किसी भी घर का निर्माण बिना छत के हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते।
1: जी हाँ
0: बच्चों, इस फादर्स डे पे हम पापा के लिए क्या कर सकते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि आप क्या कर सकते हैं?
1: बच्चों, पापा को आपसे महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, पापा को सबसे ज्यादा खुशी होती है आपके प्यार से।
0: तो बच्चों, आइए हम आपको बिना पैसे वाले 5 गिफ्ट बताते हैं, जिसमें से सबसे खास गिफ्ट है नंबर 1, जादू की झप्पी। बच्चों, सुबह उठते ही पापा को जोर से हग करो और बोलो लव यू पापा। और दूसरा गिफ्ट है थैंक यू कार्ड। एक पेपर पर पापा की फोटो लगाओ और लिखो कि आप दुनिया के बेस्ट पापा हो।
1: जी हाँ, और इसी के साथ ही प्रीति, बच्चों आप एक दिन की छुट्टी भी दे सकते हो पापा को। पापा को बोलो आज से मैं आपके लिए पानी लाऊंगा और आपका हमेशा कहना मानूंगा और आपकी सेवा करूंगा। इसी के साथ ही साथ बच्चों, आप चाय या जूस बनाकर भी अपने पापा को दे सकते हैं। इसके लिए आप मम्मी की मदद से पापा के लिए चाय, जूस या फिर जो भी उनको खाने में अच्छा लगता है ना, वो मम्मी की हेल्प से बनाइए और अपने पापा को दीजिए। बच्चों, आप पापा से प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि पापा मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा और पढ़ाई में खूब मन लगाकर आपका नाम रोशन करूंगा।
0: क्या बात है, ये इतने छोटे छोटे और अनमोल गिफ्ट्स के जो आइडियाज़ मिले हैं, मुझे लगता है बच्चों को ज़रूर आजमाना चाहिए। और पत्रों के माध्यम से बच्चे हमको बताएं भी कि उन गिफ्ट से आपके पापा को कैसा लगा।
1: जी हाँ, और प्रीति, ये गिफ्ट जो है ना, इनमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला है, इनका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला है, और इनके पापा इनसे खुश हो जाएंगे, और मुझे लगता है पापा भी इनको जोर की झप्पी जरूर देंगे।
0: और एक बात तो और है ना, कि ये पैसा नहीं लगता है, मगर इसमें जो हमारा प्यार है वो देख के पापा को जो खुशी मिलेगी वो शायद पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट से भी नहीं मिलेगी।
1: जी
0: और इसी के साथ चर्चाओं में आगे बढ़ चलते हैं, और एक बहुत ही खास बात है जो मुझे लगता है कि हमें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए।
1: अच्छा, क्या खास बात है प्रीति?
0: भाई, खास बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 भारत का बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत सरकार इस पुरस्कार के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है, जो वीरता, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल, कला और संस्कृति तथा पर्यावरण जैसे

0: सी श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका मतलब अगर हम आसान शब्दों में बच्चों को समझाना चाहें तो ये है बच्चों कि अगर आपने कभी कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें वीरता हो, जिसमें नवाचार हो और जिससे सामाजिक सेवा का सीधा सीधा संबंध होता हो, या फिर आपने किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन किया हो, या किसी क्रिएटिव काम में, किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ अपनी बेहतर प्रस्तुति दी है, तो आपको ज़रूर इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए। आपको बता दें बच्चों कि इसकी पात्रता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक जिनकी आयु 5 से 18 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आपको बता दें कि आवेदन करना कैसे है। स्वयं का नामांकन और तीसरे पक्ष जैसे स्कूल, माता पिता या संस्थान द्वारा दी गई सिफारिशें दोनों स्वीकार की जाएंगी। नामांकन जमा करने का पोर्टल है, नामांकन केवल आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। तो बच्चों ये तो थी जानकारी, और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इसमें अपनी भागीदारी लें, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कुछ अच्छा करने का, चाहे वो कोई भी समाज का या फिर कोई भी किसी का भी कोई हिस्सा हो।
1: जी हाँ, तो बच्चों ये तो रही हमारी आज की चर्चाएं, और साथ ही साथ हमने एक आपको जरूरी सूचना भी दी जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब बढ़ चलते हैं प्रीति कल्याण कार्यक्रम में आगे, और अब बारी आ गई है बच्चों के मनोरंजन की, क्योंकि बच्चे भी सोच रहे होंगे कि दीदी ने काफी सारी चर्चाएं तो हमें दी हैं, अब हमें बाल गीत कब सुनाएंगी।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि रविवार में जब बाल गीत सुनते हैं तो मुझे लगता है ना कि बाल गीत मतलब सुन के ही लगता है ना कि मन एकदम जोश से भर जाएगा, क्योंकि जब संगीत में ना बचपन दिखता है, जब गानों में बचपन दिखता है ना, तो मुझे लगता है बड़े छोटे कोई भी हो उसे सुन के उसका मूड तो अच्छे से टर्न ऑन हो ही जाना है।
1: जी हाँ, तो प्रीति अब देर नहीं करते हैं, बिना देर किए सुनवाते हैं बच्चों को ये प्यारा प्यारा सा बाल गीत।

0: तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा बाल गीत, जिसके साथ में अब हम आगे बढ़ चलते हैं कार्यक्रम में।
1: जी हाँ प्रीति, और अब देखिए बारी आ गई है हमारे विशेष क्रम की, जिसके अंतर्गत बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं, और बच्चे भी इंतजार करते हैं कि कब उनके दोस्त आएंगे, उनको प्यारी प्यारी सी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, और हमारे साथ जो उनकी प्यारी प्यारी सी बातचीत होती है ना, वो भी दिल मोह लेती है। तो मुझे लगता है बिना देर करे अब बच्चों को सुनवाने की बारी आ गई है नन्हे बोल कार्यक्रम।
2: हेलो,
3: हेलो बेटा, क्या नाम है आपका?
2: वानिया
3: वानिया जिंदल। वानिया जिंदल भाई, आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है। अच्छा
2: जिंदल,
3: वानिया, ये बताइए कि क्या कर रही हैं आप?
2: थैंक यू। मैं कुछ नहीं, बस हस्ती दुनिया पढ़ रही थी। हस्ती दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, जैसे
3: अच्छा, जैसे
2: हाँ उसमें एक मेंढक बनाने को दिया था और उसको पेपर को काटना था, पेपर आपको ग्रीन कलर का मिला था और उससे मेंढक बनाना था, और मैंने सुनाया भी, और उन जो मुझे पहनते हैं वो भी था उसमें काट के लाया मैंने।
3: अच्छा तो मतलब आप अपना स्कूल का काम कंप्लीट कर रही है ना?
2: हाँ, और हस्ती दुनिया का भी जो है ना, हस्ती दुनिया भी कर रही हूँ मैं।
3: अच्छा, ये हस्ती दुनिया है क्या? आप ये तो बताइए पहले। अच्छा
2: ये हस्ती दुनिया सत्संग की किताब पे, हर सेक्शन से है ना, तो पापा ये मिलती है हस्ती दुनिया अलग अलग तरीके की, वो बच्चों के पढ़ाने के भी होता है, उस स्कूल के बारे में समझाने के भी होता है, और कुछ अच्छे अच्छे कामों के भी होता है। ये होता है हस्ती दुनिया।
3: तो ये हस्ती दुनिया का सत्संग करता कौन है?
2: सेक्शन माता जी थी पहले, पहले की माता जी की मम्मी रहती थी, अब तो मर गई है, उनके पिता भी, इसके हम माता जी और वो बैठते हैं, इसकी ही होता है सबसे, और वो यहाँ पर नहीं बैठते रामपुर में, वो दूर बैठते हैं उसे, हमारी सत्संग तो कोई और करता है संडे को। हाँ
3: अच्छा तो अच्छा अच्छा वानिया, ये बताइए कि अब आप, आजकल का मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है ना?
2: हाँ ठंडा ठंडा, पहले जी तो गर्मी थी, अब तो ठंडी ठंडी हवा चल रही
3: हाँ तो ये बताइए कि आपने अपनी छुट्टियों को किस तरीके से प्लान करने की कोशिश करी है?
2: है। अभी तो पहले मैं नानी घर जाऊंगी, फिर हम घूमने जाएंगे अच्छी अच्छी जगह में।
3: अच्छा तो वानिया, आप जब घूमने जाती हो तो अपना सामान खुद पैक करती हो या फिर आपकी मम्मी पैक करती है?
2: मैं उनको निकाल के देती हूँ, मम्मा को, और अपने बैग्स निकाल के देती हूँ, और फिर मम्मी को सब चीजें देती हूँ जरूरत की, और मम्मी पैक करती है, मैं सही से पैक नहीं कर पाती हूँ, पर मैं दे देती हूँ सामान।
3: इसका मतलब आप अपनी मम्मी की हेल्प करती है ना?
2: हाँ
3: अच्छा तो ये तो बताइए कि अब आप कहाँ घूमने जाएंगी जब आपकी छुट्टियां हो जाएंगी तो? अच्छा
2: ऐसी जाओ, ये अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरी तो छुट्टियां पड़ गई हैं।
3: छुट्टियां पड़ गई तो सब छुट्टियां तो ऐसे सोचने में ही खत्म हो जाएंगी, और पता चला वानिया सोचती रह गई और छुट्टियां यूं ही खत्म हो गई, फिर कैसे घूमोगे आप?
2: हमने तो कल जाने का प्लान करा है, नानी के घर से जाएंगे हम, पर मुझे अभी नहीं पता वो कौन सी बात है, पर मम्मी को पता है वो बात।
3: अच्छा तो फिर आप रात में मम्मी से पूछ लोगे है ना?
2: हाँ मैं पूछूंगी सब किधर जाएंगे।
3: अच्छा वाने, ये बताइए कि आपकी आवाज तो इतनी प्यारी प्यारी है, तो आप क्या सिंगिंग भी करती हैं क्या?
2: नहीं मैं सिंगिंग तो करना चाहती पर बोल पाती नहीं, मुझे खांसी हो जाती है।
3: अच्छा तो अच्छा, ये बताओ कि आपको ड्राइंग पसंद है?
2: हाँ पसंद
3: अच्छा तो ड्राइंग में क्या करना

0: पसंद है, क्या बनाना बनाना पसंद है आपको ड्राइंग में?
1: मुझे घर और फूल बनाना बहुत पसंद, और ऐसी लड़की और लड़के, और मुझे
0: अच्छा,
1: मैं बहुत सुंदर बनाती हूँ। और मदर्स डे पे, टीचर डे पे, जो भी दिन होता है, मैं उससे कार्ड बना के मम्मी को देती हूँ और गिफ्ट भी देती हूँ।
0: वानिया ये बताइए कि आपका जो घर है वो आपके सपनों का घर बनाती हो या फिर ये आपका सच का घर है वो?
1: मेरे सपने का घर है, जो ऊपर वाला है वो अम्मा ने मेरा फेवरेट ही बनवाया है। जैसे मैंने बोला वैसा ही उन्होंने बनवाया है।
0: अरे भाई क्या बात है।
1: मैंने अम्मा से डॉल हाउस मांगा था छोटा सा, तो मैं बहुत छोटी थी,
0: भाई
1: उन्होंने घर बनवा दिया ऊपर का।
0: यानी कि वान्या की अम्मा तो बहुत अच्छी हैं।
1: और अम्मा ने टाइल्स भी लगवाए पिंक कलर के दीवारों पे, और पेंट भी पिंक कलर का ही है।
0: इसका मतलब अम्मा आपको बहुत प्यार करती है ना?
1: हाँ, और अम्मा मेरी गिफ्ट ला के देती है। उन्होंने अभी मुझे किचन से ला के और 100 रुपए दिए उन्होंने मुझे, अम्मा ने।
0: अच्छा, ये बताओ कि अगर अम्मा बहुत सारा प्यार करें मगर
1: तो
0: गिफ्ट नहीं दें फिर क्या, वो अम्मा आपको कैसी लगेंगी?
1: अच्छी तकती सारे मेरे पास गिफ्ट तो है, चांदी के चने, झुमके।
0: अरे भाई इसका मतलब अम्मा कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं।
1: हाँ, और मेरे भाई को भी जितना मुझे करती है। होती
0: अच्छा, तो आपकी और आपके भाई की लड़ाई तो नहीं होती है कि अम्मा ने?
1: है,
0: होती है।
1: होती है। हाँ, यस।
0: तो अच्छा, ज्यादा जिद कौन करता है अम्मा से, आप करते हो कि बड़ा भाई भाई करता है?
1: भाई।
0: भाई करता है।
1: हाँ,
0: अच्छा, अम्मा की बात ज्यादा कौन मानता है?
1: अम्मा की बात तो मानते ही नहीं है भैया, मैं मान लेती थोड़ी क्या। हाँ,
0: थोड़ी मान लेते हो, मैं पूछूंगी अम्मा से आपकी।
1: पूछ लो।
0: अच्छा ये बताओ, कुछ कोई प्यारी सी कहानी आती है सुना दोगे?
1: आती है, एक जंगल में एक विशाल पेड़ रहता था, उसको कोई नहीं ला सकता था। वो बरगद का पेड़ था, उसको कोई नहीं ला सकता था। उसके आगे एक बांस का पेड़ था, वो बहुत छोटा सा पेड़ था। और बड़े पेड़ ने बोला, तुम तो इतने नाजुक से पतले से हो, तुम तो एक ही बार में तूफान आ तो ढह जाओगे। तो फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, बड़ा पेड़ ऐसे खड़ा आया, जो बांस के पेड़ थे सब हिलने लगे, और जो गन्ने का पेड़ था बांस का पेड़, वो झूलने लगा। फिर बड़े पेड़ ने बोला, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो टफ टफी नहीं होटूंगा, मैं तो सीधा खड़ा रहूंगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। फिर तब तूफान रुक गया, तब बड़े पेड़ ने बोला, बांस के पेड़ से तुम तो इतने पतले से और नाजुक से थे, तुम कैसे बच गए। फिर उसने हंस के बोला, मैं इसकी बच गया, मैं तो नीचे झुक गया था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो भी आपके कष्ट आएंगे, आपको उसे डर के खुद ही सामना करना पड़ता है।
0: ओहो, वानिया ने तो इतनी अच्छी कहानी सुनाई और उसका मैसेज है भाई, वो तो वानिया के मुंह से सुन के मजा आ गया ना। अच्छा वानिया ये बताइए, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको कभी अपनी लाइफ में लगा हो कि भाई मुझे भी पेड़ जैसे अब हिम्मत करनी है, कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जहां आप?
1: पहले मैं बच्चे मुझे मारते थे, मैं रो रो के आती थी। अब मैं उसकी मॉनिटर हूँ, अब मुझे कोई छू सकता नहीं है, ना ही मुझसे कोई लड़ाई करता है। अब मैं खुद जो मुझे मारता है, मैं उसको खुद खुद के मारती हूँ।
0: ओहो क्या बात है, इसका मतलब वान्या भी अब बैम्बो ट्री बन गई ना। अच्छा ये बताओ, पेड़ों की बात हो रही है ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि आपको 10 पेड़ लगाने हैं इस धरती माँ को बचाने के लिए, तो आप कौन कौन से पेड़ लगाओगी?
1: कौन कौन से पेड़ लगाओगी? मैं लगाऊंगी बरगद का पेड़, केवड़ की, नीम का पेड़, और कौन सा पेड़ लगाओ, आम का पेड़, और एप्पल का पेड़, और
0: अच्छा
1: गुलाब का पेड़।
0: ये बताओ कि सबसे ज्यादा छांव कौन सा पेड़ देता है?
1: बरगद का पेड़ शायद।
0: क्या बात है भाई, वानिया तो बहुत समझदार है ना। अच्छा ये बताओ
1: बरगद का
0: कि
1: पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, इसकी
0: बहुत बड़ा होता है। हाँ अच्छा ये तो बताओ कि अगर फल के पेड़ों की बात की जाए तो आपको फल के पेड़ों में से कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है?
1: तरबूज,
0: अरे
1: आम और तरबूज मेरे दोनों फेवरेट है, बिल्कुल
0: अच्छा, फल कौन सा बिल्कुल पसंद नहीं है?
1: ही वैसा है। मुझे बताओ क्या
0: हाँ,
1: सबसे खट्टी चीज है? कीवी।
0: जैसे कि हाँ, लेकिन कीवी तो बहुत हेल्दी होती है, और कीवी खाने से तो
1: कभी मैं उसको खा लेती हूँ चीनी डाल के।
0: अच्छा। ये बताओ कि जो जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनको खा के हमको फायदा क्या होता है, आप हमें ये बताओ।
1: बैलेंस ही मिलता होगा, पर मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ।
0: बताओ। अच्छा।
1: कभी टमाटर को खाने के आपका शायद वो होता है, मैं भूल गया इसको बाद में बताऊंगी। चुकंदर खाओगे तो खून बढ़ेगा, अखरोट
0: बिल्कुल,
1: खाओगे तो वो दिमाग
0: दिमाग पड़ेगा।
1: था दिमाग तेज होएगा, गाजर खाओगे तो आंखें तेज होएगी, और
0: क्या बात है भाई, क्या
1: धनिया
0: बात।
1: खाओगी तो पैसे तेज होएंगी। और क्या
0: तो वान्यास का मतलब सारे के सारे फ्रूट्स भी
1: और
0: खाना।
1: खट्टे फल खाओगी तो विटामिन सी मिलेगा।
0: हाँ, ये सबसे मजे की बात बताई कि जितने भी खट्टे फल खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा ना, और विटामिन सी से होता क्या है, क्यों हमें खाना चाहिए बताओ।
1: इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए।
0: हाँ, जब वान्या खूब सारे खट्टे खट्टे फ्रूट्स खाएगी ना, तो वान्या को जो जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, तो वान्या की वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, है ना।
1: हाँ, मैं खाती हूँ खट्टे फल, अभी
0: खाते हो?
1: मैंने खट्टे फल खाए हैं अभी, और
0: अच्छा,
1: खट्टे थे मैं उसको नाक बंद कर खा गई। मुंह
0: तो खट्टा फल खाने के लिए नाक बंद करने की क्या जरूरत है। नहीं,
1: में साथ खट्टा खट्टा साथ है ना, तो नाक बंद करके सब खा गई।
0: तो खट्टा तो जीभ से लगता है, नाक से थोड़ी ना खट्टा लगता है। हाँ, पूछो।
1: ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं जलती सबको जलाती है? मिठाई।
0: मैं हार मान गई, अब आप बताओ। हाँ,
1: टाइम।
0: अरे
1: टाइम।
0: भाई, मुझे लग
1: अच्छा
0: तो रहा था।
1: एक
0: हाँ, और
1: और
0: पूछो।
1: पूछूं।
0: हाँ,
1: एक हाथी है और 4 केले रखे हैं, उसने 3 खाए, एक क्यों नहीं खाया?
0: क्यों नहीं खाया।
1: अब बताओ पहले।
0: मुझे लग रहा है वान्या इसका आंसर ज्यादा अच्छे से देगी।
1: प्लास्टिक का
0: हाय हाय, वान्या ने चीटिंग करी, मुझे बताया नहीं कि प्लास्टिक का केला था।
1: जो था केला, और एक हाथी था और 4 5 केले थे कम से कम, उसने 5 केले नहीं खाए। बताओ क्यों नहीं खाए उसने 5 केले? नहीं, वो
0: क्योंकि वो प्लास्टिक के थे।
1: तो टीवी के अंदर था ना।
0: भाई, वान्या मस्ती भी करती है ना।
1: हाँ,
0: अच्छा वान्या, ये बताओ कि आपको अगर कोई कहे कि आपको ना कोई एक अच्छी सी ड्रेस लेनी है, और उस ड्रेस को पहन के आपको घूमने जाना, तो आप कहाँ घूमने जाओगी। कश्मीर। वान्या का तो मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन कश्मीर है ना। मगर वान्या, वहां पे तो बहुत ठंड पड़ती है। चाइना। अच्छा ये बताओ, चाइना नक्शे में है का, कभी आपने अपनी कंट्री का मैप देखा है। अच्छा,
1: हाँ, मैंने देखा है, पर मैं उसको भूल जाती हूँ बार बार। हाँ,
0: चाइना हमारी नेबर कंट्री है ना, हमारे पड़ोसी देश है ना चाइना।
1: पर वो हमारी दुश्मनी है उससे। हाँ,
0: अरे ऐसा है क्या। अच्छा,
1: इंडिया की दुश्मनी है ना।
0: लेकिन वैसे कहते हैं कि पड़ोसियों से तो थोड़ी दोस्ती करके रखनी चाहिए, है ना।
1: हाँ, पर दुश्मनी हो गई उल्टा।
0: उल्टा दुश्मनी हो गई, हुई कैसे ये।
1: मम्मी एक चीज देखी थी, दुश्मनी हो गई, लड़ाई हो गई हमारी।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: अच्छा
0: अच्छा अच्छा ये बताओ कि आपको अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए, तो फिर हाँ, तो आप कौन से बॉर्डर पे जाना चाहोगे, उधर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे, या फिर चाइना वाले बॉर्डर पे, कहाँ, या फिर उधर नेपाल वाले बॉर्डर पे, कहाँ पे जाना चाहोगे।
1: चाइना
0: चाइना। लेकिन अभी तो आपने बोला कि चाइना से तो हमारी दुश्मनी हो गई है।
1: दुश्मनी के संग दोस्ती भी हो जाती है बार बार, मैंने सुना है ना, दुश्मनी के संग दोस्ती भी हो जाती है।
0: कैसे हम वान्या दोस्ती कैसे करेगी फिर चाइना से, आप
1: देखो,
0: बताओ।
1: मेरी हो जाती है। देखो, एक बार मेरी ना दोस्त से लड़ाई हो गई, तो उसने बाद में आके मुझसे बोल दिया सॉरी, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसने मेरी उंगली में चोट लग गई थी और खून आ रहा था, मैं मुझे मार रहा था, सही है? तो मैं उससे कट्टी हो गई, मैंने दोस्ती तोड़ दी, 2 दिनों से बात नहीं करी। फिर वो बाहर आया, उसने बोला सॉरी, आजकल मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ड्राम में यही पर होगा। तो उसकी मम्मी ढूंढ रही, उससे बोला मेरी अब तुझे निकलाएगी, तो उसने मना कर दिया। मैं बोला आंटी मैं खिला लूंगी इसको, कोई वाणी, बच्चे से इंसान से गलती होती है एक बार। ऐसी हो गई थी हमारी दोस्ती दोबारा से।
0: अच्छा ये तो बताओ कि अगर आप बॉर्डर पे जाओगी चाइना वाले, तो इसका मतलब हम वान्या को भेजेंगे तो वान्या हमारी चाइना से दोस्ती करा के आ जाएगी ना।
1: हाँ,
0: अच्छा हमको वैसे भी सबसे दोस्ती मिल बांट के रहना चाहिए ना, है ना।
1: पर
0: अच्छा अच्छा वान्या ये बताइए कि आपने कभी महात्मा गांधी का नाम सुना है?
1: हाँ, माता रानी मुझे पता है कौन है वो,
0: बताइए कौन है।
1: हमारे राष्ट्रपिता। हाँ बुलेट में राष्ट्रपिता।
0: अच्छा अच्छा वाने कुछ और सुनाओगे यहाँ बेटा? कुछ और आप कुछ और सुनाना चाहते हो?
1: गुरु तुमने ये संसार बनाया, सुख सुख पिता से इसे सजाया, तुमने सूरज को गरमाया, चांद सितारों को बनाया, तुमने पर्वत शिखर को बनाया, तुमने चीजों को चचाया, ईश्वर हो तुम बहुत महान, पहले के हम बने महान।
0: क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब। ये कविता है ना, प्रार्थना है, क्या है बताइए।
1: मैं आपको योग बताती
0: सुनाइए।
1: हूँ। गुरु गए, ये है पढ़न, आपको पढ़न जो आप पढ़ते हो ना
0: हाँ
1: उसमें आपको जल्दी याद होगा। गुरु गए पढ़न गुराई, अलकाल विद्या सब आई।
0: क्या बात है भाई, वानिया तो बहुत इंटेलिजेंट है।
1: और ना एक योग कौन है, सदा भवानी दाई मे गौरी पुत गरे, पाच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, एक और कपन सुकाच कनिक माई, जो नहीं होए डांट तुम पाई।
0: क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाना तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखती है। अच्छा बताओ ये बातें कौन सिखाता है आपको?
1: ये बातें मैं खुद से सीखती हूँ, थोड़ी बातें मेरी मम्मी सिखाती है और पापा।
0: अच्छा आज ज्यादा बातें कौन सिखाता है? अच्छी।
1: अच्छे, पापा मम्मा।
0: अच्छा तो वानिया खुद भी सीखती हैं और उनके मम्मी पापा भी सिखाते हैं ना। भाई वानिया से तो बात करके मजा आ गया। और वानिया हमको हमेशा से आपसे उम्मीद रहती है कि आप हमेशा जब भी बातें करती हो ना, तो प्यारी प्यारी बातों में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आप बच्चों को सिखा देती हो ना। चलिए वानिया कुछ और है, आप हमसे कुछ और शेयर करना चाहती है बेटा?
1: दो आदमी सुए को दूर लेने गए थे,
0: अच्छा
1: गाय के मुंह में से झाग निकल रहे थे, तो दूसरे

0: अच्छा लगा। हाँ अच्छा, आप हमसे प्रॉमिस करिए अगली बार जब हमसे आप जुड़ेंगी तो और भी कुछ नया नया और बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके जुड़ेंगी, है ना?
1: अब मैं यूनिकॉर्न की कहानी लेके आपको दिखाऊंगी, यूनिकॉर्न
0: ठीक है, आप प्रॉमिस करो अगली बार से एक अच्छी सी कहानी मुझे लर्न करके सुनाओगे, ठीक है? ठीक
1: यूनिकॉर्न वाली।
0: है बेटा, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बाय
1: वेलकम दीदी, बाय।
0: बेटा।
2: मेरा नाम आद्रिका है और मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ, और आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, ऐसे प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, इतना साफ और सफेद।

0: सुंदर हो, इसीलिए तुम बहुत खुश होगे। हंस ने इस बात का जवाब दिया, हाँ तो सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग है। उसके गले पर लाल रंग का घेरा है और वो सुर्ख हरे रंग का है था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते की प्रशंसा कर रहा है, कह रहा है कि वो सबसे सुंदर, तो फिर उसे तो तोते को देखना ही होगा। कौवा तोते के पास जाता है और उससे भी पूछता है, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने थोड़ा रुक कर कहा, हाँ मैं तब तक खुश था कि जब तक मैंने एक मोर को नहीं देख लिया। मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग होते हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगा, इसीलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो आसमान में उड़ते उड़ते एक चिड़ियाघर पे पहुंचा। वहां उसने देखा तो वहां पे एक मोर एक पिंजरे में कैद था और उसके साथ लोग फोटो खिंचा रहे थे और उसके आसपास बहुत सी भीड़ थी। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने बहुत दुखी होकर कहा, सुंदर हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो लोग सुंदर होने के कारण इस चिड़ियाघर में कैद कर देते हैं। लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद नहीं करता, तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट और खुश जीव तुम ही होने चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसने जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। ऐसे लोगों का जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसी की अहमियत समझकर खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खुशियों भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं, जबकि अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।
1: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम नन्हे बोल, जिसके अंतर्गत हमने बच्चों की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनी। और आज हमारे कार्यक्रम का जो हिस्सा थी वो थी वान्या जिंदल। वान्या जिंदल अक्सर हमसे बात करती रहती हैं और उनकी बातें यूं ही मनमोहक लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो समय जो है वो बिल्कुल दौड़ गया हो।
2: जी हाँ, काफ़ी चुलबुली सी थी वान्या और काफ़ी प्यारी प्यारी सी आवाज़, उनके क्यूट सी आवाज़ में उन्होंने हमारे संग बातचीत करी और प्यारी सी अपनी प्रस्तुतियाँ भी सुनाई, तो मज़ा आ गया प्रीति। और देखिए प्रीति, अब जो कार्यक्रम का समय है समापन की ओर हो चला है, तो अब हमें चलना होगा। पर जाने से पहले बच्चों, आपको हमारा आज का कल्याण कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिख भेजिएगा। इसके लिए बच्चों आप हमें अपने पत्र भेज सकते हैं, अपने मेल भेज सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कलियां कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
1: इसी के साथ ही बच्चों, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, अपने पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है पत्र मिला airrampur@gmail.com।
2: तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपने हमारा पता और हमारा जो मेल आईडी है वो नोट कर लिया होगा।
3: जय हिंद।
4: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थी प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की।

यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम कलियां। कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थीं प्रियंका शर्मा और प्रीति यादव। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं।

0: is informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on Moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the Moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department IMD has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds today. Moving on to sports news, first the news from FIFA. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organized throughout the contest, frustrating their opponents and capitalizing on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
5: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 19 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है विश्व रक्तदान दिवस पर विशेष परिचर्चा, रक्तदान महादान। प्रस्तुति राजीव कुमार सक्सेना की है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
7: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
8: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
7: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
8: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस लाइफ और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
7: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
9: आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मिशन हेल्थ इस कार्यक्रम का विषय है रक्तदान की महत्ता और रक्तदाताओं के लिए सरकारी प्रयास या योजनाएं। कहते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, लेकिन कोशिकाएं मिलकर अंगों का निर्माण करती हैं और ये अंग रक्त के प्रवाह से संचालित होते हैं। लेकिन रक्त के विषय में बहुत सी जानकारी हमारे श्रोताओं को नहीं है। रक्त के विषय में जानना जरूरी है। ब्लड के संबंध में आम बोलचाल की भाषा में जो रक्तदान है यानी कि खून देना किसी को, ये एक बहुत पुण्य का काम माना जाता है। लेकिन आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में जहां लोग एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं हैं, व्यवहार कम होने की वजह से उनको एक दूसरे से खून नहीं मिल पाता है आवश्यकता होने पर। आपातकालीन स्थिति यानी कि दुर्घटना आदि के समय में यदि आपको ब्लड चाहिए यानी रक्त चाहिए, अस्पतालों में ये इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है कि किन तरीकों से आपको रक्त उपलब्ध होगा आपातकालीन स्थिति में। आज हमारे साथ इस विषय पर एक्सपर्ट पैनल में डॉक्टर निम्मी वार्ष्णे, पैथोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज वर्धमान चैरिटेबल ब्लड सेंटर, डॉक्टर कुलदीप सिंह चौहान आयुर्वेद चिकित्सक, ADGC सुचित स्वैच्छिक रक्तदाता हैं जो कई बार रक्तदान कर चुके हैं, प्रतीक शर्मा जी हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं और समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं ब्लड डोनेशन प्रति। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कुछ प्रतिभागी भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं जो रामपुर के प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जो हमारे पैनलिस्ट से अपने अपने प्रश्न पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं इस परिचर्चा को और हम अपने पहले परिचर्चा में जो हमारे सदस्य हैं उनको माइक देते हैं और ये आग्रह भी करेंगे कि वो अपना प्रश्न पूछें।
10: नाम भगवत सिंह सक्सेना, मैं तिलक नगर कॉलोनी रामपुर से आया हूं और मुझे इसी से ये पूछना है कि जो लोग जिन्हें शुगर है वो लोग इसमें अपना ब्लड दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं, और दे नहीं सकते हैं तो क्यों, इसकी क्या वजह है?
9: बहुत अच्छा प्रश्न है और डॉक्टर निम्मी वार्ष्णे आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगी।
11: देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ब्लड शुगर वाला आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। डायबिटीज मना के लिए हम मना नहीं करते हैं। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, आपकी दवाइयां हाल फिलहाल में एक महीने के अंदर में आपने चेंज नहीं की हैं, तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप बार बार दवाइयाँ आपको चेंज करनी पड़ रही हैं, या फिर आप इंसुलिन पे हैं, तो आप ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते। आप उस समय ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे होता क्या है कि हम जब आपसे ब्लड लेंगे तो आप ही की शुगर और ऊपर नीचे होगी, तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम ऐसे पेशेंट से ब्लड डोनेशन नहीं करो।
10: अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, जो लोग ब्लड देते हैं वो कब कब दे सकते हैं और उसके बीच का क्या अंतराल रहना चाहिए जो ब्लड देते हैं?
11: देखिए ब्लड जो देते हैं वो कभी भी दे सकते हैं। और दूसरा ये होता है, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं या वो स्तनपान करा रही हैं तो ऐसी महिलाएं ब्लड नहीं दे सकती। लेकिन अगर वो पुरुष हैं और उनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा आयु होती है, 18 साल से लेकर 65 साल तक का आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर वो हेल्दी हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो वो उस दौरान में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो पुरुषों के लिए 3 महीने का डिफरेंस है, 3 महीने के बाद आप फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं, महिलाओं के लिए वही 4 महीने का है।
9: अगले हमारे जो प्रतिभागी हैं वो प्रश्न पूछना चाहेंगे हमारे किस एक्सपर्ट से और क्या प्रश्न है उनका?
12: मेरा नाम मोहर सिंह है, मैं रामपुर मिलक से आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग जब खून की देने की बात आती है, उनका कोई रिश्तेदार अस्पताल में होता है, वो कहते हैं भाई साहब आपको खून देना पड़ेगा, तो वो एकदम फुर हो जाता है, मतलब घबरा जाता है व्यक्ति। तो ऐसा मेरा भी मानना है, मुझसे कई लोगों ने कहा है, तो मैं भी घबरा के चला आता हूँ। ब्लड देते समय घबराना नहीं चाहिए, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? खून बहुत ज़रूरी है दूसरे के लिए, उसकी जान बच सकती है, लेकिन ये घबराहट क्यों होती है हमारे अंदर?
9: जी, जागरूकता के संबंध में ये प्रश्न है और इसके लिए हमारे पास सुचित जी हैं जो स्वैच्छिक रूप से कई बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सुचित जी, क्या अनुभव रहा है आपका?
13: पिछले 22 वर्ष के ब्लड डोनेशन में मेरा अनुभव ये है, जैसा आपका प्रश्न है, लोग हट जाते हैं, ब्लड डोनेशन से बचते हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि एक जागरूकता की कमी। अगर मैं बात करूं तो मैंने जब 22 साल पहले ब्लड दिया था तो मैं मुरादाबाद गया था और सुबह से लेकर मैं दोपहर तक परेड में था, एनसीसी परेड में था उस वक्त में, और उसके तुरंत बाद मैंने ब्लड डोनेशन किया, बाइक से गया था और बाइक से वापस आया। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी जिससे मैं ये कहूँ कि कोई कमजोरी आई।

0: या कुछ आया हो, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ ये अनुभव हुआ पिछले 20-22 वर्ष में कि अगर आप अच्छे मन से ब्लड डोनेशन देने जाते हैं आपको कभी कोई कमजोरी का एहसास नहीं होगा। और एक्सपर्ट लोग ये भी बताते हैं ब्लड डोनेशन से पहले यदि आप अल्पाहार ले लें कुछ खा लें तो आपको किसी भी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी भावना से जाइए कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी।
1: मेरा एक सवाल और है, जैसे हम ब्लड देते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारे ब्लड की पूर्ति हो सके?
0: जब आप ब्लड देते हैं उसके तुरंत बाद आप कुछ गर्म चीज लें, चाय लें, कॉफी लें या सूप लें, ठंडा जूस वगैरह बिल्कुल ना लें।
1: डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर कुलदीप जी बताएंगे कि मतलब अक्सर लोग ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो खाते हैं, आमतौर पर देखा होगा आपने कोई पेय पदार्थ उनको दिया जाता है, क्या आयुर्वेद क्या कहता है रक्तदान के विषय में और क्या किस चीज़ से क्षतिपूर्ति हो सकती है?
3: आयुर्वेद जो है रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करता है। बेसिक चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अभी हमारे एक साथी डोनर ने बताया कि मनोवृत्ति, आयुर्वेद ने जो है मन, नियम नियम संयम ये सारी चीज़ें जो है काम करती है, विचार खास तौर से, क्योंकि आयुर्वेद जो है स्पिरिचुअल से कहीं अलग नहीं है। जहाँ तक हम आहार की बात करें तो ये बात ठीक है कि व्यक्ति का न्यूट्रिशन रहना चाहिए, खाली पेट से थोड़ा बचना चाहिए, और जब ब्लड डोनेट करके आए तो ज़्यादातर वो लिक्विड बेस्ड जैसे कि दूध है, चाहे मतलब गाय का दूध हो या भैंस का भी ले सकते हैं, सब मात्रा में मिला करके पानी के साथ, मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इसके अलावा हरी सब्जियां ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, जो हैं ताज़े फल उनका सेवन करना चाहिए, और थोड़ा सा आराम उस समय जो है 1-2 घंटे का रेस्ट जरूर करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बेहतर रहता है।
2: जागरूकता होती है किसी मंच के आयोजन की या प्लेटफॉर्म की जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और जानते हैं, जैसे सुचित जी हमारे साथ हैं, इसी तरह से प्रतीक शर्मा जी आप कैंप का आयोजन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं।
4: जैसा कि मैं मदद विकास फाउंडेशन के माध्यम से 7 वर्षों से रक्तदान शिविर के आयोजन रामपुर में नहीं देश में विभिन्न जगह करा रहा हूँ।
2: जी
4: कैंपों के माध्यम से रक्तदान कराता हूँ और डायरेक्ट डोनर के माध्यम से भी। कैंपों के माध्यम से जो रक्तदान हम लोग कराते हैं जिला अस्पताल और प्राइवेट ब्लड बैंकों के माध्यम से कराते हैं, जिससे हम सभी जगह से लोगों को सुविधा दे पाएँ। किसी को प्राइवेट ब्लड बैंक से ज़रूरत होती है,
2: जी
4: प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, कभी जिला अस्पताल से।
2: जी जब आपने शुरुआत की थी
4: जी,
2: उस समय का क्या अनुभव है? लोग कम जुड़े होंगे शुरुआत, आपका अपना मॉरल भी थोड़ा डाउन रहा होगा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय रहा है।
4: देखिए जब मैंने ब्लड की शुरुआत की थी ब्लड रक्तदान के लिए, तो एक बच्चे को मैंने ब्लड कराया था जिला अस्पताल के, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एक ग्रुप बनाया था करीब 7 साल पहले। तो उसमें एक बच्चे के लिए मैंने करीब लोगों को बोला, जागरूक बहुत कम थे लोग, बहुत सोचते थे आने के लिए जिला अस्पताल उसमें, लेकिन 2-3 लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आए। उसके बाद हमने एक ब्लड ग्रुप बनाया, उसमें लोगों को जोड़ा, जुड़ते गए लोग, कुछ लोग मोटिवेट थे जो हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करने आते थे, और कुछ लोग वहीं से रक्तदान करना वन टाइम किया, उसके बाद रक्तदान नहीं किया। बहुत सारे इस बीच में संघर्ष का सामना करना पड़ा। रामपुर में थेलीसीमिया डायलिसिस के मरीजों को हमने, उनको ब्लड हर वक्त वीकली और महीने में ब्लड चढ़ता है, तो उनको हमने उस तरह से गोद ले रखा है कुछ मरीजों को कि वो जब तक जीवित रहेंगे जब तक हम उनको ब्लड कराते रहेंगे।
5: मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ब्लड बहुत बार दे चुका हूँ और लोगों के ज़्यादातर कॉल ही आती हैं ब्लड के लिए हैं। अभी भी कुछ 2 दिन पहले एक साहब की कॉल आई, भाई ब्लड चाहिए और बी प्लस चाहिए। मैंने कहा मेरा ही है, मैं पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक कोई परेशानी नहीं, कभी किसी चीज़ से ही नहीं गुजरा, ना कोई बीमारी कुछ नहीं। डोनेट के पास पहुँचा, उस मैंने दिया ब्लड के लिए, जब मेरी उनको प्लेटलेट्स चाहिए थी तो मैंने उनसे बात करी डॉक्टर से, तो वो बोले आपके तो TLC बहुत बढ़िया आ रही है। इस चीज़ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई उस डॉक्टर साहब जहाँ से मैं ब्लड दे रहा था, उन लोगों ने मेरी आज TLC बढ़ी हुई बताई है। और TLC कभी ही मैंने इतनी ही पहले जांच करा ली, पहले मैं हर महीने 3 महीने में अपना पूरा मेडिकल कराता ही हूँ, उससे पहले मैं ब्लड नहीं देता हूँ, हर 3 महीने में ब्लड देना ही देना है मुझे।
2: जी आपने बताया कि आपकी TLC बढ़ी आई, तो जानते हैं पैथोलॉजिस्ट मैडम से।
6: देखिए TLC जो है वो आपके, उसको हम बोलते हैं, उसको मैं फुल फॉर्म बताऊं तो उसका है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब होता है सफेद रक्त कोशिकाएं। ब्लड है वो बहुत सारी चीजों से, 3-4 मेन चीजें हैं जिसमें से एक उसमें से रक्त कोशिकाएं हैं, जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ये कोशिकाएं आगे आती हैं और बोलती हैं हम आपके इन्फेक्शन को रोकेंगे। तो जब आपकी TLC बढ़ी हुई है इसका मतलब है उस समय के लिए आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है जिनको वो रोकने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही वो इन्फेक्शन खत्म होगा आपके TLC वापस नॉर्मल हो जाएगा और आप फिर से ब्लड देने के लिए एलिजिबल हो जाए।
5: डॉक्टर साहब ने मुझसे, मैंने वहीं पूछा

0: सवाल करा था डॉक्टर साहब से, जो टीएलसी है तो ना मैं ब्लड दे सकता ना मैं आपको प्लेटलेट दे सकता, क्योंकि मेरा टीएलसी बड़ा।
1: जी
0: डॉक्टर साहब बोले प्लेटलेट नहीं दे सकते आप, अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो।
1: टीएलसी बढ़ने का मतलब है आपकी बॉडी में इंफेक्शन है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, 1 या 2 दिन, उसके बाद आप वापस। संक्रमण की स्थिति में टीएलसी बढ़ जाती है और वो संक्रमण हो सकता है आपके ब्लड के थ्रू किसी और के ब्लड में भी चला जाए।
2: और आजकल आप अपनी रिपोर्ट भी खुद देख सकते हैं, अगर टीएलसी की रेंज दी होती है, रेंज से अगर ऊपर है तो आप
1: 4,000 से 11,000 तक के
2: जी।
1: बीच में होती है, आप उससे अगर ऊपर है तो आप 1-2 दिन रुक जाएं, जैसी वो नॉर्मल हो फिर सर।
3: मैं मदन लाल बरेली से हूँ।
2: जी
3: मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हम जो ब्लड डोनर जो हैं वो गांव की तरफ बहुत घबराते हैं, गांव से लोग इस तरफ उनका रुझान नहीं है, जबकि मैं भी मेरी 54 ईयर्स हो गई, मैंने भी ब्लड डोनेट किया है और
2: जी
3: मैं इस विषय पे जानना चाहता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि ब्लड देना एक हमारा दिल में हम बसा के रखते हैं कि हाँ मैंने ब्लड दिया है। कैसे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएं कि ताकि वो ब्लड डोनेट की तरफ उनका रुझान हो।
4: जैसे आपका सवाल है, मेरा ऐसा एक अनुभव रहा है। एक व्यक्ति रामपुर के ही हैं, उनको 3 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ ब्लड बैंक गए। मैंने वहाँ ब्लड बैंक में पहले डोनेट किया हुआ था, तो 1 यूनिट तो वो मुझे देने को तैयार हो गए। दूसरा यूनिट जब मैंने कहा मैं दूंगा, जिन व्यक्ति को चाहिए था वो थोड़ा हिचके, बोले आप क्यों दोगे? मैंने कहा ब्लड कहीं से तो आएगा, बनता तो है नहीं, जब कोई देगा तभी आपको मिलेगा। मैंने वहाँ ब्लड दिया, उन्होंने मुझे ब्लड डोनेशन करते हुए देखा और उसके बाद उनके मन में ऐसी फीलिंग आई, तीसरा यूनिट उन्होंने खुद दिया। तो इस तरीके से भी होता है, जब लोग आपको देखते हैं कि आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, तो वो इसी से थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं और आगे आते हैं।
2: रही बात देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के, मदन लाल जी आपने पूछा कि मैं
3: जी
2: डोनेट करता हूँ, तो डोनर को उसके बाद फिर थोड़ा सा साइलेंट नहीं रहना चाहिए, कि देने के बाद लोगों को बताना भी चाहिए कि देखिए मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं आज स्वस्थ हूँ। वो
3: जी
2: बात आई गई हो जाती है तो लोग भूल जाते हैं, फिर नए सिरे से सोचते हैं तो फिर नहीं आते हैं आगे। इसको
3: जी
2: थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि शहरों में तो कैंप आयोजन होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई अच्छा डोनर है तो उसे खुद ही लोगों को जागरूक करना होगा।
3: दूसरा मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से ये है, जैसे 18 साल किसी की एज है, उस समय उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, क्या उम्र के अनुसार फिर ब्लड ग्रुप बदली भी हो जाता है क्या?
2: जी नहीं
1: जी नहीं, ये कभी नहीं हो। एक बार 6 महीने तक ये हो सकता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब ये जरूर हो सकता है कि कई बार माँ की एंटीबॉडीज उसको कवर करके रखती हैं तो वो आपको अच्छे से शो नहीं करता, ये जरूर हो सकता है। लेकिन उस 6 महीने से लेके फिर आपकी जिंदगी भर तक, जब तक उस आदमी की मृत्यु नहीं होती,
3: जी
1: वो ब्लड ग्रुप कभी चेंज।
2: कई बार हमने सुना कि प्लाज्मा दिया जाता है, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि प्लाज्मा क्या है और ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है।
1: कई बार हम देखते हैं लिक्विड्स होते हैं, लैब में भी दिखती हैं हम कई बार वो चीजें, तो हमें लगता है कि वो दोनों एक ही चीज है। जी नहीं, प्लाज्मा में प्लेटलेट्स हैं और सीरम में नहीं है। प्लाज्मा वो चीज है जिसके अंदर हमारी रक्त कोशिकाएं घूम रही हैं हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर प्लेटलेट्स भी होती हैं, और जब डेंगू में प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं तो वो हमारी प्लेटलेट्स की रिकवरी में हेल्प करते हैं।
5: मैं सुनीता गंगवार बरेली से। मेरी छोटी बेटी है 20-22 साल की, उसका हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, इस वजह से उसे थकावट भी रहती है, कमजोरी भी रहती है, थोड़ा सा भी काम करती है वो थक जाती है। हीमोग्लोबिन उसका किस तरह से बढ़ाया जाए?
1: मेरे ख्याल से उसमें आप आयरन से जो रिच चीज़ें होती हैं, जैसे पालक है, सेब है,
5: जी
1: खजूर है, उसमें अंजीर है, आप गुड़ है, जब सर्दियों में आप जितना गुड़ खिलाएंगे उतना आयरन रिच चीज़ें आप जितनी उन्हें खिलाएंगे
5: जी।
1: उतना उन्हें फ़ायदा मिलेगा।
6: जो एनीमिक पेशेंट है जिनका आयरन की कमी है, उनको हमने एक मुट्ठी चना और एक चुटकी गुड़
5: जी
6: डेली दोपहर में खाने के लिए सजेस्ट किया है, और इससे जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल रहा है।
5: जी
6: तो अगर उसका डाइजेशन सिस्टम सही है, मतलब पाचन क्रिया सही है, बच्चे खा पी रही है, कोई उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंतों संबंधित कोई इन्फेक्शन या लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे डाइट पे फोकस करना है। डॉक्टर साहब ने सही बताया, बाकी चीज़ें देनी है, अंजीर वगैरह पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
2: डॉक्टर साहब एक प्रश्न और कि पानी का क्या प्रभाव पड़ता है? 3 या 4 साल के बच्चे होते हैं, खेल में पानी नहीं पीना चाहते हैं, तो क्या ब्लड का इस पे कोई प्रभाव पड़ता है?
6: देखिए पानी तो ओवरऑल शरीर में 70% तो रहना चाहिए,
2: जी
6: क्योंकि बॉडी का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि ब्लड में पानी का कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ता, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में डिहाइड्रेशन होने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए जो है डिहाइड्रेशन ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है पानी का

0: जो रिक्वायर्ड है बॉडी का, उतना पानी तो लेना चाहिए, और कम से कम जो है प्यास लगे तो जरूर पीना चाहिए।
1: अगर किसी श्रोता को कोई समस्या या कोई प्रश्न है तो हमारे पैनलिस्ट से प्रश्न कर सकते हैं आप।
2: सर जी बरेली से, सर शुगर से संबंधित जानकारी जानना, शुगर बढ़ी रहती है?
0: देखिए, शुगर जो है एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, जीवन शैली से संबंधित है। हमारा जो खान पान है वो हमारे रिक्वायर्ड के अनुसार होना चाहिए। बॉडी को एक संतुलित जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, संतुलित ही आपका जो है शुगर होनी चाहिए, संतुलित ही आपका विटामिन्स का उसमें समावेश होना चाहिए डाइट में, फैट भी संतुलित होना चाहिए। इनमें से कोई भी आयुर्वेद में क्या असंतुलन जब होता है आहार से संबंधित, और फिर इसके अलावा आपका उठना सोना ये, और फिर इसके बाद आपका जो मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें जो है शुगर को जो है रिप्रेजेंट करती है, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। अब जैसे कि शुगर अनियंत्रित आ रही है, तो कहीं ना कहीं वर्कआउट है आपका बॉडी का, वो प्रॉपर नहीं होगा। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वॉक करें आप, और वो आयु के अनुसार है, जिसकी जितनी फिटनेस है, कम से कम मिनिमम 1.5 किलोमीटर सुबह और 1.5 किलोमीटर शाम अगर वॉक करते हैं एक सी रफ्तार में, यानी कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप लूज करके चल रहे हैं, टहलना भी कई
2: जी
0: प्रकार का
2: सर,
0: होता है।
2: साइकिल चलाता हूँ मैं सुबह
0: हाँ,
2: में।
0: तो बेहतर है आप अगर आपको साइकिलिंग सूट करती है, आपको जॉइंट्स या और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो बेहतर है। लेकिन वॉक, जो पैदल वॉक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है खासतौर से शुगर के लिए। दूसरा है कि जो कुछ आप डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे चीनी या चीनी की बनी हुई चीज़ें, उनको अवॉइड करें
2: चीनी
0: आप,
2: अवॉइड करता हूँ।
0: और जिनमें हाई ज़्यादा मतलब कैलोरीज या ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है फल, या उनको उनमें से किसी एक फल का सेवन करें। ऐसा ना हो कि आप एक दिन में वो लगातार ही उसका कंटिन्यूएशन में रहे। तो आहार का संतुलन, रात को सोने का, सुबह उठने का, और आपके जो मानसिक तनाव, इन तीनों चीज़ों का अगर आप सही संतुलन करेंगे तो ये अनियंत्रित नहीं रहेगी, कंट्रोल में रहेगी।
1: वैसे मैडम आपका क्या मानना है, क्योंकि कहा जाता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस से भी शुगर होता है।
3: कुछ लोग को अनुवांशिक भी शुगर होती है,
1: जी
3: वो शरीर से तो बिल्कुल फिट लगते हैं कि इतने पतले आदमी को कैसे हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में अनुवांशिक होती है जो मतलब उनके फादर को मदर को ऊपर से चला आ रहा है और वो बिल्कुल फिट होते हुए भी उनको शुगर है। उनको कंट्रोल करने के तरीके हैं, सर ने बताया जैसे आपको मानसिक संतुलन और वो सब चीजें हैं। डायबिटीज तो खैर एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के हर अंग को अफेक्ट करती है।
4: मैं फिरोज हैदर बलेली से, ये जैसे ब्लड जैसे देते हैं तो वो कितने बार दे सकते हैं?
3: आप जब 18 साल के हो जाते हैं उसके
4: जी
3: बाद से आप 65 साल तक कितनी बार भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बस उसके बीच में जैसे आप पुरुष हैं तो आप 3 महीने का गैप लेके ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
4: इससे ब्लड से ब्लड दे रहे हैं तो उससे ये तो नहीं है कि ज़्यादा देने से कोई नुकसान है या कुछ?
3: नहीं देखिए, ब्लड जब भी लिया जाता है तो वो ये तो 350 ml लिया जाएगा या साढ़े
4: जी
3: चार सौ एम एल लिया जाएगा, उससे ऊपर आपको लिया ही नहीं जाएगा। तो ज्यादा या कम का वहां सवाल ही नहीं होता। आपके 3 महीने में आपके ने जो ब्लड डोनेट किया है वो आपकी बॉडी में क्षतिपूर्ति उसकी हो चुकी हो।
1: प्रतीक जी और प्रकाश डाल सकते हैं क्योंकि ये कैंप लगाते हैं।
5: ब्लड डोनेशन हर 3 माह में करते रहना चाहिए, हमारी वो बॉडी फिट रहती है बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियों से लगता है हमें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये ऐसा बहुत सारी शिकायतें लगने लगती हैं, फिट नहीं लगने लगते, तो ब्लड से बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। एक स्वस्थ इंसान को हर 3 माह में और महिला को 4 महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए।
1: प्रतीक जी, एक खतरनाक बीमारी है HIV पॉजिटिव होना।
5: जी
1: जब कैंप में लोग डोनेट करते हैं तो कैसे इस बात का पता किया जाता है?
5: सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमें कभी कभी अपने बारे में पता नहीं चल पाता कि हमारे बॉडी में क्या क्या बीमारियां हैं। जिला अस्पताल के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाते हैं हम, प्राइवेट ब्लड बैंकों के माध्यम से, तो सबके एक अपने प्रोटोकॉल और सबके एक अपने रूल्स होते हैं। कुछ चेकअप करते हैं, जब हम आपके माध्यम से रक्त ब्लड बैंक में ले लेते हैं, उसके बाद एक आपका करीब 2 से 2.5 हज़ार रुपये की टेस्टिंग होती है जो बिल्कुल निःशुल्क होती हैं, जो लैब में होती हैं। उसमें हमें बहुत सारी टाइफाइड वगैरह का पता चल जाता है, HIV का पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। उसके माध्यम से डायरेक्ट वो लोग हमको नहीं बताते हैं, ब्लड बैंक हमको नहीं बताता जो हम कैंप लगाते हैं, डायरेक्ट आपके पास कॉल पहुंचती है कि आपको ऐसी ऐसी दिक्कत है, जिससे ये बात किसी को और को ना पता चले।
0: देखिए, हमारे जो ब्लड बैंक है सरकारी, उसमें हमारे डोनर जो है लिस्टेड रहते हैं, और उसके बाद उसको यह है कि अगर कभी उसके किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको उसको वरीयता दी जाएगी, अगर वो आते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। एक तो ये सुविधा है, और दूसरी बात ये है कि आपको जो एक मतलब एप्रिसिएशन जो मिलता है, वो आप अगर कोई स्टूडेंट है, युवा है कोई, या अभी किसी मतलब जॉब में जा रहा है, तो आजकल सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि जो रक्तदाता हैं जो लंबे समय से हैं उनका सर्टिफिकेशन है वो वहाँ वैल्यू करेगा। और अभी भी हमारे इंडिया में जो है जितनी पॉपुलेशन है उसका 25% भी हमारे पास डोनर नहीं है, और अभी भी काफ़ी जो डेथ हैं वो केवल ब्लड ना होने की वजह से मतलब जान जा रही है। तो ये दो सुविधाएं हैं, और बाकी जो है हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस से करते ही हैं।
6: मैं हेमपाल सिंह, हमारे साथ ही एक ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं उनके साथ में गया था, उन्होंने किया था, तो वो कई बार जब उन्होंने किया तो 350 में लिया गया है, लेकिन एक जगह अभी गए हम 2 महीने पहले, तो वहाँ उनका 450 में लिया गया, तो वो उनसे लड़ गए।
3: 350 ग्राम होल ब्लड होता है, यानी पूरा ब्लड जो आगे पेशेंट को हम देते हैं। 450 ml ब्लड लेने का हमारा सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उसको हम 3 चीज़ों में तोड़ते हैं, कि हम एक पैक रेड सेल बनाते हैं, एक हम प्लेटलेट बनाते हैं, और एक हम FFP यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं। जब आप 350 देते हैं तो सिर्फ आप एक आदमी का फायदा कर रहे हैं, जब आप 450 दे रहे हैं 100 ml में आप 3 लोगों का फायदा।
6: विशेषकर हमारी महिलाओं में दिक्कत आती है, उनके लिए एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे कोई आयुर्वेद में ऐसे कोई नुस्खे हैं जिनके द्वारा वो अपनी ब्लड की पूर्ति कर सकते?
0: देखिए, एनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो घर पे ही मौजूद है, सारा डाइट जो है हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, और ये चुकंदर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाती भी हैं। गुड़ और चने का सेवन, जो भी भोजन या डाइट से संबंध लिया जाए उसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए और शांत भाव से बिना मानसिक तनाव के लिया जाए, तो वो हमारी बॉडी में ये सारी पूर्ति जो है करता है।
7: मेरा नाम ममता है, मैं रामपुर से। डॉक्टर साहब, मेरी समस्या ये है कि मैंने अभी तक ब्लड डोनेट

0: मैं 22वीं बार ब्लड दिया है अभी मैंने,
1: तो वो अभी तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल है
0: कंट्रोल पे
1: तो आप दे सकते हैं।
0: जी, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, तो साल में 2 बार देता रहता हूँ मैं।
2: जब अगर आप इंसुलिन पे हैं या आप अनकंट्रोल्ड शुगर पे हैं, आपकी बार बार दवाइयाँ चेंज की जा रही हैं, तो आप ब्लड देने के लिए एलिजिबल नहीं हो।
3: जैसे इमरजेंसी किसी का केस होता है ब्लड देने के लिए, अब और उसका कहीं ब्लड नहीं मिल रहा है तो दे सकते हैं 1.5 महीने में
2: नहीं,
3: ब्लड?
2: आपकी बॉडी में आपके जो पहले ब्लड आपने दे रखा है वो आपकी पूर्ति नहीं हुई, आप फिर से ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका, देखिए, आपको भी नुकसान पहुंचेगा और आप जिसको दे रहे हैं उसको भी पूरा हीमोग्लोबिन नहीं मिल रहा। वो 1.125 किसी वजह से फिक्स किया गया है कि इतना कम से कम होना चाहिए। जब आपकी बॉडी में उतना नहीं है तो आप किसी आगे वाले को कितना फायदा मिलेगा उस चीज से। 3 महीने से ऊपर आप कभी भी दे सकते हैं,
3: जैसे 6 दिन लगा 7 दिन लगा, जब भी नहीं दे
2: नहीं,
3: सकते।
2: लेकिन जो गाइडलाइन कहती है वो 3 महीने से नीचे ब्लड आप डोनेट नहीं कर सकते।
4: यदि कोई व्यक्ति गांव में है और उसे ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है तो वो कहाँ अप्रोच करे दे
2: देखिए, एक
4: सके?
2: यूपी गवर्नमेंट की पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसपे हम लोग हर रोज जितने भी ब्लड बैंक्स हैं रोज अपना सुबह का स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक सुबह अवेलेबल होता है, हम उसको अपना चढ़ाते हैं। अगर उनके पास इंटरनेट है जिसके थ्रू वो उस पोर्टल पे देख सकें तो वो उससे आप पता कर सकते हैं। बाकी जैसे कि ये मदद एक आस फाउंडेशन है, ये इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये लोग मदद करते हैं उनकी। अगर कैंप नहीं भी लगा हुआ है तो भी वो साथ में जाके ब्लड डोनेट करवाते हैं। कैंप लगते हैं और वॉलेंट्री डोनेशंस होते हैं तो वो हमारे पास सरप्लस स्टॉक होता है। तो हम क्या करते हैं कि तब हम आप अगर हमारे पास आते हैं और आपके पास डोनर नहीं है, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है, आपका पेशेंट ऑपरेशन में है, एक्सीडेंट हो गया है, एकदम इमीडिएट ज़रूरत है, तो हम उसको वैसे भी ब्लड दे सकते हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हम बना नहीं सकते। जो भी हम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट आप करते हैं तो आपको एक डोनर कार्ड दिया जाता है जो कि 3 महीने तक वैलिड है। आप अगर उसको लेके ब्लड बैंक जाते हैं तो उसके बदले में वो आपको बिना डोनर के ही बैग्स, अगर उनके पास उस ब्लड ग्रुप के अवेलेबल हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं।
5: जो ब्लड है 3 महीने में ब्लड इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे शरीर में हर 3 महीने में ब्लड बनता है। और जो कार्ड का लॉजिक है वो भी यही है कि 3 महीने तक आपका कार्ड इसलिए चलता है कि 3 महीने बाद आप दोबारा देने की स्थिति में होते हैं। जब हम किसी को ब्लड देते हैं 2-3 दिन में ही हमारी बॉडी रिकवर करने लगती है, हमारी बॉडी में नया ब्लड बनता है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का भी संचार होता है। और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो एक पायस फीलिंग आती है, पवित्र विचार मन में आते हैं, वो तो एक फायदा है ही है, स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं और सामाजिक भी कह सकते हैं।
6: आप सभी का धन्यवाद यहाँ इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए।
7: अभी आप सुन रहे थे विश्व रक्तदान दिवस पर विशेष परिचर्चा रक्तदान महादान। प्रस्तुति थी राजीव कुमार सक्सेना की।
8: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
9: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
10: 8700001-4242।
11: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
8: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
11: लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
8: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
12: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
8: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
13: से नो टू प्लास्टिक।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता

0: का माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। इन्हीं मीटर्स पर संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन अब से लेकर संध्या 5 बजे तक FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर जारी रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। मीडियम वे पर हमें यह सभा यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया। आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम।
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज।
1: हाँ गांधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।
1: संजय बस।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद।

गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह

0: समझे, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप, कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव, दुर्योधन नहीं मारा जा सकता, मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछो कांधरे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
3: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
3: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
3: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
3: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
3: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुष्टासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
3: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक शाद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वलकल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना? और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं थी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी और उस

0: प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है, इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: कंधारी, देखो मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली, आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।

0: कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली,
0: अच्छा जी,
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी। हाँ
0: अच्छा।
1: ठीक है, मतलब
0: हाँ
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसे ही बातचीत बैठ
0: जी
1: बैठ के
0: जी
1: हंसी मजाक चलती थी,
0: हाँ।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे
0: जी
1: घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे, तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत है। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ।
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी हो
0: अपनी
1: गई थी
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो।
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थी, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता, और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: तो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन
0: क्या
1: हो।
0: बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है, और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार पसंद
0: तुम्हें?
1: है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
0: बहुत
1: गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला,
1: मौका
0: और
1: मिला।
0: फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी, और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो
1: वाह।
0: प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो,
1: हाँ,
0: मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिये
1: तुम हो, क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत कितनी
0: रुमानियत
1: गहरी गहरी
0: कितनी
1: तरीके
0: गहरी।
1: से।
0: तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: उसके
1: कुमकुम,
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर। जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो
0: हाँ
1: बहुत ही
0: हाँ
1: खूबसूरत तरीके से
0: तो
1: प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है।
1: जी, और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहां रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा,
1: जी
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में।
1: जी,
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के
1: जी,
0: लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे,
1: किस बात पे।
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे।
1: जी
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए।
1: जी,
0: प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं,
1: जी,
0: वो वहीं खड़े रहते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम
1: जी,
0: था,
1: जी,
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया।
1: जी
0: वो भी ऑडियंस में थे।
1: जी, और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप।
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जामबू, जामबू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जामुन,
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद, हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा
1: हाँ, तो
0: आपको।
1: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए, ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
0: अच्छा,
1: मजबूत है
0: क्या बात है।
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया है।
1: हाँ
0: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ
0: जी?
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
0: जी, बिल्कुल,
1: लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में।
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई, जब माँ आपको ऐसा कहा करती
1: हाँ
0: थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
0: जी
1: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
0: हाँ
1: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए,
0: जी
1: मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
0: जी जी
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
0: आपकी
1: होता है,
0: डेस्टिनी
1: आपके
0: में।
1: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
0: अच्छा
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
0: जी
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया
1: मकसद मिल गया,
0: जी।
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
0: बिल्कुल
1: तो जब गुरु बनते हैं ना, तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और
0: बिल्कुल
1: आपका जीवन बदल जाता
0: बदल
1: है।
0: जाता है।

0: सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं, क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी जैसे पेपर आ गया, कोई भी सफेद रंग का कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन।

0: जब भी उनको समय मिला कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
1: ड्राइंग पर
0: ड्राइंग करते
1: तो
0: रहो।
1: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
0: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख
0: हाँ,
1: पाते है
0: हाँ,
1: ना, वो
0: जी
1: गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
0: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है,
1: अनंत है।
0: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग,
0: ऑयल पेंटिंग, जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध
1: बंद
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं जी।
0: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते
0: हाँ
1: हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर
0: वही, तो वो
1: निर्भर
0: कल्पना
1: करता है।
0: शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको
1: आर्ट?
0: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहां पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: दी, बहुत बड़ी बात। आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
0: नहीं,
1: अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है।
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप
1: जो
0: है वो
1: हुनर
0: कम हो
1: है।
0: जाएगा, तो
1: हाँ।
0: इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: वो
1: जी
0: वैसे ही रहता है वहां पर।
1: जी
0: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे
1: जी
0: हैं और
1: जी
0: आसमान की बात कर
1: बात
0: रहे
1: कर
0: हैं।
1: रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी,
1: लोगों के पास। जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए। तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे, और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का, सभी तरह के आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था, और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा बिया है,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार

0: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब
1: जी, तो
0: जी।
1: बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई
0: वो परिवार है और सबके नाम है,
1: जी। जैसे
0: जैसे जिंजर है, जैसे कालू
1: अच्छा
0: है ना, जैसे ब्राउनी है,
1: हाँ,
0: ब्लैकी
1: उनको
0: है,
1: पता ही उनके नाम है।
0: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं, अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिन टिन है तो दूसरा है चिन चिन, जैसे चुन चुन भी है, सो किटकैट भी है,
1: अच्छा,
0: सो
1: ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती
0: हाँ
1: है।
0: हाँ मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है कि अब
1: हाँ
0: बहुत हो गया।
1: जी, कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
0: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
1: हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल
0: पूरा पूरा
1: है
0: जंगल है, और
1: जी।
0: बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूं।
1: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत
0: जरूर
1: भर दे रे
0: सुनवाइए,
1: झोली।
0: जरूर सुनवाइए।

0: और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल वो
1: जी
0: क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को, अपने पिता के बारे में और अपने बारे में?
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है

0: नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट कशिका अग्रवाल,
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी मोनिका कुमार। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आज के सवाल के साथ। और हमारा आज का सवाल है, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया गया है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना है आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज की अपलोडेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में देना होगा इस सवाल का सही जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे कार्यक्रम के एंड में।
0: मोनिका, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, पूछिए पूछिए।
0: मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसे आप किसी को दें, आपके पास वो कम भी ना हो और उसे किसी की जान बच जाए, तो क्या आप उसे देने में देर करेंगी?
1: बिल्कुल नहीं, अगर किसी की मदद हो सकती है तो मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो देने से कम भी नहीं होती और किसी की जिंदगी भी बच सकती है?
0: यही तो बात है, मैं बात कर रही हूँ रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन की। और आज 14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है।
1: वाह, सच में रक्तदान ऐसा दान है जिसकी कोई विकल्प नहीं है। पैसा, कपड़े या खाना तो हम सब बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन रक्त केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है।
0: बिल्कुल, दरअसल विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करना है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए आगे आते हैं, और साथ ही लोगों को नियमित रक्तदान के लिए जागरूक करना भी इसका उद्देश्य है।
1: कशिका, अक्सर लोग रक्तदान को लेकर डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।
0: हाँ मोनिका, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित तरीके से रक्तदान कर सकता है। शरीर कुछ ही समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है।
1: और सोचिए, आप एक यूनिट रक्त कई लोगों के काम आ सकता है। दुर्घटना के शिकार मरीज, बड़ी सर्जरी करने वाले लोग, थैलीसीमिया के मरीज या कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए रक्त की किसी वरदान से कम नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा मोनिका, कई बार अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण मरीजों के परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अगर अधिक से अधिक लोग नियमित रूप से रक्तदान करें तो ये समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
1: और दोस्तों, रक्तदान सिर्फ किसी की मदद नहीं करता, बल्कि ये हमें एक अलग तरह की संतुष्टि भी देता है। ये एहसास कि आपकी वजह से किसी का परिवार मुस्कुरा रहा है, किसी की जिंदगी बची है, इससे बड़ा सुख शायद ही कोई हो।
0: बिल्कुल, और आज के दिन हम उन सभी रक्तदाताओं को दिल से सलाम करते हैं जिन्होंने अपने छोटे से प्रयास से अनगिनत लोगों को जीवन का दूसरा मौका दिया है।
1: तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार रक्तदान करने की योग्य हैं, तो जरूर आगे आइए। हो सकता है आपका एक फैसला किसी के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाए।
0: साथियों, याद रखिए, रक्तदान केवल रक्त नहीं बल्कि जीवन, आशा और मुस्कान का दान है।
1: दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजा संक्रांति की। इसे ओडिशा में राजा पर्व या रजो पर्व के नाम से जाना जाता है। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लोक पर्वों में से एक है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष जून महीने में मनाया जाता है, जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है। ये उत्सव वर्षा ऋतु के आगमन, धरती की उर्वरता तथा नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है।
5: दोस्तों ओडिशा के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा की सांस्कृतिक परंपराओं में इस पर्व का विशेष स्थान है और इसे बड़े उत्साह, आनंद तथा श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। राजस्व शब्द संस्कृत में रज से बना है, जिसका अर्थ मानसिक धर्म या राजस्व वाला अवस्था होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों धरती माता राजस्व वाला होती है और सृजन की नई शक्ति प्राप्त करती है। इसीलिए इस अवधि में भूमि को विश्राम दिया जाता है, खेती की जुताई खुदाई तथा अन्य कृषि कार्य नहीं किए जाते। ये परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान और उसकी संरक्षण भावना को दर्शाती है। लोगों का विश्वास है कि धरती माता के विश्राम के बाद वर्षा ऋतु में फसलें अधिक अच्छी होती हैं और कृषि कार्यों में सफलता मिलती है।
2: साथियों राजा संक्रांति का उत्सव मुख्य रूप से 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन यानी पहली रज, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति या रजत संक्रांति होता है और तीसरा दिन भूदहा के नाम से जाना जाता है। कई स्थानों पर चौथे दिन वसुमती स्नान मनाया जाता है, जिसमें धरती माता का प्रतीकात्मक स्नान कराया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है।
5: दोस्तों इस पर्व के दौरान लड़कियां और महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। गांव और शहरों में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं, जिन पर बच्चे, युवतियां और महिला झूला झूलकर आनंद लेती हैं। लोकगीत, पारंपरिक नृत्य और सामूहिक उत्साह इस पर्व की विशेष पहचान है। इन दिनों महिलाओं को घरेलू कार्यों से भी कुछ राहत दी जाती है, जिससे वे उत्सव का आनंद ले सकें।
2: और साथ ही आपको बता दें, राजा संक्रांति के अवसर पर अनेक पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, विशेष रूप से पोड़ा पीठा, चकुली पीठा, मंडा पीठा और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ लोगों के बीच लोकप्रिय होती हैं। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं और मिलकर उत्सव मनाते हैं।
5: ये पर्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध का प्रतीक भी है। ये हमें सिखाता है कि धरती और नारी दोनों ही सृजन के आधार है और उनका सम्मान करना आवश्यक है। राजा संक्रांति पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं और नारी सम्मान का सुंदर संदेश देती है। यही कारण है कि ये पर्व ओडिशा की पहचान और गौरव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
2: दोस्तों आप सभी को राजा संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज में बस इतना ही।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
6: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट कुछ खास है आज। आइए आपको सुनवाते एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब समय है हमारे खास सेगमेंट का। जैसा कि आप जानते हैं, आज दिन है रविवार और आज के दिन हम लाते हैं सेगमेंट सिने एक्सप्रेस, जिसका हम शुरू करेंगे एपिसोड नंबर 31। पर उससे पहले एपिसोड नंबर 30 यानी 30 में पूछे गए, जानते हैं पूछे गए सवालों के सही जवाब।
1: दोस्तों, एपिसोड नंबर 30 में हमने आपसे पहला सवाल किया था कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है, और हमने आपको गीत सुनवाया था हम तुमको निगाहों में इस तरह बसा लेंगे, और इसका सही आंसर था गर्ल।
0: दोस्तों, अगला गीत आपने सुना था तुम दिल की धड़कन में, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये गीत किन गायक कलाकार द्वारा गाया गया है, और इसका सही जवाब है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक।
1: दोस्तों, अगला सवाल हमने आपसे पूछा था वाह खुदा तुम ही हो, इसमें हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कब रिलीज हुई थी, और जिसका सही जवाब है 18 जुलाई 2008।
0: और एपिसोड नंबर 30 के अंत में आपने सुना था सॉन्ग छैया छैया, जिसमें आपसे पूछा गया था कि ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और इसका सही जवाब है शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा। इन सभी सवालों के सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं एलेक्स गोयल, तनुजा जी, अमित झेंगल, भास्कर ठाकुर और अक्ष सक्सेना। साथियों, शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 31, पहले सब सेगमेंट सितारों की बात से।
2: दोस्तों, अब समय है हमारे खास सेगमेंट सितारों की बात का। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई,
0: और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस अभिनेता की जिन्होंने अभिनय, एक्शन और डांस तीनों क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें दर्शक प्यार से मिथुन दा के नाम से जानते हैं।
2: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का नाम भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सफलता हासिल
3: की। सब आप हंस रहे हैं।
4: ये लाइफ बड़ी जालिम चीज है दोस्त, अभी पानी के लिए तरसा देती है।
0: और उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत साल 1976 में फिल्म मृग्या से हुई। ये उनकी पहली फिल्म थी, और खास बात दोस्तों ये है कि पहली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
5: गुजरे कल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था मैं, शेरा।
2: दोस्तों, किसी भी नए कलाकार के लिए इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती है, लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें 1980 के दशक में मिली। उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती आम दर्शकों के सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी फिल्मों में एक्शन था, भावनाएं थी, और सबसे बड़ा उनका अनोखा अंदाज। और फिर आई फिल्म जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, डिस्को डांसर।
5: अकेला क्या कर लूंगा मैं, जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा।
0: दोस्तों, डिस्को डांसर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। फिल्म के गाने और मिथुन दा का डांस स्टाइल युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रिय हुआ। भारत ही नहीं बल्कि रूस, सोवियत संघ और कई अन्य देशों में भी ये फिल्म बेहद सफल रही।
5: पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने, कोई शक।
2: ये संवाद और फिल्म का शीर्षक गीत आज भी लोगों की यादों में ताजा है। मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने खुद को किसी एक प्रकार के किरदार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक्शन फिल्म भी की, सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में भी, और गंभीर अभिनय वाली फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा दिखाई।
0: और उनकी चर्चित फिल्में हैं जैसे चंडाल, गुरु, प्रेम प्रतिज्ञा और प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्में शामिल हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती उन चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। ये उनकी अभिनय क्षमता और की प्रतिभा का प्रमाण है।
2: दोस्तों, 1980 और 1990 के दशक में मिथुन दा की फिल्मों का दर्शकों के बीच इतना क्रेज था कि उनकी कई फिल्में छोटे शहरों और कस्बों के सिनेमा घरों में महीनों तक चलती थी।
5: मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूँ कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है।
0: उन्हें भारतीय सिनेमा में डांसिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। उनके डांस मूव ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है।
2: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का करियर हमें ये सिखाता है कि प्रतिभा और मेहनत के बल पर किसी भी ऊंचाई को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक परफॉर्मर के रूप में भी भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी।
0: और आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो उनकी फिल्मों के दृश्य सामने आ जाते हैं तो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आती है और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। समय बीत जाए लेकिन लोगों के दिलों में उसकी जगह बनी रहे। तो दोस्तों आज के सितारों की बात में बस इतना ही।
1: दोस्तों आइए आपको सुनवाते हैं एपिसोड नंबर 31 का पहला गीत और इसमें आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है।

0: दोस्तों इस गीत में आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सिने एक्सप्रेस के दूसरे सब सेगमेंट फिल्मी पिटारा की ओर।
1: दोस्तों स्वागत है आपका आज के फिल्मी पिटारा में, जहां हम खोलते हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों का खजाना जिन्होंने सिनेमा के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज का सफर ले जाएगा हमें 80 के दशक की उस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां म्यूजिक की धुन पर पूरी दुनिया झूम उठती थी। जी हां, आज बात हो रही है मिथुन चक्रवर्ती की उस फिल्म की जिसने उन्हें रातों रात करोड़ों दिल की धड़कन बना दिया, डिस्को डांसर।
2: दोस्तों ये सिर्फ डांस और म्यूजिक की कहानी नहीं है, एक छोटे से लड़के के जीरो से हीरो का जुनून है। अनिल जो अपनी माँ के साथ गलियों में गाना गाकर पेट पालता था।
3: दोस्तों मेरी ये जिंदगी गीतों की अमानत है, मैं किसी लिए पैदा हुआ हूँ।
2: एक दिन अमीर पीएन ओब्रॉय की हनक ने उसकी माँ को अपमानित किया, मजबूरन उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसा कि फिल्म का सबसे धांसू डायलॉग है, गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती और मेहनत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
1: वहीं अनिल अब बड़ा होकर जिमी बन चुका है, उसका हुनर डेविड ब्राउन ओमपुरी की नजरों में आता है और जिमी बन जाता है देश का सबसे बड़ा डिस्को स्टार।

0: दोस्तों लेकिन सफलता के साथ आती है साजिशें। ओबेरॉय का साया अब भी उसके पीछे है। एक तरफ जिमी की प्रेमिका रीता है तो दूसरी तरफ ओबेरॉय का षड्यंत्र। फिल्म में एक मोड़ तब आता है जब जिमी पूरी तरह टूट जाता है। उस समय का वह डायलॉग रोंगटे खड़े कर देता है।
1: स्टेज पर गिरने वाला कलाकार हारता नहीं और मजबूत होकर वापस आता है। जिमी का वह इमोशनल सफर, बप्पी लहरी का वो यादगार संगीत जिमी जिमी, इन गानों ने तो रूस और चीन तक में तहलका मचा दिया। लोग कहते हैं कि जब जिमी स्टेज पर वापस आता है तो वह डांस नहीं करता होता है, वह अपनी माँ के अपमान का बदला अपनी कला से ले रहा होता है।
0: और इस फिल्म के कुछ संवाद आज भी प्रेरणा देते हैं। जैसे जब जिमी को चुनौती दी जाती है तो वह कहता है, आज के बाद ये स्टेज सिर्फ

0: मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। दोस्तों, डिस्को डांसर एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है। ये हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो किस्मत की लकीरें भी आपको झुक कर सलाम करेंगी।
1: दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या बहुत साल पहले देखी थी तो इस वीकेंड इसे जरूर देखिए। ये आपको ना सिर्फ नचाएगी बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ने का जज्बा भी देगी।
0: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट फिल्मी पिटारा।
2: दोस्तों, अब सुनवाते हैं आपको एपिसोड नंबर 31 का दूसरा ये गीत। आपको इसमें बताना है कि ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है।

0: साथियों, इस गीत में आपको बताना है कि ये गीत किस गायक कलाकार द्वारा गाया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आके हमारे आखिरी सब सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस की ओर। दोस्तों, अब समय है हमारे सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस का, जहां हम लेकर आते हैं आने वाली फिल्मों की कुछ दिलचस्प खबरें। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जो आने वाले समय में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा। इम्तियाज अली अपनी फिल्मों में रिश्तों और भावनाओं को बेहद खूबसूरती से दिखाने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी 12 जून को वे एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आए हैं जो दो अलग अलग समय रेखाओं में चलती है। कहानी ऐसे दो लोगों की है जिनकी जिंदगी वक्त के अलग अलग मोड़ों पर एक दूसरे से जुड़ती और बिछड़ती रहती है।
1: दोस्तों, अब रुख करते हैं हॉरर दुनिया की ओर। हॉन्टेड 3D इकोस ऑफ द पास्ट के साथ निर्देशक विक्रम भट्ट अपनी चर्चित हॉरर फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो पुराने बंगले में रहने आता है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उस घर की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कुछ अनकहे रहस्य और डरावनी यादें कैद हैं। दोस्तों, ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज हो रही है, जिसमें आपको नजर आएंगे महाशय चक्रवर्ती और चेतना पांडे। हॉरर और सस्पेंस की शौकीनों के लिए ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं होगी।
0: दोस्तों, बात एक दमदार थ्रिलर की, गवर्नर द साइलेंट सेवियर, जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म भी 12 जून को रिलीज हो चुकी है। मनोज बाजपेयी का नाम ही अभिनय की गारंटी माना जाता है, और इस फिल्म में वे एक ऐसे किरदार को निभा रहे हैं जो सत्ता, षड्यंत्र और संकट के बीच खड़ा दिखाई देता है। ये एक हाई स्टेक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो एक गवर्नर के इर्द गिर्द घूमती है जो पर्दे के पीछे रहकर देश को बड़े संकट से बचाने की कोशिश करता है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसका युवक दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म है कॉकटेल 2, जिसके निर्देशक होमी अदजानिया एक बार फिर से हमें उस मस्ती और प्यारी सी दुनिया में ले जा रहे हैं। शाहिद कपूर, कृति सेन और रश्मिका मंदाना की तिगड़ी इस फिल्म को एक नया आयाम देगी। कहानी तीन अलग अलग विचारधाराओं वाले दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक इंटरनेशनल ट्रिप पर मिलते हैं और लाइफ के प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, ये फिल्म आपके सिनेमा घरों में 19 जून 2026 को रिलीज हो रही है।
0: दोस्तों, अगली फिल्म है पौराणिक प्रेरणा और आधुनिक सोच का संगम लेकर, हनुमान अंश। ये कहानी एक ऐसे युवा की है जो अपने भीतर छिपी असाधारण शक्ति और साहस को पहचानता है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में चंदन आनंद और दुबे निखिल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। हनुमान जी के आदेशों और मूल्यों से प्रेरित ये फिल्म मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी देने वाली है, और ये फिल्म आप सभी 20 जून 2026 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे।
1: और दोस्तों, आखिर में बात करते हैं वेलकम टू द जंगल की। अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी और परेश रावल जैसे कलाकारों से सजी ये मल्टी स्टार फिल्म निर्देशक अहमद खान लेकर आ रहे हैं। कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो एक रहस्यमय मिशन पर निकलते हैं, लेकिन हालात उन्हें घने जंगल के बीच ऐसी मुश्किलों में फंस देते हैं जहां हर कदम पर कॉमेडी, भ्रम और अराजकता उनका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हो रही है 26 जून 2026 को। फिल्म कॉमेडी और एडवेंचर का एक महामुकाबला, जहां ये सभी किरदार जंगल में फंसकर कॉमेडी के ऐसे पेच लड़ाएंगे कि जहां हंसते हंसते लोग लोटपोट हो जाएंगे। तो दोस्तों, थिएटर जाने का प्लान बनाइए और हमें बताइए कि इनमें से कौन सी फिल्म के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट बॉक्स ऑफिस बस।
2: दोस्तों, आइए आपको सुनवाते हैं एपिसोड नंबर 31 का ये तीसरा गीत। इसमें आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है।
3: आई आई या, सुकु, सुकु। आई आई या, करो।

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू।

0: सत्यु, इस गीत में आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। और अब समय है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का, और आज पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। हमारा सवाल था, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही जवाब है राज्य केरल।
1: और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी नंद कुमार ठाकुर, पुंजाजी नावेरकर, श्री कृष्ण वाठे, संजय ढींगिया, अनिल वी गोटके, गगन सिंह रावत, भाई रफत साहब, धर्मेंद्र छेपा, उत्तम सिंह, लाल मोहम्मद अंसारी, सुदर्शन शाह, सुनील पाठक, दिनेश कुमार वर्मा, नजमुल हुंडा, हीरामणि, जॉन डी कैस्ट्रो, दीपेश वर्मा, चौधरी राजवीर सिंह, रियासत हुसैन, तुलसी मस्कीन, लालगिरी गोस्वामी, अजीत कसाना, विट्ठल सुरोशे, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, जिशान, विजय सुलेरकर, शाहजी भोड़के, सुरेश खुराना, बीपी गौतम, संजय शाहू, अरविंद कुमार, विमल सक्सेना भारती, मोहम्मद सईद अब्बासी, आफताब अंसारी, उत्तम कुमार भगत, राम कुमार रिवार, फागुराम यादव, आर्यन राज, सुरेशे, मंजुल राठौर, सुरेश राठौर, भुवन प्रकाश, इरशाद अहमद, राधेश्याम पांडे, जगदीश धाकड़, दिग्दर्शन गोंडे, मसरूर हसन, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, सुरेश जायसवाल, रामशरण विश्वकर्मा, बब्बल मल्होत्रा, भेरूलाल वक्तारिया, देवशंकर तामूरिया, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजू मिगलानी, एम अफजाल ताज, रवि रस्तोगी, आकाश रस्तोगी, अमर सिंह, शकील अहमद इदरीसी, धीरज भाई रबारी, राजवीर सिंह यादव, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, गजानन येले दरियापुर, मोहम्मद जाइद, मुकेश कश्यप, देवशंकर तामूरिया, परवीन चौहान, मोहम्मद यासीन अंजन, अनोखे लाल, भगवत चौबे लाडला जी, विनोद मूड़त और लाल बाबू दीवाना। तो दोस्तों, ये सब आप दोस्त थे जिन्होंने दिए थे इस सवाल का सही जवाब।
0: और अब आप सुनेंगे इस सेगमेंट का आखिरी गीत, जिसमें आपको बताना है कि ये गीत जिस फिल्म से लिया गया है वे कब रिलीज हुई थी।

0: दोस्तों आप लोग सुन रहे थे एपिसोड नंबर 31 का ये अंतिम गीत। इसमें आपको बताना था ये गीत किस फिल्म से लिया गया है व ये कब रिलीज हुई थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इसके लिए आपको हमारा पता नोट करना होगा। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युवाणी अनुभाग, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड है 244901।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है patmila@rampur.gmail.com। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9410087876। अब समय है आपसे विदा लेने का। आपकी रेडियो साथी कशिका और
0: आपकी रेडियो साथी मोनिका कुमार
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार
0: नमस्कार।

अभी वह साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनन बारे सभी किसान साथियों को आपके भैया प्रवीण कुमार,
1: आपके भैया अखिलेश कुमार की
0: राम राम।
1: भैया सुनाओ प्रवीण भैया, काल चाल है, घर पर सब कुशल मंगल तो हैं?
0: ईश्वर की कृपा से हमारे तो सभी कुशल मंगल हैं। और आप अपने यहाँ के सुनाओ।
1: हाँ भैया, हमारे यहाँ भी सब कुशल मंगल हैं और स्वस्थ हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी किसान साथी हैं वो सब कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने सभी काम, चाहे वो खेती बाड़ी के हों या पशुपालन के हों, अन्य कोई काम हो, समय रहे तो अच्छी तरीका से कर रहे होंगे।
0: भैया देखो, आपने जो बात करी ना कि अपने जो रोजाना के काम है, चाहे वहां में खेती बाड़ी की बात करें चाहे पशुपालन की बात करें, तो देखो खेती बाड़ी में तो इस समय जो है धान की जो किसान भैया लगाई कर रहे हैं, वे लगाई कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ भैया ऐसे भी हैं जिन्होंने पौध डाली है, तो वे अपने पौध को काम निपटा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि भैया गर्मी को मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में हम अपनों बचाव तो करते हैं, संग संग हमें अपने जो छोटे बालक हैं उनके देखभाल करने हैं, साथ ही साथ जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने देखी होगी ना कि इन दिनों में आके दूध की भैया कमी ही जाती है।
1: हाँ भैया, काम कोई भी हो, चाहे खेतीबाड़ी का हो या पशुपालन का, काम तो हमें सभी करने हैं। और रही बात गर्मी की, तो अगर हम गर्मी से बचाव करते हुए सभी काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी खेती बाड़ी स्वस्थ रहेगी, और साथ ही जो हमारे पशु हैं ना वो भी स्वस्थ रहेंगे।
0: अब देखो गर्मियों में होता है कि हम तुम तो भैया पंखा चला रहे हैं, कूलर में बैठ जाते हैं, तो हमारे पशु का करें, पशु के लिए हमें जो कूलर की या पंखा की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए।
1: हाँ भैया, क्योंकि जैसे हमें और आपको गर्मी का एहसास होता है, वैसे ही जो हमारा पशु है उसे भी भैया गर्मी भी लगती है और ठंड भी लगती है।
0: और अगर कूलर की व्यवस्था ना ही पावे तो पंखा लागे हुए, तो हम उनके लिए किसान भाई को बता दे रहे हैं कि जो हमारे पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उन पर जो है टाट के कट्टा लटका दें, या छप्पर जो आता है ना छोटे छोटे जिन्हें हम छपरिया कहते हैं, उनको खिड़कियों पर अगर टांग दें और उन पर हम पानी छिड़कत रहा है, तो बाहर से लिखर के हवा जो जाएगी ना वो ठंडी जाती है और पशु को गर्मी कम लगती है।
1: हाँ भैया, बाई तरीका से जैसे अपने घर में कूलर लागे हुए होते हैं ना, तो ये पानी चलते रहे तो ठंडी हवा और पानी खत्म है, याद होगा हवा आते
0: भैया, इसी तरीके से एक तरह से कूलर को काम करेगा और जो प्राकृतिक रूप से होगा।
1: और साथ ही भैया पशुशाला की साफ सफाई को ध्यान देना बहुत ही जरूरी
0: है। देखो पशुशाला में इस समय आप देखो कि गर्मी पड़ी रही है, तो अगर गंदगी होगी तो भैया कई प्रकार के मच्छर और मक्खी जो है हमारे पशुओं को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: और भैया गर्मी के समय तो थोड़ी बहुत ही गंदगी अगर रह जाए ना, चाहे पशुशाला में हो चाहे अपने घर में हो, तो भैया वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है और बहुत बदबू सी आन निकले।
0: तो इसलिए हम तो किसान भाइयों से कहेंगे कि अगर पशुशाला में कहीं गड्ढे हैं तो उसे मिट्टी से पाट दें, और भैया किसी भी कीमत पे जो है गड्ढे ना होने दें। गोबर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम अगर पशुशाला से निकाल दलांगे तो ये समस्या ना रहेगी। साथ ही साथ जो पशु का मूत्र होता है ना, भाव को भैया बाहर कर दें तो अच्छा रहता है।
1: हाँ भैया, तो इस तरीके से हमारे किसान साथी पशुशाला की साफ सफाई को ध्यान रखें। साथ ही भैया अगर हम बात करें उनके चारे की, तो भैया जैसे गर्मी को मौसम है, हम तुम लोग रखोबो खानो पसंद ना करते हैं ना, खराब हो जाता है गर्मी में, ऐसी भैया पशु को जो है बासी जो है चारों कतई ना खवाएं।
0: हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम अगर हम चरई हमारी जो है या मक्का है जो बो रखी है हरी चारे के लिए, तो सुबह शाम काट के लाए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एकदम काट के लाएंगे ना तो भैया वो झुलस सी जाती है।
1: और भैया साथ ही जो उनकी सानी करते हैं ना, अगर एक समय उनकी जैसे हमने सुबह में सानी करी, तो भैया जितनी उनने खाई खा ली और ना खाई, तो अगर सानी को हम सानी करें तो जितो बचो वो वहां में चारो है बाको निकाल कर दे फेंक, बाको अपनी नांद को अच्छी तरीके से साफ सफाई करके फिर संध्या के समय नौ चारो उनके ताई धारे।
0: इसके साथ साथ जो हमारे किसान भैया संतुलित पशु आहार देने हैं पशु उनको वो जरूर दें, साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर जो आते हैं बाको इस्तेमाल आहार में जरूर करें। बात से क्या होता है कि हमारे पशुओं को संपूर्ण विकास होता है, क्योंकि देखने में आती है कि हमारे किसान भाई करत का है कि खाली दलिया खवा रहे तो दलिया खवा रहे हैं, भैया हरू चारो खवा रहे हैं तो हरू चारो खवा रहे हैं, तो वो सभी चीजें उनको मिक्स करके खवाने तभी जो है ज्यादा अच्छे रहते हैं।
1: हाँ भैया, जैसे हम और आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हर तरह का विटामिन और प्रोटीन लेते हैं, उसी तरह हमें अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना है और उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेना है, तो उन्हें हर तरह के जो है मिनरल मिक्सचर, संतुलित पशु आहार, ये सब चीजें देना बहुत ही जरूरी है।
0: इसके साथ साथ हमारे पशुओं को जो है टीकाकरण भी समय समय पर कराना बहुत ही जरूरी होता है, और इस समय देखे रहो कि जो गर्मी का मौसम होता है ना और बरसात से पहले जो है हमारे पशुओं को विभिन्न प्रकार के टीके लगते हैं, पशु स्वास्थ्य केंद्र पर जाके भैया संपर्क कर लें और टीका जरूर लगवावें।
1: हाँ भैया, ना तो हमारे जो सरकारी पशु चिकित्सालय के

0: है ना, वो भैया ऐसे मौसम में जो है पहले ही गांव-गांव जाके प्रचार भी करते हैं और घर घर जाके जो है टीकाकरण पशुओं का करते हैं।
1: हाँ, इसमें खुरपका, मुंहपका है, गलघोटू है, लंगड़िया बुखार है, इनके टीका जो है लगते हैं और हमारे किसान भैया लगवा लें तो ज्यादा बेहतर रहते हैं। बस इस बात को ध्यान रखें, अगर पशु गाभिन है तो सलाह जरूर लें डॉक्टर से, उसके बाद ही पशुओं को टीकाकरण करावें।
0: और भैया इसके बाद भी अगर पशु का स्वास्थ्य खराब दिखाई दे तो नजदीकी अपने पशु चिकित्सालय में जाएं और चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसका जो है उपचार कराएं।
1: इसके साथ साथ पशुओं को डीवर्मिंग जरूर करानी चाहिए। इसमें होता है कि पशुओं को 5-6 महीने में जो कीड़ों की दवा है उसको जरूर देना चाहिए। उससे होता है कि हमें तो लगता है पशु सही है, लेकिन हम पशुओं को तो खवाते हैं, लेकिन पशु जो है कमजोर होता है, पशु जो है हष्ट पुष्ट ना रहता है, दूध बहुत कम ही जाता है, कमजोर लगता है और होता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसकी वजह से ये समस्या आती है। लेकिन अगर पेट के कीड़ों की दवा 5-6 महीने में डॉक्टर की सलाह से हमारे किसान भैया देते रहते हैं तो ये समस्या नहीं होती है।
0: हाँ भैया, वो तो सलाह हमारे तुम्हारे लिए वो है कि हम तुम जो है अपने बालकन को जो है हर 6 महीना जो है कीड़न की दवा खिलाते हैं।
1: इसके बाद बात आती है कि भैया जो दूध हम दूर हैं वो भी स्वच्छ हो, अच्छा हो, और तभी हमें उससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। पशुशाला की साफ सफाई बढ़िया तरीके से रखने हैं, साथ ही साथ जो पशु है उसको सुबह शाम अगर हम नहलाएंगे तो गर्मी भी कम लगेगी और पशु हमारा साफ सुथरा भी दिखेगा।
0: हाँ भैया, जैसे आपने नहलाने की बात करी, उसमें भैया पानी भी पशु को इस समय गर्मी के मौसम में दिन में कम से कम 3-4 बार जो है शुद्ध व ताजा पानी पिलाना बहुत ही जरूरी।
1: अब अगर हम अपनी बात करें तो देखो, जब देखो तो भैया इधर से घूम का है तो पानी पी लो, उधर से घूम का है तो पानी पी लो, हैं खेत पर जा रहे हैं तो बोतल लेके जा रहे हैं संग में, ऐसे ही हमें पशुओं को भी जब इतना आए तो भैया बाल्टी रख दी, उतर आए तो बाल्टी रख दी, जब इंतजार ना करें कि हम भैया इतने बजे पिवाते हैं इतने ही बजे पिवाएंगे, ऐसा ना करना चाहिए। जब भी समय मिले आपको या इधर उधर घूम के जा रहे हो तो बाल्टी अगर बाकी सामने रख देंगे तो अगर भाई प्यास लगी होगी तो वो थोड़ा 1-2 घूंट पी लेगा।
0: हाँ भैया, क्योंकि बेजवान जानवर है वो, हम तुमसे मांगने को तो है ना कि पानी चाहिए।
1: सही बात है भैया, और साफ सफाई रखें, साथ ही साथ दूध दूहने समय खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहने, हाथ साफ रखें और नाखून ज्यादा बड़े ना रखें, और जिससे कि जो दूध लेने आ रहा है ना उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो फिर आपसे दूध लगातार लेता रहता है। अगर आप गंदे बर्तन रख रहे हैं, गंदे खुद रह रहे हैं, पशु भी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो जो दूध हमारा ले रहा है ना तो वो मन में सोचता है कि इनके पशु जो ज्यादा बढ़िया ना रहते हैं, साफ सुथरे ना रहते हैं, तो उसका प्रभाव उसके दिमाग पर पड़ता है, वो हो सकता है कि आगे चल के आपसे दूध ना ले। और अगर आप साफ सफाई बढ़िया रख रहे हो तो वो 2-4 जगह कहता भी है कि भैया उनके पशु बहुत अच्छे हैं, साफ सुथरे रहते हैं, पशुशाला साफ रहती है, तो इसका प्रभाव जो है पड़ता है और इसका प्रभाव हमारी आमदनी पे भी पड़ता है।
0: हाँ भैया, जब हमारी पशुशाला साफ होगी, सुंदर होगी, स्वच्छ होगी तो हमें उससे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन मिलेगा और हमें वहाँ काम करने का और हमारे पास जो ग्राहक आ रहे हैं उनका भी भैया मन लगेगा और उनका मन संतुष्ट रहेगा कि हम जो है शुद्ध ताजा दूध ले रहे हैं।
1: और भैया देखो, होता है ना कि मान लो अगर काऊ ने आपको दूध बीच में छोड़ दो, 1 किलो अगर कोई दूध लेके जा रहा है तो अगर बाना ले जाना छोड़ दो तो वो आपको एक दूध अगर हम 60 रुपए किलो बेच रहे हैं तो वे 60 रुपए रोज को हमें नुकसान ही को, क्योंकि वह दूध हम कहीं बेच ना सकते हाथ के हाथ और ना ही हम बाको बाद में सुरक्षित करके रख सकते हैं कि बाद में बेच सकें, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है प्रयास करें कि भैया दूध हाथ के हाथ बिकता रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता है, और अगर हम भाई दूध दूधिया को देते हैं तो भैया आधे पैसा मिलते हैं।
0: हाँ भैया,
1: तो इन बातों का हमारे किसान भैया ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी में दुधारू पशुओं की देखभाल करना बहुत ही जरूरी है, दूध की मांग ज्यादा हो जाती है और साथ ही साथ दूध जो है हमारा वो जानवर जो है कम देते हैं, इसलिए समय समय पर उनको ध्यान रखें। ये सब बातें हमने जो बताई हैं इन पर अगर विचार करेंगे तो हमें उम्मीद है कि वे अपने पशु से ज्यादा दूध उत्पादन ले सकेंगे।
0: हाँ भैया, तो या तो बात रही गर्मी के मौसम में दुधारू पशु उनकी देखभाल की, और भैया अगर हम बात करें खेतीबाड़ी की, जैसे आपने कही कि जा समय खेतीबाड़ी में धान की रोपाई चल रही है,
1: भैया धान की रोपाई के साथ साथ जो पौध है कुछ भैया डाल भी रहे हैं, कुछ भैया डाल भी दिए, वो भी देखभाल चल रही है, लेकिन धान लगाते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से हम खेत तैयार करें, ये बहुत सारी बातें हैं और हमारे किसान भैया इनके मन में भी घूम रही होंगी।
0: तो क्यों ना भैया जाई संबंध में अपने किसान साथियों के लिए कहो तो एक भेंट वार्ता सुनवा दी जाए।
1: हाँ भैया जरूर।
0: भैया भेंटवार्ता को विषय है धान की रुपाई से पूर्व खेत की तैयारी। जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं आप हैं डॉक्टर अशोक चौबे, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा जी, तो आप सुनो और हमारे किसान साथी भी सुने। जय बातचीत।
2: किसान साथियों, खरीफ मौसम की जो मुख्य फसल है वो धान है और लगभग

0: भाइयों, जब हम धान की बात करते हैं तो सबसे पहले मिट्टी रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी किस तरह से करें, तो पहली चीज आती है मिट्टी, हमारी मृदा कैसी है,
1: कैसी है। हाँ।
0: तो मोटे तौर पर अगर आप धान की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी आपकी या तो मटियार हो या मटियार दोमट हो, ये इसकी प्राथमिकता है। लेकिन ये मिट्टी हमारे हाथ में नहीं हो सकता है, आपके पास बलुई दोमट हो, दोमट हो, तो उसमें भी आप खेती करते हैं। लेकिन धान जो है वो ज्यादा पानी चाहने वाली फसल है
1: जी।
0: तो हमको मिट्टी भी वैसी चाहिए जिसमें पानी लंबे समय तक संचित रह सके। तो इस तरह की मिट्टी का चयन हमको करनी चाहिए। अगर मटियार है और मटियार दोमट है तो सबसे बढ़िया, और नहीं है तो आप बलुई दोमट, दोमट में भी धान की खेती कर सकते हैं। पानी की सुविधा आपके पास होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, पानी का जिक्र किया है तो धान की जब रोपाई करते हैं तो खेत में पानी भरा होना चाहिए। और सामान्य रूप से देखा जाए तो जो किसान जो ऐसे सिंचाई करते हैं या रोपाई करते हैं तो एक तरफ ऊंचा खेत होता है, एक तरफ नीचा होता है, पूरा खेत भरते हैं तो एक तरफ पानी ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है, तो ऐसे में दिक्कत आती है। तो समतलीकरण कितना जरूरी है खेत का?
0: देखिए, अगर धान से आपको पैदावार लेनी है तो खेत का समतल होना अति आवश्यक है। इसलिए कि मोटे तौर पर दो थ्योरी चलती है दिमाग में कि धान के खेत में 4-5 सेंटीमीटर पानी सदैव भरा रहना चाहिए। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, नमी होनी चाहिए, लेकिन 4-5 सेंटीमीटर पानी तब भरा रहेगा जब खेत आपका समतल हो। तो ये समतलीकरण बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज और निवेदन करूंगा किसान भाइयों से कि जैसे ही आपका गेहूं कटता है या भूसा बनवा लेते हैं तो गर्मी की जुताई एक आप मिट्टी पलटने वाले हल से जरूर करवा दें।
1: अच्छा,
0: हैरो से करा दीजिए या अगर हल से कराते हैं मिट्टी पलटने वाली से, तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जो कीट हैं उनके अंडे, प्यूपा वगैरह जो मिट्टी में है वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। बीमारियों के जो उसके बीजाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार के भी जो बीज हैं वो भी थोड़ी धूप से और उससे गहराई में जाने से दब करके उनकी भी आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो एक तो मिट्टी पलटने हल वाले हल से जुताई करा दें, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको कार्बनिक खादों की तरफ जाना ही जाना है। तो कार्बनिक खादों की तरफ जाना है तो मोटे तौर पर हम 100 से 125 क्विंटल चाहते हैं कि एक हेक्टेयर में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद आप डाल दें। तो उपलब्धता है तो आप डालिए, बहुत अच्छी बात। और अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि
1: तो ये जरूर प्रयास करें। डॉक्टर साहब, पोषक तत्वों की आपने बात की है तो चूंकि गोबर खाद का भी जिक्र किया है, जानवरों की या पशुओं की संख्या अब गाँव में कम हो गई है, गोबर भी कम होता है, फसलें साल में 2 या 3 या 4 तक लेते हैं तो पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, गोबर की खाद नहीं मिल पाती है, तो और कौन कौन से इसके परिपूरक हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं?
0: अब देखिए, जैसे कि इसी में हम चल रहे थे तो मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज और आपको जोड़ दूं कि जो यहाँ खेत की तैयारी की बात हो रही
1: है
0: कि जब आप ये सब कर लेते हैं, खेत का समतलीकरण कर लिए, रोपाई से पूर्व मेड़बंदी कर लिए, तो अगर एक सप्ताह पहले आप सिंचाई कर देते हैं तो उससे फायदा ये हो जाता है कि काफी हद तक खरपतवार निकल आते हैं, और जब रोपाई के लिए आप पानी भर के जुताई करते हैं तो सारे नष्ट हो जाते हैं, तो खरपतवार को भी आप नियंत्रित कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खरपतवार भी नियंत्रित हो जाएंगे।
0: और जहाँ तक आपकी वो है कि अगर गोबर की खाद नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमने अभी हरी खाद की चर्चा की कि हमारे पास पूरा अप्रैल मध्य से लेकर के और जून तक का 2.5 महीने का समय है। इस 2.5 महीने में सनई या ढांचा की आप बुआई कर सकते हैं, और 30 दिन से लेकर 45 दिन के बीच में कभी भी आप इसको पलट दीजिए, जैसे भी आपकी रोपने का समय होता है। क्योंकि अब जहां हम लोग हैं, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो हम जुलाई से रोपाई शुरू करते हैं, तो इतना हमारे पास काफी समय बचा हुआ है। इसके अलावा आप जैविक कंपोस्ट खाद को ले सकते हैं, केंचुए की खाद है, जितनी भी हमारी खादें हैं उनको ले सकते हैं। और जैविक उर्वरकों का भी इसमें आप समावेश कर सकते हैं, जैसे एजो स्पाइरिलम है, एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, तो इनको अभी अगर आप समावेश कर लें तो आप जैविक खाद, जैविक उर्वरक और उर्वरकों का एक इंटीग्रेशन बना लें, समन्वित कर लें, तो लागत भी कम होगी, भूमि की उर्वरा शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहेगी, और निश्चित तौर पर उत्पादन में हमको ज्यादा बेहतर संभावना दिखेगी।
1: जी। डॉक्टर साहब, जब फसल बड़ी हो जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां, कीड़े मकोड़े लगते हैं, रोपाई से पहले क्या क्या सावधानी बरतें ताकि ये कीड़े मकोड़े कम हो सके, बीमारियां भी कुछ कम लग सके, कहाँ कहाँ पर देखने की आवश्यकता है?
0: रोपाई से पूर्व हमको सिर्फ मुझे लगता है कि

0: चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है।
1: हाँ।
0: एक तो जो मृदा से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उनको नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: बुवाई से पूर्व थोड़ा सा किसान भाई इसका ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है।
1: अच्छा।
0: इसको आप 1 कट्टा सड़ी हुई खाद, चाहे कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद हो, सड़ी होनी चाहिए
1: जी।
0: उसमें आप 1 सप्ताह पूर्व इसको मिला दें, नमी का ध्यान रखें, बीच में आप 1-2 बार उसको पलट दीजिए और रोपाई से पूर्व खेत में इसको बराबर से आप बखेर करके जुताई करके फिर आप अपनी सारी प्रक्रिया जैसे आप करते हैं करते रहिए, तो मृदा जनित जितनी भी बीमारियां हैं जो बाद में आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और उसको नियंत्रण के लिए रसायन भी ज्यादा लगते हैं
1: जी जी।
0: वो लागत भी कम होगी, रसायनों का दुष्प्रभाव भी नहीं आएगा और उनको आप नियंत्रित भी सस्ते दामों में कर लेंगे
1: जी।
0: और जहां तक कीड़े की बात है तो जो मैंने आपको शुरू में निवेदन किया था कि गर्मी की जुताई
1: बहुत जरूरी है।
0: हाँ, अगर आप जैविक विधि में आते हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि गर्मी की जुताई कीजिए। अगर आपने 2 जुताई कर दी है तो काफी हद तक अंडे बच्चे मिल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, मेड़ों की अच्छी तरह से काट छाट करके, जो क्योंकि अब शेल्टर तो वही बचता है, खेत की जुताई हो गई तो मेड़ बचते हैं, उनकी भी अगर आपने कटाई छटाई कर दी है तो अंडे बच्चे उनके वहां समाप्त हो जाते हैं, तो ये हो जाता है। और जब हम खेत में पानी भर के जुताई करते हैं जिसको कादर कहते हैं तो उस समय भी जो थोड़े बहुत बचे रहते हैं समाप्त हो जाते हैं, बावजूद इसके आते हैं तो हमारे पास जैविक रसायन भी हैं और कृषि रसायन भी उपलब्ध हैं। उस समय के हिसाब से आप वैज्ञानिक से जो उसकी जानकार हैं सलाह लेकर के आप उसको छिड़काव करके उसे नियंत्रित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, रोपाई के दौरान क्या क्या सावधानी बहुत जरूरी है ताकि फसल अच्छी हो सके और उत्पादन अच्छा मिल सके?
0: हाँ, ये चीजें तो किसान भाई अगर आप खेत की तैयारी कर लिए हैं तो रोपने जा रहे हैं, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान अवश्य रखिए। पहली चीज कि आपको DAP यानी फास्फोरस जो देते हैं, पोटास आप देते हैं, पूरी की पूरी उर्वरक जो आपको डालनी जो अनुमोदित है, क्योंकि इसका अनुमोदन अलग अलग है। आप हरी खाद लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। ज्यादा उत्पादन देने वाली मध्यम और देर वाली प्रजातियां हैं तो उसमें आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस, 60 पोटास की आवश्यकता होती है। बासमती की ज्यादा उत्पादन देने वाली है सुगंधित की या शीघ्र पकने वाली है तो 120-50-60 किलोग्राम फास्फोरस या 50-60 पोटास की आवश्यकता होगी। तो ये अपने खेत की बेहतर है कि मिट्टी की जांच करा करके
1: जी।
0: और जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार संतुलित उर्वरक का आप प्रयोग कीजिए। लेकिन कोई भी उर्वरक डालिए तो पोटास और फास्फोरस को मिट्टी में डालिए, जिंक को भी जहां तक संभव है मिट्टी में डालिए, लेकिन फास्फेटिक उर्वरकों के साथ मिला करके नहीं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि दोनों के रिएक्शन से दोनों इनएक्टिव हो जाते हैं, इस रूप में बदल जाते हैं कि पौधे के लिए दोनों बेकार हो जाते हैं। तो आप पहले आप एक दिन पहले चाहे उसी दिन डाल दीजिए, बाद में जिंक को डालिए या जिंक को पहले डाल करके पोटास और DAP को बाद में डाल दीजिए, तो इसको डाल दीजिए। यूरिया आप चाहें तो 1/4 आप इस समय डाल दें, न डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 1 सप्ताह बाद से आप शुरू कर सकते हैं।
1: और क्या सावधानी बरतें रोपाई?
0: दूसरी चीज है इसमें क्या करें कि किसान भाई जो सबसे बड़ी गलती होती है, थोड़ी हाथ में भी नहीं होती है, कि हमको हमेशा प्रयास करना है कि हमारी पौध जो है वो 20 से 25 दिन की हो। अगर जमीन ऊसर नहीं है तो 20 से 25 दिन की पौध हो, इसी की ही रोपाई हमको कर देनी है। और दूसरी सावधानी क्या रखनी है कि 1 जगह 2 से 3 धान लगाएं। हमारे पूरे क्षेत्र में एक प्रचलन है कि हम 1 धान लगाते हैं, हाइब्रिड में चल जाता है, बाकी प्रजातियों में उत्पादन कम हो जाता है। तीसरी चीज किसान भाई सावधानी ये रखें कि एक पौधों की संख्या और पौध की संख्या कैसे नियंत्रित करेंगे, 1 वर्ग मीटर में, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में 35 से 40 पौधे जगह धान आप लगा में, जो मध्यम से देर में पकने वाली प्रजातियां हैं और जो अर्ली या हाइब्रिड है, और जो जल्दी पकने वाली हैं या बासमती हैं उनका आप 45 से 50 जगह धान 1 वर्ग मीटर में लगा देते हैं। 1-2 पौध कम ज्यादा हो गई तो नहीं, लेकिन तब पर्याप्त संख्या होगी और इसे आप उत्पादन अच्छा ले सकते हैं।
1: डॉक्टर अशोक कुमार चौबे जी, आपने बेहतर जानकारी दी कि धान की रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी में क्या क्या सावधानी बरतनी है और यदि हम इस समय से कर लेते हैं तो अपने धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कार्यक्रम आने के लिए।
2: धान की रोपाई से पूर्व खेत की तैयारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे

0: डॉक्टर अशोक चौबे आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। तो किसान साथियों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि हमें धान की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है।
1: और भैया हम ये भी समझ गए हैं कि हमारे किसान साथी ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से सुनी होगी और जानकारी को हमारे सभी किसान साथी जो धान की रोपाई करना चाहते हैं पूरा लाभ उठाएंगे।
0: और भैया अगर लाभ उठाएंगे ना बताई गई बातों को, तो हमें उम्मीद ही ना पूर्व विश्वास है कि उनको जो उत्पादन है वो बढ़ेगा।
1: हाँ भैया, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ होगा ही।
0: और भैया जब बात लाभ की आती है ना तो मन करता है मनोरंजन को।
1: हाँ, क्योंकि तो भैया जो हमारे कार्यक्रम को समय है वो शाम को समय है, जालम समय लगभग हमारे सभी किसान साथी अपने खेती बाड़ी के कामन को निपटा के घर पे बैठे आराम कर रहे होते हैं या खानो खा रहे होते हैं। ऐसे में भैया गानों बजान हो जाए तो सोने पर सुहागा वाली बात है।
0: तो भैया देखो, हम आपको और अपने किसान साथी को सुनवाएंगे एक प्यारो सो लोकगीत, लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
6: दूसरा कोई मैच है क्या?
7: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
8: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
9: पर बैंकिंग में नहीं।
10: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
9: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी हमारे किसान साथी ने सुनो जो लोकगीत, और भैया हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकगीत सुन के हमारे किसान साथी को मनोरंजन है वो भरपूर, और जो उनकी पूरे दिन की थकान है वो है होगी दूर।
1: और हम अपने किसान साथियों को बता दें जो लोकगीत गाओ हो कनक सक्सेना ने। और भैया देखो मनोरंजन तो ही हो, अब खेती बाड़ी की बात कर ले जाए, और हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो अच्छी खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत ही अनुभवी हैं और अपने परिवार को भी अच्छी तरीके से पालन करना पड़ता है, तभी जो है वे अच्छे सफल कृषक माने जाते हैं। और इसी क्रम में आज हम अपने किसान साथियों को एक अनुभवी कृषक से करी गई बातचीत सुनवाई दे रहे हैं। भैया जानकारी दे रहे हैं श्री मनोज कुमार शर्मा, और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया जसविंदर। और जो मनोज कुमार शर्मा है ग्राम रतुपुर ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद जिला बरेली के।
2: आपका परिचय? मनोज कुमार शर्मा। आप का गांव कौन सा लगता है मनोज कुमार जी?
3: मेरा गांव ये राजूपुर है, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में।
2: बड़ी अच्छी बात है, आज आपसे बात हो रही है, आपके यहाँ हम आए हुए हैं। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मनोज कुमार जी कि आपके यहाँ क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें ज्यादातर उगाई जाती हैं?
3: हमारे क्षेत्र में आलू है, गेहूं है, धान है, मक्का है, मेंथा है जिसे शिवाली कहते हैं, ये सारी फसलें इधर अच्छी तरह से होती है।
2: अभी अपने खेत में कौन कौन सी फसलें खड़ी हुई हैं?
3: इस समय पे तो हमारी तरफ जो है मक्का ज्यादा हो रही है।
2: अच्छा, मक्का की फसल हमने देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर किसान ज्यादा करते हैं, और मक्का से उत्पादन भी अच्छा मिलता होगा तभी किसान साथी मक्का की फसल लेते हैं। आपने बताया कि आलू की फसल होती है, इसके अलावा धान गेहूं की फसल भी होती है, तो मक्का के बाद क्या सीधी धान की रोपाई होगी?
3: हाँ, धान ही होगा।
2: धान के लिए तो
3: मैं धान की भेड़ पर भी गई है।
2: बड़ी अच्छी बात है कि किसान साथियों ने धान की तैयारी कर ली है। और मनोज कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे क्या करते हैं आप?
3: मैं अध्यापक हूँ।
2: शिक्षित हैं आप, बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, कैसा सहयोग रहता है गांव में? हम देख रहे हैं कि आपका गांव बड़ा स्वच्छ सुंदर है, तो गांव में कैसा सहयोग रहता है लोगों का?
3: हमारे गाँव के लोग जागरूक हैं, और जो प्रधान है वो भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी कोऑपरेट करते रहते हैं। कोई भी समस्या होती है समय पर उसका निस्तारण किया जाता है। सभी लोग सहयोगी हैं।
2: अपने यहाँ से भमोरा कितनी दूर लगता है?
3: हमारे यहाँ से लगभग ऐसे ही है 7-8 किलोमीटर।
2: अपने यहाँ गांव में शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? बच्चों को कहाँ, गांव में ही शिक्षा प्राप्त हो जाती है या आसपास जाना पड़ता है?
3: कक्षा 8 तक तो गाँव में ही है, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों ही है। उसके बाद जो है पास में ही 2-2.5 किलोमीटर पे विद्यालय है।
2: अच्छा,
3: शिक्षा को लेकर हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
2: अच्छा, इसके अलावा चिकित्सा की कोई सुविधा अपने गांव में हो?
3: चिकित्सा की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, उसके लिए तो ब्लॉक है, पास में ही एक टाउन पड़ता है विसारतगंज, वहाँ जाना पड़ता है, और गांव में भी अपने बैठते हैं, लेकिन डिग्री होल्डर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है।
2: बहुत सही है, क्योंकि कभी कभी गाँव में जो आप बता रहे हो बैठते हैं, प्राथमिक चिकित्सा उनसे मिल जाती है और आसपास में ही। आपने बताया ये जो आपने बताया ये सुविधा जो है वो लगभग आपके गांव से कितनी दूरी पर है?
3: लगभग 3 किलोमीटर।
2: अच्छा, आने जाने के साधन कैसे हैं अपने यहाँ पर?
3: आने जाने की यातायात की अच्छी व्यवस्था है, ऑटो वगैरह चलते हैं, और अपने खुद के भी वाहन है, अपने कार भी है, खुद के गाँव में भी ऑटो है, मोटरसाइकिल है, और रोड भी अच्छे है।
2: शिक्षा के क्षेत्र से मनोज कुमार जी आप जुड़े हैं, आप कब से ये काम कर रहे हैं शिक्षण का कार्य?
3: मैंने जैसे ही हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी उसी समय से ही विद्यालय से अटैच हो गया था, विद्यालय से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। लगभग 20-25 वर्ष होने जा रहे हैं, विभाग से ही जुड़ा हुआ हूँ।
2: 25 वर्षों से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, और आपके पास अनुभव की कमी नहीं है, क्योंकि जो

0: शिक्षक होते हैं, उनके पास बहुत सारा शिक्षा का भंडार होता है। तो गांव में आप किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं, या फिर लोगों को जो भी कई सारी चीजें जो हैं हमारे ब्लॉक स्तर से सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ ले पाते हैं क्या गांव में लोग?
1: लोगों को जागरूक करते हैं, जो भी नई योजना आती है प्रधान के माध्यम से उसकी जानकारी मिलती है, वो भी बताया जाता है। अभी समय पे आयुष्मान कार्ड की योजना चली थी, उससे पहले सुकन्या योजना थी, उसके बारे में लोगों को बताया गया था। अच्छा। उसमें फार्म भी डलवाया गया था। समय समय पर रहते हमारे प्रधान जो हैं गांव के, वो बहुत अच्छे हैं, समय समय पर जागरूक करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं,
0: सहयोग करते
1: हैं, सामूहिक गोष्ठी भी होती है।
0: अच्छा।
1: कोई योजना जब आती है तो गाँव में सामाजिक बैठक कराते हैं।
0: गाँव में हर गाँव में अब पंचायत घर बन गए हैं
1: जी,
0: सुविधाएं अपने यहाँ पर हैं इस तरह की क्या?
1: जी जी, हमारे पास में ही, हमारे घर के पास में ही पंचायत घर बना हुआ है।
0: अच्छा।
1: मोस्टली जो भी मीटिंग होती है वो उसी में ही होती है,
0: क्योंकि अब जो पंचायत सहायक गांव में नियुक्त किए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमें पंचायत घर पे ही उपलब्ध हो जाती हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की बात करें, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें, परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है कभी हमें, तो हमें सब सुविधाएं जो हैं वो अपने गाँव में ही अब मुहैया हो जाती हैं। पहले बड़ी असुविधा होती थी कि अगर कोई इस तरह का प्रमाण पत्र हमें चाहिए तो उसके लिए हमें या तो ब्लॉक जाना पड़ता था, या फिर हम प्रधान के यहाँ कई बार चक्कर काटने के बावजूद भी हमें ये प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाते थे। लेकिन अब ये सुविधाएं जो है वो गांव लेवल पे हम समझते हैं कि मिल रही हैं, तो इनसे कुछ फायदा हुआ है?
1: बिल्कुल सर, इससे बहुत फायदा हुआ है। अब पहले जैसी दिक्कतें व्यक्ति के पास नहीं रही हैं, व्यक्ति अब अपडेट हो रहा है समय के साथ साथ, टेक्नोलॉजी का जमाना है अब, और व्यक्ति उसके इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझ रहा है।
0: आप शिक्षित हैं, आप समझ सकते हैं। अच्छा, गांव में लोग जो है वो साक्षरता की तरफ कितना जागरूक हैं?
1: हमारे यहाँ लगभग मोस्टली लगभग 80% लोग शिक्षित ही हैं।
0: जो और 20% हैं उनके लिए कभी आपके गांव में कोई इस तरह का अभियान या फिर कोई ऐसी सुविधा मुहैया कराई जाती है क्या सरकार के द्वारा?
1: जी जी जी, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं आई थी। पहले जो थी शिक्षा कर्मी एक योजना चली थी, उसके माध्यम से पढ़ाया जाता था, अनुदेशक की जगह निकली थी, उनके माध्यम से गांव में लोगों को शिक्षित किया गया था, आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: इस प्रकार की समय समय पर बहुत सारी योजनाएं आ रही है और उसका लोग लाभ भी उठा रहे हैं।
0: मनोज कुमार जी, आज आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे किसान साथी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे अनुभवी कृषक श्री मनोज कुमार के अनुभव। आप गांव रतुपुरा ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद के रहने वाले हैं और आपसे बातचीत कर जानकारी कराए थे हमारे भैया जसविंदर।
3: और भैया देखो, अपने कार्यक्रम में कुछ बदलाव करे गए हैं, वो किसान साथी इनको बता दे रहे हैं, जिससे कि बाई के हिसाब से अपने कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, उनकी कोई समस्या है उसका भी समाधान करा सकते हैं, और उन्हें जब पता रहेगी भैया किस दिन का कार्यक्रम आवेगा, तो हम अपने कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को ना, जैसे हम अगर पहले महीने के बुधवार को बात करें तो सफल कृषक से करी गई बातचीत सुनवाते हैं, और दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से करी गई बातचीत सुनवाते हैं,
2: और इसी तरह भैया तीसरे बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी, और चौथे
3: बुधवार
2: को सफल कृषक से स्टार्टअप सुनवाते हैं,
3: और अगर पांचवा बुधवार पड़ता है तो हम अपने किसान साथियों को सफल कृषक से करी गई बातचीत सुनवाते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें गुरुवार की, तो पहले गुरुवार को महीना के आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर हम अपने किसान साथी को कार्यक्रम सुनवाते हैं,
2: और साथ ही दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान कार्यक्रम हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं,
3: और तीसरे गुरुवार को आकाशवाणी गाँव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम सुनवाते हैं,
2: इसी तरह चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान कार्यक्रम सुनवाते हैं,
3: और अगर पांचवा गुरुवार महीना में पड़ता है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष हम अपने किसान साथियों को सुनवाएंगे,
2: और इसी तरह भैया बात करें हम शुक्रवार की, तो पहले शुक्रवार को हम अपने किसान साथियों के फरमाइश पर आधारित लोक मंजरी कार्यक्रम सुनवाते हैं,
3: और भैया दूसरे शुक्रवार को कृषि संघ का समाधान, जो कि उनकी समस्या से जुड़े सवाल होते हैं ना, उनको समाधान करो जाते हैं।
2: और भैया तीसरे शुक्रवार को भी लोकमंजरी कार्यक्रम जो फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम है वो सुनवाते हैं।
3: और भैया चौथे शुक्रवार को कृषि संघ का समाधान समस्या व उनसे जुड़े समाधान जो होते हैं उनको समाधान करो जाते हैं।
2: और यदि पांचवा शुक्रवार पड़ता है तो लोकमंजरी फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनवाते हैं हम अपने किसान साथियों के लिए।
3: और भैया अब बात आती है कि हमारे किसान भैया सोच रहे होंगे कि हम आखिर इन कार्यक्रम में किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो जाके लिए हमें फोन कर सकते हैं जो भी समस्या संबंधित समस्या है उनके, या लोकमंजरी कार्यक्रम में भी कोई लोकगीत सुनना चाह रहे हैं तो कार्यक्रम के बीच में भी हमारे जो फोन नंबर है वहाँ पे बात कर सकते हैं 0595-2324-326 नंबर पे फोन करेंगे तो उनको जो पसंद को लोकगीत होगा बहुत सुनवा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वे शुक्रवार को फोन कर रहे हैं और कृषि संघ का समाधान कार्यक्रम चल रहा है तो उनकी जो भी समस्या होगी उसको समाधान करो जाएगा।
2: और भैया इसी तरह व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
3: हाँ अगर वे फोन पे बात नहीं पा रही है तो वे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उनकी समस्या जो होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर उनके जो पसंद को लोकगीत है वो भी उनको सुनवाओ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे किसान भैया ईमेल करना चाह रहे हैं तो वे हमें पत्र मिला airrampur@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स यूट्यूब आकाशवाणी रामपुर की पेज पर भी वे फॉलो कर सकते हैं।
2: और साथ ही पत्राचार के लिए हमें वो पत्रों के माध्यम से भी अवगत करा सकते हैं। पत्राचार के लिए हमारा पतो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901।
3: और भैया इस तरीके से हम अपने किसान साथियों से कहेंगे कि सभी कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और हमें समय रहते अपनी समस्या या अपने मनोरंजन करना चाह रहे हैं तो वे हमें पत्र भेज सकते हैं या भैया व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं और हमें उनके फोन और व्हाट्सएप का इंतजार रहेगा। और भैया अब बात कर ली जाए थोड़ी सी खेती बाड़ी की।
2: हाँ भैया क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम कृषि संकेत का, तो भैया कृषि संकेत कार्यक्रम में जो आज जानकारी को विषय है वो है नए बाग लगाने हेतु खेतों की तैयारी।
3: भैया देखो होता है कि हमारे किसान भैया जिनके पास जमीन ज्यादा है या जिनके पास जमीन कम है उन दोनों के लिए ये बाग लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिनके पास ज्यादा जमीन है वे सोचते हैं हम कुछ जमीन में बाग लगा देंगे और जो बची जमीन है हम काम आसानी से कर सकेंगे।
2: हाँ भैया बाकी एक और वजह है बाग भैया बाग लगाने से जैसे भैया कोई प्राकृतिक आपदा के कारण कोई गांव वगैरह खत्म हो जाते हैं, भैया बाढ़ आ जाता है तो गांव कट जाते हैं, तो भैया जो देखते हैं कि नजदीकी जो खेत है बामे बसा देते हैं उन्हें, लेकिन भैया वहां में अगर आपके बाग लगे हुए हो ना तो वो आपको खेत बचू रहेगा।
3: साथ साथ जिनके जमीन कम है वे सोचते हैं हम होगा अपने खेत में बाग लगा देंगे तो वे फारिक ही जाएंगे, बाग जो है पूरे पूरे साल के लिए बिक जाता है और अपने भी दूसरे कामों में लग जाते हैं और इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती रहती है। अब बात आती है कि भैया अभी बाग इस समय कौन कौन से लगा सकते हैं अपने क्षेत्र में। देखो आम और अमरूद ये दोनों बाग खूब अच्छी तरीके से लग रहे हैं और अच्छे मुनाफा इन दोनों से मिल जाते हैं।
2: हाँ भैया अगर हम नए बाग लगाने के लिए खेत की तैयारी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें, साथ ही भैया खरपतवारों को जो है उसमें अच्छी तरीके से साफ कर लें। इसके बाद 2x2 फीट या 3x3 फीट के गड्ढे खोदें, गड्ढों में मिट्टी सड़ी हुई गोबर की खाद और जैविक खाद का मिश्रण जो है अच्छी तरीके से भर दें, अंत में पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम या खरपतवार रोकने के लिए मल्चिंग विधि का इस्तेमाल करें।
3: भैया देखो ये बातें आपने बता दी लेकिन भैया शुरुआत अगर हमें करनी है तो खेत में मिट्टी की जांच से सफाई करनी है जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो किस तरीके की है और हमारे पौधों के लिए अच्छी बढ़वार करने वाली है या ना है।
2: तो भैया खेत की मिट्टी की जैसे आपने बात करी तो हमारे किसान साथी जो है खेत की तैयारी करने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जाँच करा लें।
3: जाँच कराने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, अपने खेत अगर 1 एकड़ को या 2 एकड़ को है तो 5-6 जगह से मिट्टी को नमूना लेने हैं। नमूना लेने के लिए उन्हें पहले निशान लगाने हैं और जो नमूना ले रहे हैं तो जब बात को ध्यान रखना है कि आसपास में कोई खाद को गड्ढा ना हो, नरुआ ना हो, मेड़ ना हो, ये बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ भैया अगर खेत में पेड़ भी है तो पेड़ के नीचे से भी मिट्टी का नमूना नहीं लेना है और इसके बाद में जो है बी आकार का गड्ढा बनाना है और ऊपर से लेकर नीचे तक की जो है हमें मिट्टी लेनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम अपने किसान साथियों को बता दें कि अगर आप आम को बाग लगा रहे हैं तो कितनों गहरों गड्ढा लेंगे जा तो बताओ भैया।
2: भैया कम से कम 12 इंची का गड्ढा होना बहुत ही जरूरी है।
3: भैया देखो 12 इंची को गड्ढा जामे काम ना करे वो।
2: अच्छा भैया,
3: क्योंकि जाकी जो जड़ें हैं वो जो है काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसलिए हमें 1.5 से 2 फुट गहरो जो है गड्ढा करने हैं, बाकी बाद बाको मिट्टी को नमूना लेने पड़ेगा। और जो हमें प्रक्रिया करनी है वो 5-6 जगह से करनी है, उसके बाद जो मिट्टी मिलेगी उसको हमें खूब आराम से कूट के बारीक करने हैं और मिला लेने हैं, उसके बाद हम उसके 4 हिस्सा करेंगे, आमने सामने के हटा देंगे, इधर उधर के ले लेंगे, उसके बाद हम उसको ये प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक जो है हमारे पास आधा किलो मिट्टी ना रह जाए।
2: भैया और वहाँ में अपनों नाम पतो खेत को नंबर ये सब एक पर्ची बना के वहाँ में रख देंगे।
3: हाँ, और उसके बाद हमें मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो कि तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे कृषि विभाग में बनी भी है वहाँ पे हमें दे देंगे, बाकी बाद वो जांच करके बता देंगे कि हमारी जमीन को पीएच मान कितना है, जहाँ में कितनी नाइट्रोजन है, कितनी फॉस्फोरस है, जीवांश कार्बन कितना है, तो ये सारी जानकारी हमें आसानी से फिर मिल जाती है।
2: तो भैया ये तो बात रही मिट्टी की जाँच, बाकी बात आते हैं खेत की साफ सफाई की। तो भैया खेत में मौजूद जो पुराने अवशेष हैं, झाड़ियां हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको पूरी तरीके से खेत से बाहर कर दें।
3: हाँ, इस तरीके से हमारे किसान भैया खेत की तैयारी कर लेंगे। उसके बाद में बात आती है कि गड्ढा कितने गहरे बनावें। अगर आम को बाग लगा रहे हैं तो हमारे किसान भैया इस बात को ध्यान रखें कि जो गड्ढे बनाने हैं वो हमें 1x1x1 मीटर गहरे गड्ढे बनाने हैं। और भैया गड्ढों में हम जो है पहले थोड़ी धूप लगने दें जिससे कि अच्छा रहता है, और धूप लग जाती है तो उसके अंदर जो फफूंद बूंद आकर कोई लगने की संभावना होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा भैया मानसून आने से पहले अगर हम गड्ढे बना लेते हैं, जैसे इस समय हम गड्ढे बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है।
2: और भैया अगर मिट्टी उपचार और खाद भरने की अगर हम बात करें तो जो गड्ढों में भरने के लिए निकाली गई ऊपर की मिट्टी है उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर मिला।
3: और भैया देखो प्रजातियों का चयन सही तरह से करें, अगर आम के बाग लगा रहे हैं तो प्रजातियां अलग हैं, अमरूद के बाग लगा रहे हैं तो प्रजातियां अलग हैं। हम अपने किसान साथियों को बता दें कि आम में इस समय यहाँ पर आम्रपाली है, लंगड़ा है, देसी है, बम्बई है, ये प्रजातियां हैं लगाते हैं। अगर अमरूद के बाग लगा रहे हैं तो L49 है, इलाहाबाद सफेदा है, ये प्रजातियां बढ़िया हैं, इनको लगा सकते हैं। और आम के बाग लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर रखें, और अगर अमरूद के बाग लगा रहे हैं तो 6x6 पर लगा सकते हैं। और भैया देखो जो तो रही बात अपने कार्यक्रम में कृषि संकेत की, और अब चलते चलते किसान भाई इनको बता दें मौसम को हाल, जिससे कि भाई के हिसाब से अपनी खेती बाड़ी को काम कर सकें।
2: तो भैया कल यानी कि 15 तारीख के अगर हम मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
3: और भैया वायुमंडलीय आर्द्रता 40%, हवा
2: की गति और अगर हम दिशा की बात करें तो पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है।
3: भैया देखो जा तो ही मौसम की जानकारी, और अब हम अपने कार्यक्रम में कल काका सुनवाएंगे, जा बारे में थोड़ी सी बात कर देने।
2: हाँ भैया, कल हम सुनवाएंगे अपने किसान साथियों के लिए एक चर्चा, विषय है फलदार पौधों की देखभाल।
3: भेंट वार्ता होगी धान में कीट व रोग नियंत्रण और कृषि संकेत में सूरजमुखी की खेती से अधिक लाभ कैसे लें। ये देखो जा तो ही हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब हमारे कार्यक्रम को समय बिल्कुल ना है, दोनों भैया कर लें। राम राम, राम।

अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब मीडियम वेव और एफएम पर आप सुनिए इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब मीडियम वेव और एफएम पर आप सुनिए इंग्लैंड में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्म

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है, दर्द और सुकून का ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गुंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरोसामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भूले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, फिल्में स्मृति भी हैं, फिल्में नॉस्टैल्जिया भी हैं। जब हम पुरानी फिल्मों को देखते हैं तो खो जाते हैं उस पुराने दौर में, मानो समय के स्केल पर कोई बटन दब गया हो और हम अतीत के किसी खांचे में लौट चले हों। ये है फिल्मों का जादू।

जैसे ही आपने इस गाने की झलक सुनी होगी, आपके जहन में कुछ ख्याल आए होंगे लता जी की आवाज के बारे में, संगीतकार मदन मोहन के बारे में और फिल्म मेरा साया के बारे में। जरा ठहरिए, हम अभी आपके साथ अतीत के इस कुहासे में थोड़ी देर और चहलकदमी करेंगे।

0: मुमकिन है कि इन दोनों गानों को सुनकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि या तो बातें मदन मोहन की होने वाली हैं या फिर फिल्म निर्देशक राज खोसला की। अब सवाल ये है कि आपका क्या किया जाए अंदाजा सही लगाने के लिए।
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
0: दरअसल 9 जून को होता है जाने माने निर्देशक राज खोसला की याद का दिन, इसलिए आज हम पूरे एक घंटे राज खोसला के जीवन और उनके सिनेमा की पड़ताल करेंगे। होंगे कुछ दिलचस्प किस्से।
2: है अपना दिल तो आवारा,
0: कितनी कमाल की बात है

किस तरह से फिल्मी गाने बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं और रूप बदल कर आते हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में ये गाना रूप बदल कर आया। राज खोसला मनोरंजन के दायरे वाले सिनेमा की बड़ी हस्ती हैं। एक निर्देशक के तौर पर उनकी खासियत को रेखांकित कर दें, फिर आगे की बातें की जाएं। राज खोसला ऐसे निर्देशक हैं जिन्हें सस्पेंस बड़ा प्रिय था, इसलिए तो उन्होंने सीआईडी, वो कौन थी, मेरा साया और अनीता जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने डाकुओं की कहानी भी दमदार तरीके से पेश की, पर वो सामाजिक मुद्दों पर बात करते भी नजर आए। फिर चाहे दो रास्ते हो या फिर वो फिल्म जिसका नाम था क्या। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की अभिनय वाली इस फिल्म के निर्देशक भी राज खोसला ही थे।

0: और ये सारी फिल्में उस जमाने की हैं जब एक तरफ राज कपूर सक्रिय थे, दूसरी तरफ देव आनंद, विजय आनंद, गुरुदत्त, बी आर चोपड़ा, महबूब खान, के आसिफ और बाकी तमाम दिग्गज निर्देशक। उनके बीच राज खोसला ने अगर बॉक्स ऑफिस पर लगातार राज किया तो इसका मतलब यह है कि इस निर्देशक को मनोरंजक सिनेमा की गहरी समझ थी। राज खोसला का जन्म 31 मई 1925 को पंजाब के राहौन में हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब माता पिता मुंबई आ गए थे। जाहिर है कि उनकी पढ़ाई मुंबई में हुई।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: राज खोसला अंजुमने इस्लाम स्कूल के छात्र रहे। बाद में उन्होंने दाखिला लिया प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज में और यहाँ वो थिएटर से जुड़ गए। यहीं से उनका झुकाव सिनेमा की तरफ भी हुआ। कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पंडित जगन्नाथ तिवारी से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली थी। राज खोसला महान गायक कुंदनलाल सहगल के बड़े प्रशंसक थे और कभी कभी वो दोनों रियाज किया करते थे। बात यह थी कि माटुंगा में राज खोसला का घर था और केएल सहगल भी उसी के पास रहा करते थे। हर सुबह राज खोसला सहगल के पास जाकर रियाज करते, उन्हें गाते हुए सुनते। एक दफा केएल सहगल ने राज खोसला से कहा कि आप रेडियो या फिल्मों में क्यों नहीं आते। बस यहीं से राज खोसला ने गायकी का संघर्ष शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब वो बतौर गायक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से भी जुड़े। 1950 में आई बतौर संगीतकार मदन मोहन की पहली फिल्म आंखें, जिसके निर्देशक थे देवेंद्र कोयल। इस फिल्म में राज खोसला ने एक गाना भी गाया। इस गाने के रिकॉर्ड पर लिखा है कोरस लेड बाय राज खोसला और इस गाने के गीतकार हैं भगवान दत्त मिश्र। ये कहना सही होगा कि देव आनंद और राज खोसला की दोस्ती पुश्तैनी थी। दरअसल इन दोनों के पिता एक साथ कॉलेज में पढ़े थे तो दोनों परिवारों के बीच गहरा रिश्ता था और ये रिश्ता अगली पीढ़ी तक चला आया था। बात यह थी कि बतौर गायक राज खोसला का करियर ठीक से शुरू नहीं हो पा रहा था। एक दिन बस यूं ही देव ने कहा कि राज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है गुरुदत्त, वो अपनी अगली फिल्म बस शुरू करने वाला है, क्यों ना तुम उसके असिस्टेंट बन जाओ। राज खोसला ने कहा, देव तुम जानते हो कि मेरी दिलचस्पी फिल्म डायरेक्शन में नहीं है, मैं तो गायक बनना चाहता हूं। देव आनंद के जोर देने पर राज खोसला किसी तरह राजी हो गए और फिल्म बाजी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे।

1951 में आई बाजी एक क्राइम थ्रिलर थी। देव आनंद इस फिल्म के हीरो थे। राज खोसला ने अपनी फिल्मी तालीम गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इसी फिल्म से शुरू की थी। हालांकि गुरुदत्त की भी ये पहली निर्देशित फिल्म थी और इसकी कहानी बलराज साहनी की थी। बाजी हिट रही और इसने गुरुदत्त और देव आनंद दोनों को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद 1952 में आई जाल।